按面积计算的第八大榜，按人口计算的第十一位。该榜首府是布布尼什尔。

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आइए अब समाचार सुनते हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका रचा झा।

पनीर बारान तरचपा दी दुनिया किनी तलाह मलुआस्क तुजु प्रोवेंसी दी नगारा अफ्रीका तरसबूत उजी लाबोरातोरियम यंग दिलाकुकान ओले लेम्बागा पनीलितियान नेशनल कोंगो मने मुकान आदानिया वायरस बुंदी बुगियो दलाम सैंपल यंग दी परीक्षा दी अदालह जेनिस इबोला लंका यंग मंजादी पनियबा वहाब साथ इनी सैंपल तरसबूत बरासाल दारी डिस्ट्रिक्ट कसहातान बुलू दी सुड उबांगी परकंबांगान इनी मंजादिकान सुड उबांगी सबागाय प्रोविंसी कतुजु यांग तरदंपाग वाहाब दन यांग प्रतामा दिविलायाह बारात कोंगो मनुरुद देता पमरिंता तरकीनी पर हारी राबू तरचातात एनाम तितिक संबिलान एमपात दुआ कासुस दान तिगा तिगा रिबू तिगा रातुस एमपात पुलु संबिलान मासी बलुम तरकन दाली दान दीपर कीरा कान अकान मलम मुई वहाब इबोला अफ्रीका बारात ताहुन दुआ रिबू एमपात बलास संपय दुआ रिबू नाम बलास वहाब पालिंग ममाती कान दलाम चतातान सजारा यांग मनेवास कान लेबिदारी सबलास रिबू औरंग तर उतामा दी ग्यूनिया लिबेरिया दान दान सियरा लियोने सीडांग का तुजु पुलु संबिलान कमिटी रेगियोनल डब्ल्यू हा ओ उन्तुक आसिया तंगारा बर आखिर कमारिन दंगा नगारा नगारा अंगोता मंग मंगादोपसी डिक्लरासी दिली तंतांग सुम्बर दाया मनुष्या उन्तुक कसहातान कस तारा आन दलाम लायनान स्पासियालिस सरता सजुमला क पुतुसान पेंटिंग उन्तुक ममाजुकान क सेतारा आन कसाहातान मंपर कुआत सिस्टम कसाहातान दान मंपर चपात का माजुआन मनुजु चाकुपान कसाहातान समेस्ता यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर तेमुआन एम्पात हारी इनी मंपर तेमुकान पारा मंत्री कसाहातान प्रजापात सीनियर कसाहातान दान डेलीगेसी दारी सलरूह विलाया आसिया तंगारा डब्ल्यू हा ओ मनरुत पर नियता आन रश्मी नगारा नगारा अंगोता जुगा मंगादोपसी रिसुलुसी पेंटिंग तरकाइत परांकात मेदिस दियांग डायग्नोस्टिक दान टेक्नोलॉजी बांतु कताहानान फैसिलिटास कसाहतान कसलमातान पासियन दान क अमानान दारा पम्बिया आन कसाहतान दान बरकलन जुतान पन अंगुला पर अंगुलांगान तर तुबरकुलोसिस सरता का परचाया आन दान पार्टिसिपासी मसियारा का तरहडाप वैक्सीन गुना मंदुकुंग इलिमिनासी चांपाक दान रुबेला मरेका जुगा मंपर पांजांग रेंचाना आक्सी रेगियोनल मनगेनाई हेपेटाइटिस वायरस हाईवे दान इन्फेक्सी मनुलवार सेक्सुअल हिंगा ताहुन दुआरिबू तिगा पुलु संबारी मंपर कुआत कर्जा सामा रेगियोनल दी बिरांग कसाहतान डिजिटल दान कचर देसा आन बुआतान यमन सऊदी पीपा मनियाक कमंत्रियान इनर्गी अरब सऊदी कमारिन मनियाता कान तेला मनुतुप सबुआ पीपा मनियाक लिंतास नगारा यंग विताल सतेला पीपा तरसबुत दिसरंग सहारी सबलुमनिया पर नयाता आन तरसबुत मनियमपुत पनुतुपन इतु सबागाय लंका पंचेगाहन पीपा तमुर बारात दिला ममाइन कान पेरान कुंची दलाम क मामपुआन अरब सऊदी उन्तुक त्रुस मंगेसपोर मिनियाक मिनियुसुल गांगुआन दी सेलात हमरूज सलामा पेरांग दंगान अमेरिका सरकार दान इजराइल पनुतुपान इनी तरजादी साथ पम बेरोंताक हाउती दी यमन मरेबुत विलाया पससीर दी देका सलात बाब एल मानदेव यांग मंगाचम एक्सपोर मिनियाक अरब सऊदी मलाजुई जालुर पलायरान उतामा पम्बेरोंताक हाउती यमन दान दिकुंग इराक तिला मरबुत पुलाव स्ट्रागिस मायून दी सलात बाब ए मंदेरो दी पिंतु मासुक लाउत मेरा हाल इनी दपात समाकिन मंगांचाम एक्सपोर मिनियाक अरब सऊदी मलालुई सालाह सातु जालूर पनियालारान कमर्शियल उतामा दुनिया पंगु आसा आन अतास मायून सबुआ पुलाव वर वुल्कानिक केचिल दान गरासंग यांग जुगा तिगनाल सबागा

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की

0: महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते निराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में

0: ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
1: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
3: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
2: वसुदेव कुटुंबकम
0: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
7: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है।

0: परीक्षा में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी, पुतिन, फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में $45 अरब की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for 2-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The 2-day grand event will bring together 11 major emerging and developing

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, खेलों में सफलता और प्रदर्शन सर्वोपरि है। लक्ष्य उन्मुख एथलीट प्रशिक्षण के प्रति समर्पित होते हैं। वे अच्छा खान पान अपनाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं और पोषण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करते हैं, जिसके लिए वे खेल चिकित्सक, शारीरिक स्वास्थ्य के फिजियोथेरेपिस्ट और पोषण संबंधी लाभ के लिए आहार विशेषज्ञ से परामर्श लेते हैं। लेकिन अक्सर मौखिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मौखिक स्वास्थ्य का असर प्रदर्शन पर सीधे रूप से पड़ता है। आइए सुनते हैं ये वार्ता खिलाड़ियों के लिए मौखिक स्वास्थ्य। इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी एक्सपर्ट दंत चिकित्सक और इम्प्लांटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या झा। भेंट करता है रश्मि गुप्ता।
3: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: थैंक यू रश्मि जी।
1: दोस्तों, हम अक्सर खिलाड़ियों की फिटनेस, डाइट और इंजरी प्रिवेंशन पर बात करते हैं, लेकिन मौखिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है। तो हमारे आज के अंक में हमारा विषय यही है, खिलाड़ियों के लिए मौखिक स्वास्थ्य यानी ओरल केयर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि एक खिलाड़ी के लिए अच्छी ओरल हेल्थ उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए और उसकी परफॉर्मेंस के लिए कितनी जरूरी है।
0: एक खिलाड़ी के लिए उसकी ओरल हेल्थ या मौखिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उसकी मौखिक स्वास्थ्य में कोई भी कमी होगी उसके खान पान पे तुरंत असर पड़ेगा, और जैसे ही किसी खिलाड़ी के खान पान पे या न्यूट्रिशन पे असर पड़ता है वैसे ही उसके खेल पे असर पड़ता है। एक जो हमारा खिलाड़ी होता है उसका पूरा जो शरीर होता है, एथलीट अपने शरीर को ऐसे बनाते हैं कि वह अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस हर बार दे सके, वो उसके लिए हर समय अपने आप को तैयार रखते हैं। और उसमें एक छोटे से दांत का दर्द, क्योंकि ज्यादातर लोग दांत के दर्द को छोटा लेके चलते हैं, वो उनको इतना परेशान कर सकता है कि कई बार एकदम बीच में परफॉर्मेंस के उनको फील्ड को छोड़ के जाना पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो अपने खेल से पहले जरूर अपनी मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे।
1: जी, अच्छा, खिलाड़ियों में आमतौर पर किस तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती है और किस तरह के स्पोर्ट में कौन सी समस्याएं आ सकती है।
0: देखिए, खिलाड़ी ज्यादातर जो है जब अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं तो काफी ज्यादा फाइबर पे ध्यान देते हैं, प्रोटीन पे ध्यान देते हैं। फाइबर प्रोटीन ऐसा है कि अगर आपके मसूड़ों की बीमारियां चल रही हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि वो मुंह में फंसेगा। मुंह में फंसने की वजह से मुंह में सड़न होती, जिस वजह से हमें दांत का पूरा जो है कई बार इलाज कराना पड़ता है, जो कीड़ा लगता है फिर उसके बाद हमें उसका नसों का इलाज कराना पड़ता है। मसूड़ों की अगर हम सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो मसूड़ों से लगातार खून बह सकता है, खून बहने की वजह से जो है उसको खाने में तो परेशानी होगी होगी, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, उसके साथ साथ उसको हो सकता है कई बार हम दांत बचा भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जितनी जल्दी हमें ये चीज पता चलेगी उतनी जल्दी हम उसे सही करा सकते हैं।
1: तो एक खिलाड़ी को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के मौखिक चोट से ग्रसित ना हो।
0: देखिए, मौखिक चोट खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा होती है खेल के दौरान, जैसे अगर हमारा बॉक्सिंग हुआ, हॉकी हुआ, ये मार्शल आर्ट्स का कोई भी स्पोर्ट हुआ, तो वहां पे तो चोट सामने से आती है। बॉक्सिंग में जब दो लोग होते हैं हमारे उस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कई बार है कि उन्हें अपने मुंह को बचाना पड़ता है, उसके लिए वो हेलमेट पहनते हैं, बट जरा भी जो मुंह का इम्पैक्ट है, उस चोट का जो इम्पैक्ट है वो अगर दांत तक हमारे पहुंचा, हमारे दांत हिल जाते हैं, निकल जाते हैं, कई बार जबड़ा टूट भी जाता है। तो इसके लिए ही हम सजेस्ट करते हैं कि हम माउथ गार्ड यूज करें। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अलावा अगर नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आए, जैसे कि हमारा वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, क्रिकेट तो हमारे देश में सबसे ज्यादा
1: खेला जाता है,
0: इसमें एक तेज रफ्तार से आती हुई गेंद खिलाड़ी के मुंह पे लग सकती, फिर उसको वही परेशानियां हो सकती, दांत का हिलना, निकलना, तुरंत जो है बाहर आना। कई बार ऐसी स्थितियों में हो सकता है कि दांत निकलकर पेशेंट के मुंह में इतनी ज्यादा खून बहने लगे कि उसको फील्ड से हटना पड़ता है। और जैसे हमारे नॉर्मल हुए, जैसे जिमनास्ट हुए हमारे, साइकिलिस्ट हुए हमारे, रनर्स हुए हमारे, ये लंबे लंबे समय तक ये एंड्योरेंस अपनी ट्रेन करते हैं, लंबे लंबे समय तक इनमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन हमारी मौखिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे मुंह को हमारे जो है उसको
1: सुखा देता है,
0: और उसके साथ साथ उसमें ज्यादा चांसेस बढ़ा देता है कि सड़न होए, परेशानियां होए। जैसे ही हम डिहाइड्रेशन की स्टेज में जाते हैं सबसे पहले उसका असर हमारे मुंह में आता है, छाले आते हैं, सब आता है। कोई भी एक ये परेशानी, कोई भी खिलाड़ी सालों तक तैयारी करता है, सालों तक अपने आप को इंटेंस तरीके से अपने खान पान पे ध्यान देगा, अपनी घंटों तक वो ट्रेनिंग करेगा, और इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसका पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन भी कई बार जो है वो फेल हो जाता है।
1: अब हम जैसे आपने डिहाइड्रेशन की बात की तो जनरली क्या होता है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोई भी खिलाड़ी या तो पानी पीता है या फिर वो एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होते हैं वो खिलाड़ियों के लिए अच्छे रहते हैं या कहीं से वो उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं?
0: देखिए मैम, जो खिलाड़ी हैं उन्हें हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आप डिहाइड्रेशन के लिए हमारी जो ड्रिंक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट हुआ ये नहीं लें, या जो एनर्जी ड्रिंक है ये सब उनकी परफॉर्मेंस में हेल्प कर, तो हम इसके लिए उन्हें मना तो कभी नहीं कर सकते कि आप मत लीजिए। पर हाँ, इन चीजों से दांतों की सेहत पे असर पड़ता है। इन चीजों में कई बार जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर दिया जाता है, ग्लूकोज रहता है हमारा, तो अगर वो कंटिन्यूअसली जो है मुंह में रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, तो हमारी दांतों की सड़न की चांसेस बढ़ सकती है, मसूड़े में सड़न बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम

0: सारे के सारे एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को कहते हैं कि आप जितना हो सके या तो आप एनर्जी ड्रिंक लेकर एक बार कम से कम कुल्ला कर लीजिए, जो कि फील्ड पे बहुत ही मुश्किल, पर अगर वो लगातार अपना एक चेकअप कराते रहेंगे तो कोई भी परेशानी होने से पहले हम लोग उसे देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दांत की कोई भी परेशानी, मौखिक जो हमारा पूरा स्वास्थ्य है, वो कभी भी एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर नहीं आता है, महीनों से सालों तक इग्नोर होता है तब जाके वो एक बहुत बड़ी परेशानी बनता है। इसीलिए अगर हर जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अगर हर 6 महीने पर एक डेंटिस्ट के पास जाके अपना रूटीन चेकअप करा ले तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा उसको अपनी मौखिक स्वास्थ्य रखने में।
1: तो मुझे लगता है जो हमारे खिलाड़ी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे या जिनके घर में कोई ना कोई खिलाड़ी है, तो उन्हें इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि उन्हें कम से कम 6 महीने में अपने मौखिक स्वास्थ्य का, अपने डेंटल चेकअप का
0: एक बार
1: जरूर कराना चाहिए। अच्छा मैम, ये तो बात हो गई कितने अंतराल पर, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि अगर खेल के दौरान कोई इंजरी हो जाती है, दांत टूट जाता है या मुंह में कोई चोट लग जाती है, तो उस वक्त खिलाड़ी को क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए? खासतौर पे मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ जो मैदान पर नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने आप से तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए या फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए?
0: देखिए, जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी डेंटल एसोसिएशन वो इस चीज में काम कर रहे हैं, कम से कम खेल के दौरान जो है वहां पर एक इमरजेंसी डेंटिस्ट प्रेजेंट रहे।
1: ओके,
0: ठीक है, वो रहे वहां पर जिससे तुरंत अगर मुंह के हिस्से में कोई भी चोट लग रही है तो तुरंत वहीं पर जो है हमारे खिलाड़ी का दांत बचा सके।
1: जी जी,
0: जो तुरंत हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं वो दे सके। जहां तक बात आए जो हमारे इतने खिलाड़ी हैं जो सेल्फ ट्रेन्ड रहते हैं, वो शुरुआत हमारे ही देश में नहीं, ज्यादातर देशों में होता है कि पहले सेल्फ ट्रेनिंग से धीरे धीरे फिर एक कोच के अंडर आते हैं, फिर एक अकेडमी।
1: बिल्कुल,
0: उनके लिए बेस्ट रहता है कम से कम एक माउथ गार्ड इस्तेमाल कर। ये माउथ गार्ड का इस्तेमाल करना एक मिनिमम चीज है अगर आप खेल में जा रहे हैं तो। माउथ गार्ड बहुत आसान होता है, आप अपने किसी भी नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाके करा सकते हैं और ये लगभग हर खेल में जरूरी है। इसको आप ऐसे लेके चलिए कि अगर किसी खिलाड़ी के नी में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, वो नी पैड लगा के चलता है, सर के लिए हेलमेट लगा के चलता है, वैसे ही हमारा एक माउथ गार्ड होता है जो दांतों को बचा के चलता है। और जैसे कि आपने पूछा कि जो हमारे खुद काम कर रहे हैं खेल की तैयारी कर, उनके साथ अगर अचानक हो जाता है कुछ, तो वो खुद जो कर सकते हैं फर्स्ट एड वो ये है कि जैसे अगर उनका दांत निकल गया है तो वो सिंपल सलाइन में या फिर दूध में उस दांत को रख लें और रख के अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास चले जाएं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा खून निकल रहा है तो कोई भी हमारा गॉज पीस हो या कॉटन पीस हो, उसको साफ करके स्टेराइल कॉटन रख के उसको मुंह में रख के उसे दबाएं, ऊपर से ठंडी बर्फ की सिकाई करें। कई बार जब बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है तो हम ट्रेनेक्सा या कोई भी हीमोस्टैटिक एजेंट जो है जो खून का बहने को रोकता है, ये उन्हें किसी ना किसी मेडिकल शॉप से लेना पड़ेगा, तो इससे हमारे खून का बहना जो है वो रुकता है। और किसी भी डेंटल फर्स्ट एड में दंत का कोई भी हमारा फर्स्ट एड जो है, जैसे अगर आपने दांत को दूध में रखा है, आधे से एक घंटे के पास नजदीकी दंत चिकित्सक के पहुंचे। कोई भी कभी भी किसी समय पर ये नहीं सोचे कि मेरे साथ इतनी बड़ी चोट लग गई, अब मैं कैसे आगे करूंगा, उसके समाधान सब जगह है। खून सबसे पहले हमें खून रोकना है, खून का बहना रोकना, उस पे जितना हम दबाव डालेंगे उतना जल्दी वो खून रुकेगा।
1: तो हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे ही खून बहना शुरू हो उसे हमें सबसे पहले रोकना है और उसके बाद अपने नियर बाय डेंटिस्ट से तुरंत मिलना है। अच्छा, जैसे हम आपने भी बात की कि कितने अंतराल पर या 6-6 महीने के बाद चेकअप जरूर कराना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि सामान्य लोगों की तुलना में खिलाड़ियों को ये अंतराल और कम कर देना चाहिए या उन्हें जल्दी जल्दी चेकअप कराना चाहिए या अधिक कराना चाहिए?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हमारा 6 महीने पे चेकअप होता है डेंटल, वो हर एथलीट को और हर सामान्य इंसान को कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारी मौखिक परेशानी जो है वो 6 महीने के चेकअप पे पता चल जाती है। इसके साथ साथ क्या है कि आजकल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज चल रही है कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जाने से पहले जरूरी होता जा रहा है कि एक प्री डेंटल असेसमेंट किया जाए, प्री कॉम्पिटिशन डेंटल असेसमेंट कहते हैं उसको। उसमें क्लियरेंस दी जाती है, उसमें ग्रेडिंग करी जाती है कि किसी भी एथलीट के मुंह में क्या परेशानी है और उसको हम लोग किस ग्रेड पर हम रखते हैं कि कौन सी सबसे पहले ट्रीट करी जाए। तो जैसे अगर कोई दांत है जो निकलना है या जिसमें बहुत ज्यादा सड़न है, वो ग्रेड 3 माना जाता है, जबकि अगर मसूड़ों की परेशानियां हैं और खून निकल रहा है और

0: कुछ ही जगहों पे खाना फंस रहा है, वो ग्रेड वन में आता है। तो पूरी तरह से जो है हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पे काम कर रहे हैं कि हर स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जो है मौखिक स्वास्थ्य पे ध्यान रख सकें।
1: खेलों के दौरान जैसे कि आपने बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स हम कर रहे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कोई मैच चल रहा हो, क्या ऐसे में मुंह की समस्या के कारण आज तक कभी किसी खिलाड़ी को प्रतियोगिता से ब्रेक भी लेना पड़ सकता है?
0: ये चीज हुई है 2012 के जो ओलंपिक गेम्स थे लंदन में, उसमें ये चीज हुई थी। लगभग 302 जो हमारे एथलीट थे 25 देशों से, उनके दांतों में इतनी परेशानियां थी कि उनको या तो अपना कंपटीशन डिले करना पड़ा था या ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक विलेज में डेंटिस्ट को बुला के उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ा था।
1: तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक आम आदमी की तरह अपने आप को ना सोचें और उन्हें जरूर अपना ओरल हेल्थ का ध्यान एक्स्ट्रा केयर उनकी करनी चाहिए।
0: एक खिलाड़ी इसीलिए है क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य पे जितना ध्यान देता है उतना एक नॉर्मल इंसान नहीं दे पाता।
1: तो मैम, चूंकि आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लिसनर्स को दी, तो अब चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे वो खिलाड़ी और जिनके घरों में कोई ना कोई खिलाड़ी है, उनके लिए आप जनरल तौर पर क्या सावधानियां वो बरतें कि उनकी ओरल केयर समय से होती रहे और उन्हें किसी बड़ी परेशानी से ना गुजरना पड़े?
0: देखिए, किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी सामान्य इंसान के लिए मेन चीज यही रहती है कि दिन में हम दो बार ब्रश करें और एक बार रात में हम लोग क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश होता है वो यूज करें। ये अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारी 90% दंत बीमारियां नहीं होंगी। इसके साथ अगर कोई भी बीमारी होती है तो आमतौर पर हम लोग जो कर सकते हैं घर पे वो ये है कि एक बार टॉर्च लाइट लगाएं और शीशे में एक बार अपना मुंह देख लें। हमारा मुंह हमारा एक ऐसा अंग है जिसे हम शीशे के सामने खड़े होके देख सकते हैं। मुंह जो है वो पूरे स्वास्थ्य की जो है वो एक तरह से पिक्चर दिखाता है, एक मिरर इमेज। आपको आपके दांतों की सड़न दिख जाएगी, आपके मसूड़े में अगर कहीं पे छाला हो रहा है वो दिख जाएगा, कहीं पे खाना फंस रहा है वो दिख जाएगा, ये बातें मुंह तुरंत बता। तो एक आप अपना नॉर्मल जनरल एग्जामिनेशन करिए, साथ में हर 6 महीने पर एक बार अपने नजदीकी दंत चिकित्सक से मिलिए। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे खिलाड़ी अगर कर, तो उनको आगे कोई परेशानी नहीं होगी।
1: तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए आज डॉक्टर साहिबा की सारी जानकारी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और उन्हें काफी फायदा पहुंचेगा। मैम, आप यहाँ आई, आपने इतना सब कुछ बताया, अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद रश्मि।
2: खिलाड़ियों के लिए मौखिक स्वास्थ्य, अभी आप इस विषय पर दंत चिकित्सक और इम्प्लांटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या झा से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। भेंट करता थी रश्मि गुप्ता।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
2: कार्यक्रम में आगे सुनते हैं एक और महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। विषय है फिजियोथेरेपी फॉर पोस्ट सर्जरी रिकवरी, यानी शल्य चिकित्सा के बाद किस तरह से फिजियोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है आपको वापस अपने काम में, आपकी पहले के जैसे फॉर्म में लाने के लिए। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर AS मूर्ति। आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। आपको 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 2005 से सर आप एम्स में हैं।
4: जी मैम।
2: बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर AS मूर्ति का कि
4: बहुत
2: आपने समय निकाला है और सर आप स्टूडियो में आए हैं। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं आजकल किसी न किसी कारण से सर्जरी हो रही है, चाहे माइनर सर्जरी हो चाहे मेजर सर्जरी हो, पर फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं ये इम्पोर्टेंस क्यों है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से श्रोता समझे कि सिर्फ सर्जरी करा के छोड़ नहीं देना है, आपको वापस अगर रिहैबिलिटेट होना है तो किस तरह से फिजियोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है।
4: बिल्कुल, आपने सही बताया। जो सर्जरी करने के बाद लोग ना वो ये सोच के बैठे हुए हैं, मेरे को दर्द हुआ था, मैंने जो है डिस्क सर्जरी कर लिया, मेरे को घुटने में दर्द हुआ, मैंने जॉइंट रिप्लेस कर दिया, अब तो हम दौड़ेंगे। बट यहाँ पे ये मिथ चेंज करना है, क्योंकि आपको जो सर्जरी 20% हो गया, अब रेस्ट 80% आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आने के लिए हम फिजियोथेरेपी की जरूरत है, जो बोलते हैं पुनर्वास। फॉर एग्जाम्पल, आप नी रिप्लेसमेंट कर दिए, हिप रिप्लेसमेंट कर लिए, तो अगर आप कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मसल इम्बैलेंस हो जाती है। अब उसको प्रॉपर फाइंड आउट करके क्या एक्सरसाइज करना, जो एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट है, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, जब संपर्क करेंगे तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर सिखाएंगे, आप करवाएंगे भी है। अब नी रिप्लेसमेंट के लिए आपको

0: है, सर्जरी हो गया, फिर उसके बाद आप थाई मसल्स को कैसे मजबूत करना है, एडी में जो पिंडली मसल है उसको कैसे खिंचाव करना चाहिए, ये सारे चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप नॉर्मल लाइफ में लीड करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आपने सर्जरी कर लिया, थोड़ा बहुत जो बता दिया वो कर लिया, फिर वो पेन हमेशा बना रहेगा, तो फिर वो सर्जरी करने के लाभ नहीं मिलेगा। तो वहां आप पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी करना जरूरी है। साथ साथ सर्जन ये भी एडवाइस करेंगे, सर्जरी के पहले भी आप फिजियोथेरेपी करके मसल्स के अंदर जो खिंचाव होना चाहिए, जो मजबूत होना चाहिए, जॉइंट में लचीलापन होना चाहिए, वो सारी चीज आपको करेंगे तो पोस्ट सर्जरी के बाद आप बहुत फायदेमंद में रहेंगे।
1: अच्छा, एक बात और बताइए डॉक्टर मूर्ति, कि कई बार हम ये सुनते हैं नी रिप्लेसमेंट हो गया है, हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन जब हम पता करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसने उसके बाद कुछ एक्टिविटी की ही नहीं, तो
0: बिल्कुल
1: क्या ये कारण बनता
0: बिल्कुल।
1: है?
0: आप एक छोटे से एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिसको घुटना 90 डिग्री के ऊपर मुड़ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जो जोड़ है ना उसमें बहुत ज्यादा रगड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब आपका थाई मसल बहुत टाइट है। अब आप मसल टाइट है तो इसलिए आप ज्वाइंट सरफेस बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। अब आप मान लो उस मसल्स को ढीला करना है, अब उसके लिए आप आजकल बहुत नए नए टेक्निक हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, वो सब आप अप्लाई करेंगे, वो करवाएंगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट जाएंगे, वो समझाएंगे, सिखाएंगे, वो आप उस मसल्स को लचीलापन को ज्यादा बढ़ा देंगे, तो जॉइंट सरफेस के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीव हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे लोग यही कंप्लेंट है, मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ उतरती हूँ बहुत पेन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मसल्स के अंदर वो खिंचाव नहीं है, क्योंकि हमारा डे टू डे एक्टिव में कुर्सी में बैठते हैं चले जाते हैं, कोई भी हम पुराना रिवाज फॉलो नहीं करते हैं, जो इंडियन टॉयलेट में जो बैठते हैं उखड़ मुखड़ बैठते हैं वो कोई नहीं करता है, वेस्टर्न टाइप यूज करते हैं, पलती मार के हम पुराना क्या जमीन पर बैठ के खाना खाते थे वो सब बंद हो गया डाइनिंग टेबल पे, तो जो चीज आपको नेचुरली जो बचपन से जो स्ट्रेचिंग होती रहती है वो हम छोड़ दिए हैं। अगर आप प्रॉपर बचपन से लेके अभी तक जब तक आप उकड़ मुकड़, जैसे स्क्वाटिंग बोलते हैं इंग्लिश में,
1: जी
0: या फिर इंडियन टॉयलेट में
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: बैठने का तरीका है, दूसरा पलती मार के बैठ के आराम से जो है खाना खाने का, तो ये जो चीज है ना ये हम नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये करते आएंगे तो आपको खिंचाव होती रहेगी, तो जॉइंट में प्रेशर नहीं पड़ेगी, जल्दी घुटना बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: ये आपने इस बात का जवाब दिया जो मैं अब पूछने वाली थी, कि अक्सर सुनने में आता है कि पहले तो नी सर्जरीज या ये सब रिप्लेसमेंट्स नहीं हुआ करते थे, अब क्यों इतने ज्यादा हो रहे हैं? तो आपने बताया कि हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, और जो हमारे नेचुरल जो एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में जो हम फॉलो करते थे, वो चीज अब हम नहीं कर रहे। और खासतौर पर जब बच्चों को हम देखते हैं सर, स्क्रीन टाइम और फोन के साथ या लैपटॉप के साथ वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनका बाहर निकलना भी कम हो चुका है, तो एक्सरसाइज तो दूर की बात है।
0: बिल्कुल, हमारा पुराना जवाब के साथ साथ हम उसको लिंक में ले आ रहे हैं। आप देखिए ना आजकल के बच्चों, आप देखिए, एक तो घर पे ही रहते हैं, घर पे चप्पल ही पहन के रहेंगे, वो कभी रफ सरफेस में, गार्डन में, नंगे पैर में चलते ही नहीं है, क्योंकि आपके जो फूट है ना, फूट में इतना सेंसरी पॉइंट्स हैं, तो आप बच्चे को आप ले जाके, हम लोग बचपन में क्या करते थे, खाली पैर में जाके खेलते
1: जी।
0: थे, इतना बढ़िया आर्च बनता था, जो फूट में आर्च जो है, आप एक शॉकर है, हमारा होल बॉडी के वही जो है टॉलरेट करता है। ये सारी चीज आपको जो है क्रिएट तब होती है, बचपन से ही होती है, बच्चे को एक्सपोज देते नहीं है। हर घर में देखिए कोई सीमेंटेड फ्लोर है ही नहीं है, सब टाइल्स है, तो बच्चे को वो एक्सपोज नहीं हो रहा। मैक्सिमम 100 में से कम आप देखेंगे तो 50-60% बच्चे फ्लैट फुट में रहते हैं, अक्सर कंप्लेन करते हैं चलते रहते हैं, पंजे में इतना दर्द होता है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, सब बच्चे स्कूल के बच्चे आते हैं जो हम कभी देखे ही नहीं, हम भी जब स्कूल लाइफ में हम देखा कोई भी ऐसे कंप्लेन नहीं करते, मेरे के दोस्त में मेरे कमर दर्द हो रहा, एडी में दर्द हो रहा। अब आजकल का बच्चे देखिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया, प्ले टाइम आउटसाइड प्ले टाइम कम हो गया, जाते भी नहीं है, तो ये चीज आप बच्चे को आप प्रमोट करना, बच्चे को आप ले जाना पार्क में, इवन घर के बाहर भी आप थोड़ा खाली पैर में, आप अपना घर के साफ सफाई रखिए, ये सोच के बैठे हुए पैर में कुछ ना लग जाए, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है बच्चे के भविष्य के लिए।
1: सर, ये फ्लैट फुट की आप बात कर रहे हैं, क्या फ्लैट फुट ठीक हो सकता है फिजियोथेरेपी से?
0: बिल्कुल मैम, वक्त के पहले अगर मान लीजिए अब ये जो है 18-20 साल है, अगर उस पहले अगर फाइंड आउट कर दिए उनका हम फूट, क्योंकि फ्लैट फुट क्यों हो रही है, फूट मसल्स के अंदर 4 लेयर है, अब मसल्स के अंदर प्रॉपर ताकत नहीं रहेगा तो पूरा फ्लैट फुट हो जाएगा मसल इम्बैलेंस वजह से, फिर अगर मसल्स में ताकत नहीं रहेगा बोन के अंदर जो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं रहता है। अब हम क्या करेंगे, बचपन से उनको फुट एक्सरसाइज सिखा देते हैं, आप पंजों को मांसपेशियों को कैसे मजबूत करना, उसके साथ साथ हम एक मॉडिफाइड इनसोल भी बना के दे देते हैं जो बच्चों को आर्च बना के रखता है, अब
1: कस्टमाइज्ड ही हो सकता
0: कस्टमाइज्ड है, एंड दुकान में भी, शू की दुकान में भी बोलते हैं इसमें आर्च है, भाई आर्च किसके लिए बनाया, आपने एक स्टैंडर्ड साइज में बना दिया, बट कस्टमाइज्ड टेलर मेड अगर करके देंगे तो ये आर्च भी बन जाएगा, आर्च के साथ साथ मेंटेन करने

0: के लिए हम एक्सरसाइज भी सिखा के उसको हम करेंगे
1: जी
0: ताकि
1: जी
0: फर्दर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकें।
1: जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब सर्जरी होती है तो किस तरह से फिजियोथेरेपी आप क्या क्या बताते हैं उनको?
0: देखिए सर्जरी जिस दिन होती है उसी दिन से हम जो है थोड़ा जो सर्जरी पार्ट में आप देखेंगे फ्लूड कलेक्शन रहता है, रेडनेस रहता है, तो उसको हम थोड़ा आइस पैक वगैरह देके इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं। उसमें कुछ फुट एक्सरसाइज वगैरह कर देते हैं, साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा देते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उनको सीढ़ी कैसे चढ़ना, उतरना, घुटना कैसे मोड़ना है, सीधा करना है, कहाँ पे पिलो लगाना है, वो सब हम बताते हैं। जैसे एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, फिर हम जो है मसल को मजबूत करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ चलने के जो एक्सरसाइज है या तरीका है, जो गेट ट्रेनिंग बताते हैं, वो भी हम बताते हैं कैसे चलना चाहिए, कब जो है वॉकर यूज करना चाहिए, कब वॉकर हटाना चाहिए, वॉकर से फिर स्टिक में कब आएंगे, फिर स्टिक भी कैसे विड्रॉ करना। तो ये सारा फिजियोथेरेपी एक प्रोटोकॉल होती है,
1: जी
0: तो फिर
1: जी
0: हम
1: जी
0: सिखाते भी हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर रेकमेंड करेंगे फिजियोथेरेपी करने के लिए पेशेंट। कुछ कुछ लोग समझदार हो जाते हैं, 2 दिन फिजियोथेरेपी करके एक्सरसाइज सीख के वो ये सोच के बैठे हुए हम जीवन भर यही एक्सरसाइज करेंगे, बट इसमें प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज होती
1: अच्छा
0: है। पहले सिंपल होगी, फिर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर अच्छे से हेल्दी हो गया, फिर स्ट्रेचिंग करा देते हैं, फिर गेट ट्रेनिंग करते हैं। आना
1: लगभग
0: चाहिए,
1: कितना समय लगता है किसी को पूरी तरह से रिहैबिलिटेट होने में?
0: देखिए ये कंडीशन वाइज है, टाइप ऑफ सर्जरी है, कंडीशन कैसे, उम्र के हिसाब से होती है। अब ओल्ड
1: अच्छा
0: एज है, 70-80 साल है, उनको थोड़ा लंबा चल जाता है, थोड़ा हेल्दी है, किसी को 40-45 में भी लोग रिप्लेसमेंट हो
1: पेशेंट
0: जाते
1: टू
0: हैं।
1: पेशेंट
0: हाँ
1: है एंड
0: पेशेंट
1: टाइप ऑफ
0: ऊपर
1: सर्जरी पे
0: एंड
1: डिपेंड करता
0: हाँ
1: होगा। तो सर जैसे कुछ एक्सीडेंट्स की केसेस की बात करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी हो गई या एब्डोमिनल इंजरी हो गई या किसी तरह की भी इंजरी हो सकती है, नी की इंजरी हो गई, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसमें किस तरह से आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको सही करने की कोशिश करते हैं?
0: अब जिसको हेड इंजरी हो गया, हम उनको हम आईसीयू से हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। हेड इंजरी में क्या होता है, वो सांस लेने में दिक्कत या फिर पहचानने में, उसका जो जीसीएस स्केल बोलते हैं वो अकॉर्डिंग स्केल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अब आईसीयू में हम क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट बींग फिजियोथेरेपिस्ट, वहां पे चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब वेंटिलेटर का कोई भी फॉरिन बॉडी के अंदर जाता है तो फिर वो चेस्ट इन्फेक्शन आ जाती है, बलगम वगैरह बन जाती है। अगर चेस्ट के अंदर क्लियर नहीं रहेगा यार, एक गैस एक्सचेंज नहीं होती है, तो इसलिए हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी है। पैर में टेढ़ापन नहीं आ जाए तो इसलिए वहां पे पैर में भी फिजियोथेरेपी सिखाते हैं, करते भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करें, कुछ लोग जो है बाइक एक्सीडेंट या ऊपर से गिर जा रहे, ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंट नहीं है, वो ऊपर बिल्डिंग से भी हो जाते
1: अचानक
0: गिर
1: से कुछ
0: जाते
1: हो
0: हैं
1: गया।
0: ना,
1: हाँ जी
0: तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है, गर्दन पे चोट लग जाता है, दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं। अगर उससे कमर पीठ में अगर चोट लगा वो दोनों पैर पैरालाइज हो जाता है, तो उनको भी हम जो है उसी हिसाब से फिजियोथेरेपी करते हैं। वो भी आप कुछ लोगों का आधी मसल्स काम करता है, कुछ कंप्लीट पैरालाइज हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो कमजोर मसल्स को मजबूत करते
1: जी
0: हैं 2 महीने 6 महीना, किसी किसी के 2-2 साल भी, क्योंकि हेड इंजरी में क्या होता है वो सामने वाले का पहचान भी नहीं पाते हैं। वो क्या, जब सामने वाला बात नहीं कर पा रहा, आपको पहचान नहीं रहा, तो फिर उनको तो पूरी आपका नर्सिंग केयर बहुत जरूरी, क्योंकि प्रेशर सोर बन जाती है, जख्म बन जाती है, पैर अकड़न हो जाती है, उसको तो आपको कर करके मुलायम रख के, अगर नहीं चल रहा एटलीस्ट व्हील चेयर घुमाओ, सनलाइट, क्योंकि उसमें विटामिन डी भी कम हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बाहर निकलना बहुत जरूरी है, कई लोगों को मैंने ये बोलते भी सुना है कि फिजियोथेरेपी क्या है, हम घर पे योग तो कर रहे हैं, योग से ही ठीक हो रहे हैं हम, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा
0: देखिए
1: बताएं।
0: योगा बिल्कुल आज की जो हमारा लाइफ हम जी रहे हैं, योगा बहुत जरूरी है हेल्दी पर्सन के लिए बिल्कुल। जहां फिजियोथेरेपी है वहां पे क्या है, थेरेपी डिजाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग द पेशेंट। योगा क्या है, सूर्य नमस्कार तो मतलब वही स्टेप है,
1: जनरल है
0: हाँ जनरल है
1: फॉर हेल्दी पीपल।
0: फॉर हेल्दी पीपल। अब वहां पे आप पेशेंट है, उनको कमर दर्द है, फिर हम कमर दर्द को भी जो है एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज नहीं होती है, किसी को जो है उल्टा लेट के पैर पीछे करना होगा, किसी को सीधा लेट के ऊपर करना होगा, किसी के कोर मसल्स के ऊपर ध्यान देना होगा, किसी को फैसेट जॉइंट, मतलब इसमें कई ऐसे डिजाइंड है जो पेशेंट को, हर पेशेंट का अलग थेरेपी होती है।
1: और इसमें मशीन्स भी आप बहुत यूज करते हैं?
0: मशीन्स इलेक्ट्रोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी क्या है, एक पार्ट इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर बहुत इलेक्ट्रोथेरेपी जो पेन रिलीविंग मोडालिटीज है, एक एक्सरसाइज थेरेपी है, उसमें हम एक्सरसाइज थेरेपी एक्सरसाइज भी सिखा सकते हैं। आजकल जो मैनिपुलेशन थेरेपी है, मायोफेशियल रिलीज, बहुत टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी ऐसे जो पेन किलर टाइप का ही है जो हम लगाते हैं, पेन तो कम हो जाएगा बट मैक्सिमम आजकल जो फिजियोथेरेपिस्ट हैंड्स ऑन में हो गया, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का जो मैजिक 10 उंगली में है। ये दर्द दूर करने के लिए आप एक गोली खा के रिलीव होने में जो टाइम है उससे कम टाइम पे वो 10 उंगली का जो
1: अच्छा।
0: मैजिक है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास
1: अच्छा।
0: है, वो यू मिनटों में दर्द दूर कर देगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपी के जो एक टैग लाइन है, हम फिजियोथेरेपिस्ट पेन को ट्रीट नहीं करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट दर्द को इलाज नहीं करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट दर्द

0: सेरेब्रल पाल्सी,
1: हाँ
0: डाउन सिंड्रोम है, ये सारा आप देखेंगे, वो भी डिपेंड फिजियोथेरेपी है। अब आप सीपी एसीपी में कैसे ऐसे ऐसे वैरायटीज हैं, तो उसमें माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, किसी को अकड़न ज्यादा रहता है, किसी को जो है अथिटाई टाइप बोलते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके कोई बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहता है, अटैक्सिंग बोलते हैं। वो जो पेशेंट है उसको क्या थेरेपी चाहिए, उसके एक्सपर्ट है। अब फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन, इस तरह ऑर्थो फिजियोथेरेपी अलग कोर्स हो, न्यूरो फिजियोथेरेपी अलग कोर्स हो, सुपर स्पेशलाइज्ड है।
1: जी
0: तो
1: अच्छा,
0: यहाँ पे हम ये सारी चीज हम समझाते हैं।
1: बहुत सारी जानकारी आपसे हमें मिली है और निश्चित तौर पर हम इसका फायदा भी जरूर उठाएंगे और बहुत कुछ अभी जानना भी बाकी है। तो आपको हम ये कहेंगे कि आगे भी कार्यक्रमों में आते रहिए और हमें समझाते रहिए कि फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है, और उसकी जो सब ब्रांचेस की बात करेंगे आज समय नहीं है, पर आगे हम कोशिश करेंगे इन विषयों को भी छुएं और अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अभी आप फिजियोथेरेपी फॉर पोस्ट सर्जरी रिकवरी इस विषय पर डॉक्टर ए एस मूर्ति, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में दिन में 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म कर्तव्य के कुछ गीत। इसके अलावा आज दिन में 2:30 पर आप सुन सकते हैं एक रूपक राग के मंसूर पंडित मल्लिकार्जुन। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इसके अलावा आज आप सुनेंगे 10:10 पर आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का संगीत आपकी पसंद। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। तो आपके फरमाइशों का, आपके ईमेल पर ईमेल का हमें लगातार इंतज़ार रहेगा, वक्त रहेगा 10:10 पर। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
3: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
4: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि पता चला है 22 जुलाई 2026 को कि सिक्किम के नामची जिले में NHPC के निर्माणाधीन तीस्ता विद्युत परियोजना की सुरंग में एक दुर्घटना हो गई और सूचना अनुसार 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। इस तरह की दुर्घटनाएं उस पनबिजली परियोजना के लिए या बांध बनाने के लिए होती रहती है। आखिर बांध की सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर तकनीकी क्या है, इसका विज्ञान क्या है, किस तरह से जगह का और उस जमीन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और उस तकनीक के अलावा इसमें जन जागरूकता किस तरह की होनी चाहिए लोगों के लिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा। आप भारत सरकार के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में पैनल बद्ध तकनीकी विशेषज्ञ है, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुके हैं और डिजास्टर एंड क्लाइमेट एक्शन फेडरेशन नई दिल्ली के संस्थापक भी रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री मनी कुमार। आप असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन कार्यक्रम, मेघालय की एशियाई विकास बैंक समर्थित जलवायु अनुकूलन एवं सामुदायिक जल संचयन परियोजना, सिक्किम की जल विद्युत परियोजनाओं, मराठवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न नदी जोड़ों एवं जल हस्तांतरण से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं में अपनी तकनीक तकनीकी विशेषज्ञता दे चुके हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मनी कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
5: नमस्कार।
4: सबसे पहले हम बात करते हैं बांध के सुरक्षा की, विज्ञान की, तकनीक और जन जागरूकता की। तो एक जब बांध का निर्माण किया जाता है तो उस जगह का चुनाव और बांध की क्षमता, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाता है? मिश्रा जी,

0: तो बांध का जो चुनाव होता है उसके लिए कई तरह के साइंटिफिक और रिसर्च स्टडीज की आवश्यकता होती है। जब भी सरकार किसी भी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए घोषणा करती है उसके पहले उनको सबसे प्रमुख 3 से 4 तरह की साइंटिफिक स्टडीज करनी होती है। सबसे पहले तो बांध बनाने के लिए जो उपयुक्त स्थान है उसके लिए उसका जियोलॉजिकल और साइस्मिक स्टडीज सबसे मैंडेटरी होता है, बिकॉज जहां पर बांध बनेगा उसके अंदर की भू संरचना क्या है, उसमें जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से रॉक प्रोफाइल में वो डैम बनने जा रहा है, तो उसके रॉक की स्टेबिलिटी और वहां पे जो सोयल की स्टेबिलिटी, इन दोनों का असेसमेंट बहुत डिटेल्ड रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी टोपोग्राफी के एस्पेक्ट को देखना बहुत जरूरी, बिकॉज बांध बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली विस्तृत है, जैसे की हाइड्रोलैक्टिक प्रोजेक्ट जनरेशन है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट है, फ्लड कंट्रोल है और अन्य है। तो इसके साथ साथ जो उस बांध बनाने के लिए जो लोकेशन का चुनाव करना है वहां पे जो अर्थक्वेक की क्या प्रोफाइल है, तो उसके लिए साइस्मिक स्टडीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो सकता है बांध बनाने के दौरान या बांध बनाने के बाद, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, उन सब के लिए बेसिकली मुख्यतः 3 तरह की स्टडीज प्रमुख होती है, जो एक जियोलॉजिकल असेसमेंट, उसमें उनका स्ट्रक्चरल असेसमेंट, साथ में साइस्मोलॉजिकल भूवैज्ञानिक या वहां का जो अर्थक्वेक का निर्धारण, साथ में उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा जाता है।
1: अब जैसा कि अभी वर्तमान में मानसून का समय है और बारिश अनिश्चित होती जा रही है, कभी कभी काफी एक ही साथ बहुत सारी बारिशें हो जाती है और कई बार लोग उसका पूर्वानुमान नहीं कर पाते हैं संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, तो मानसून के दौरान बांधों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है और ऐसे समय में किस तरह की विशेष सावधानियों का पालन किया जाता है?
0: इस संदर्भ में डैम जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो अलग अलग प्रबंधन के जो डैम्स हैं, जैसे कुछ डैम्स तो प्राइवेट ओन्ड होते हैं, कुछ डैम भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनका समय समय पे होता रहता है। इसमें जो डैम में जो वर्कर हैं, वहाँ के डैम के इंचार्ज हैं, वो प्री एंड पोस्ट मानसून एक इंस्पेक्शन अपने तरीके से करते हैं। साथ में ही जो भी डैम ऑपरेटर्स हैं या डैम यूनिट्स हैं, उन डैम यूनिट में एक इमरजेंसी एक्शन प्लान, एक विस्तृत जो है खाका सरकार तैयार करवाती है, जो कि नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में एक मैंडेटरी उनका एक डॉक्यूमेंट है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो होता है उसमें अगर कोई इमरजेंसी डैम में आती है, अचानक जल स्तर बढ़ता है या अगर डैम के ब्रेक की सिचुएशन होती है, तो उसमें जो इमरजेंसी एक्शन प्लान में जो भी प्रोटोकॉल्स दिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेट में अचानक पानी बढ़ रहा है, तो उस संदर्भ में क्या करें, उसमें डैम को ओपन करें, साथ में उनके जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि स्टेट में आपका डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सूचना देना, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, साथ में SDRF, NDRF, पुलिस, तो जब भी इस तरह की अचानक कोई दुर्घटना होने का ऑब्जर्वेशन होता है तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, वो पूरी तरह से निर्धारित होते हैं और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को वो सारी सूचनाएं रहती है कि कौन से पर्टिकुलर डैम में उसका EAP क्या है और EAP के अंदर कौन कौन से जो प्रभारी हैं या अधिकारी हैं जो नियुक्त हैं, किनका क्या काम है। तो इमरजेंसी जो एक्शन प्लान है वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है और उसमें डैम में आने वाली कोई भी समस्या है या अचानक जल स्तर बढ़ रहा है या कोई डिजास्टर ऊपर आ गया, कोई ग्लॉफ का इंसिडेंस हो गया, उसमें जो भी सावधानियां बरतनी है उसके लिए EAP अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और ये NDSA के एक मैंडेटरी जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, असेसमेंट है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण
1: है। ये क्या कानूनी प्रावधान?
0: ये कानूनी प्रावधान है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में। ये जितने भी छोटे या बड़े स्तर के डैम है, चूंकि भारत में अभी करीब धर्मा जो पोर्टल है करीब 6,500 डैम जो है उसमें रजिस्टर्ड है। धर्मा पोर्टल जो नेशनल सीडर सेंटर वाटर कमीशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड है भारत में जितने भी छोटे बड़े डैम है, वही ओल्ड एज डैम है जो 100 साल से अधिक कुछ डैम्स है, करीब 290 डैम भारत में ऐसे हैं जो कि 100 साल से ऊपर या ओल्ड एज डैम्स हैं, वही 50 साल से पुराने डैम करीब 1,000 से अधिक उनकी संख्या है। तो इन सब के रखरखाव, उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी असेसमेंट, या अगर कोई वहां पे दुर्घटना हो जाती है डाउन स्ट्रीम में जो जनता वहां रहती है, लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बस्तियां हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक डैम है उसका जो कैचमेंट एरिया है या उसका जो इम्पैक्ट एरिया है अगर बांध टूटता है वो काफी बड़ा है, तो इस केस में भारत सरकार ने जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में बनाया है उस डैम सेफ्टी एक्ट में इमरजेंसी एक्शन प्लान और उसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी एक मैंडेटरी ऑप्शन है। वो हर डैम यूनिट अपने लेवल पे बनाता है, उसमें सारे प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स को लिख करके कंसर्निंग जो SDSO है और NDSA उसको जमा करना पड़ता है, तो सारा जो क्रियान्वयन है वो उसी एक्शन प्लान के हिसाब से ही ऑपरेट होता है।
1: मणि कुमार जी, जो बांध के जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं उनके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार वो पहाड़ी इलाकों में देखते हैं नदी सूखी है।

0: अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में इवैल्यूएशन के लिए या इवैक्यूएशन के लिए किस तरह की प्लानिंग होती है और वहाँ के लोगों को क्या किसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है, प्रशिक्षण या जन जागरूकता कार्यक्रम आदि किया जाता है, तो वो किस तरह का है?
1: एनडीए के प्रोटोकॉल के तहत आज के डेट में जितने भी डैम्स हैं उनका हम लोग डैम ब्रिज एनालिसिस करते हैं। डैम ब्रिज एनालिसिस या डैम ब्रेक एनालिसिस के आधार पे हम ये जानते हैं कि अगर डैम ब्रिज कर जाता है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेज हो, या तो एक्सट्रीम फ्लड हो, क्लाउड ब्रस्ट हो, ग्रोव का इफेक्ट हो, एकाएक ज्यादा पानी आ जाता है, हालांकि हमारे डैम्स में उसका प्रोविजन रहता है, फिर भी अगर उस तरह के अगर सिचुएशंस आ जाते हैं उसके लिए हम लोग एक डैम ब्रेक एनालिसिस करते हैं। ये इसका प्रावधान एनडीएसए में किया गया है, ये हर डैम्स के लिए आवश्यक होता है। और उस डैम ब्रेक एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि अगर डैम ब्रेक करता है, डैम फेलुअर होता है, तो उसका पानी डाउन स्ट्रीम में नीचे के क्षेत्र में कहाँ तक फैलता है, उसका एक्सटेंट कहाँ तक जाता है, और वो पानी का जो जमाव होता है उसका क्या डेप्थ है, किस वेलोसिटी से वहां पहुंचता है, उसके अराइवल का समय क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग उस एनालिसिस के आधार पे निकालते हैं और एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनता है, और उस इमरजेंसी एक्शन प्लान में वो सारा चीज समाहित रहता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्लान इवैक्यूएशन का भी उसमें रखते हैं कि अगर इस टाइप की स्थिति आ जाती है, अगर ये हमारा एरिया इनंडेट हो जाता है तो वहां के लोगों को कैसे हम इवैक्यूएट करेंगे, और इसमें हमारा पूरा सिस्टम्स लगा होता है, हमारे केंद्रीय एजेंसी, राज्य स्तर की एजेंसी और लोकल प्रशासन और कम्युनिटी, ये सारे मिल के इस आपदा से हम लोग निजात पाते हैं। तो ये सारा प्रावधान किया हुआ है और आज की स्थिति में हम उसको करने में सक्षम है।
0: इसमें कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी एक्सपर्ट रहा हूँ, तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ साथ इमरजेंट सिचुएशन में अगर कोई डिजास्टर आती है, अचानक फ्लड लेवल हो गया या ऊपर कोई लैंडस्लाइड हो गया या ग्लॉफ हो गया, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है, क्योंकि डैम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो तीन लेवल का स्ट्रक्चर भारत में बनाता है। ऊपर तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, इसके बाद जो लोकल जो प्रशासन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये मैंडेट होता है कि अपने क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह के कोई डैम या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं तो वहाँ पे समय समय पे मॉक ड्रिल हो, एक प्रॉपर सिचुएशन को क्रिएट करके, जैसे मान लीजिए कि अचानक दुर्घटना हो जाए तो उस केस में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, लोकल जो वहाँ पे प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है और एक पूरा मॉक ड्रिल किया जाता है कि उस सिचुएशन में कैसे करें, सपोज अगर इवैक्यूएशन मास इवैक्यूएशन प्लान करना है तो कैसे करें, तो उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुली इन्वॉल्व होता है,
2: उसे लोगों को अवेयर
0: किया जाता है।
2: आजकल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह दिखने को आ रहा है, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़, फ्लड्स के भी आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप दोनों के अनुसार अंत में जानना चाहेंगे कि विज्ञान, आधुनिक तकनीक, प्रभावी कानून और जन जागरूकता, इन चारों के समन्वय से भारत को बांध सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम कैसे बनाया जा सकता है?
1: जहाँ तक बांध की सुरक्षा का सवाल है तो हमारे देश में नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बना है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। 2021 के पहले वैसा कोई यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, और जो भी होता था वो CWC केंद्रीय जल आयोग के गाइडलाइंस में किया जाता था, लेकिन ऐसा पाया गया कि बहुत सारे हमारे जो बांध हैं वो एक स्टेट के नहीं दो स्टेट के जुडिक्शन को कवर करते हैं, या फिर वैसी स्थिति में अगर कहीं कोई रिस्क है तो एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी होता है। तो ये सोचते हुए 2021 में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनी और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का गठन किया गया। उसी तरह से फिर राज्य स्तर पे भी एक कमेटी है और कमेटी के अलावे एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया जिसे स्टेट SDSO के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे चीज एक्ट के हिसाब से गठित किए गए हैं। अब रहा कि ये हमारे डैम्स के संचालन में मदद करते हैं और जो ओनर्स हैं इसको फॉलो अप करें, डैम सेफ्टी के लिए इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, इसका सर्विलेंस प्रॉपरली होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस होना चाहिए, ये सारे चीज हमारे जो अथॉरिटी है उसको देखते रहते हैं कि किसी तरह की उसमें कोई कमी तो नहीं है, और उसमें वो मदद करते हैं।
0: जैसा कि आपने बताया क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है और हमारे डैम जितने भी हैं बिकॉज बहुत सारा पानी उनमें स्टोर दूर होता है, तो उसके

0: एनडीएसई की जो गाइडलाइन है उसमें कई सारे प्रावधान है, जैसे कि सीडीएसई है, कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशन, वो अभी मैंडेटरी है सारे डैम्स को करना है और वो 2026 दिसंबर तक सारे डैम को कंप्लीट करना है। अभी भारत सरकार में जितने भी स्टेट में डैम्स है सब लोगों ने भी सीडीएसई करवाने का ऑलमोस्ट एकदम बीड़ा उठाया हुआ है। मैंने भी काफी सारे डैम में सीडीएसई में मैं कार्यरत हूँ, पार्टिसिपेट भी किया है। जो डैम सेफ्टी के इश्यूज है बहुत ही कंसर्न में है और सारे डैम ऑपरेटर्स एवं भारत सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी सेफ्टी को लेकर के कई सारे कदम उठा रहे हैं। इसमें कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं रिस्क असेसमेंट्स करने के लिए, और इसमें जैसे कि 8-10 मैंडेटरी कंप्लायंस है, स्टडीज है, जैसे कि आपका सीडीएसई है वो सबको करना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान सबको बनाना है, डैम ब्रेक एनालिसिस सबको करना है, हैजार्ड क्लासिफिकेशन होना अनिवार्य है क्योंकि डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस का उपयोग करके कैचमेंट एरिया में फ्लड लेवल कितना बढ़ेगा,
1: ड्रोन वगैरह से भी
0: असेसमेंट करते हैं। और पिछले करीब 8-10 साल में हमने बहुत सारे डैम फ्लड में डैम को टूटते हुए देखा, जैसे चमोली इवेंट 2021 हुआ, सिक्किम में 2023 में, और आपने आज जिक्र किया कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई। तो इन सबको देखते हुए एनडीएसए एक्ट में काफी सारे कंप्लायंस और स्टडीज ऑलरेडी एक्सपर्ट ने बताया हुआ है और उन सबका पालन भी डैम ऑपरेटर्स चाहे प्राइवेटली ओन डैम हो या गवर्नमेंट संचालित जो भी डैम हो वो उसको कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार ने रिसेंटली करीब 100-101 लोगों की लिस्ट भी जारी किया एक्सपर्ट की, और वो सब लोग अलग अलग प्रदेशों में जहां जैसा उनका हो रहा है वो लोग अपने हिसाब से उसको असेसमेंट में इन्वॉल्व है। भारत सरकार इस पे बहुत सचेत है और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 8-10 सालों में डैम सेफ्टी में भारत ने बहुत अच्छा काम किया, चूंकि एक ड्रिप प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फंडेड है जिसमें डैम के रिपेयर और सारी सुविधा की गई है, साथ में धर्मा पोर्टल जो डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ डैम है, इसके पहले हमारे पास नहीं थे इतने रिकॉर्ड, तो धर्मा पोर्टल में करीब 6,600 से अधिक डैम जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड में है और उसमें सब कुछ असेसमेंट वगैरह स्काडा सिस्टम के थ्रू सब कुछ हो रहा है।
1: निश्चित रूप से बांध के निर्माण के बाद बांध की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मणि कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बांध सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और जन जागरूकता विषय पर विस्तृत जानकारियां दी। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
4: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं
5: इंजॉय दिल्ली। दुरुदो सलाम बार शेरे अंधगान है अजीज। बरनामा सुबह ये माँ दर सात नौ वासी दर रही हिंद बराबर बा सात हफ्त वसी दर रही है तेहरान इला सात याद हिंद बराबर बा सात नौ तेहरान पश्चिम शवाद। इनक बख्शे फारसी बरूर मर्जी आकाशवाणी बरनामा सुबह ये खुदरा दर मौज कूता दर दिफाइए 5,180 किलो हर पश्चिमी कुरात। बन्नामा की सुबह इमरोज माह इबारतास आजिया का हंग हिंदी अखबार हिंदू जहान तराना फारसी तफसीर रूज गोफ्तार इमरूज बन्नामा की स्पॉटलाइट यक तराना फिल्म हिंदी तराने हाइये यक फिल्म हिंदी अखबार जहान बदर आखिर खुलासा ये अखबार इंजॉय दिल्ली। शुंदगा नजीज बन्नामा सुबह गायरा बाया का हंग हिंदी शुरू में गुनी।

قد جاءكم بصيرة

0: जहां द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के

0: London.
1: डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर।
2: और घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर।
1: और मैं हूँ दीपा भूषण।
2: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के YouTube और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर।
2: और श्रोताओं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और गुरबाणी का प्रकाश हर मन को शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे, यही हम सब चाहते हैं। और साथ ही दीपा, देखो आज है छुट्टी का दिन, और छुट्टी के दिन खास तौर पर थोड़ा सा आलस तो हो ही जाता है।
1: उठने में सुबह, लेकिन आलस होना चाहिए पर एक्टिव भी होना चाहिए।
2: हाँ, लेकिन आलस के साथ साथ हम ये चाहते हैं, चाहे दिन कोई भी हो आपका, छुट्टी का दिन हो या ना छुट्टी का दिन हो, पर अपनी जो रूटीन है ना वो कायम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जैसे बदली तो आपका फिर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो इसीलिए अपनी रूटीन को कभी ना बदलने दीजिए। और आज श्रोताओं के लिए जो हम जो सवाल लेकर आए हैं,
1: क्या सवाल है?
2: वो सवाल है कि आपकी दिनचर्या में सबसे ज्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है, सुबह, दोपहर या शाम? आप हमें लिख के बिल्कुल जल्दी जल्दी से अपने जवाब भेज दीजिए, और हमें इंतजार है आपके जवाबों का। तो ये था आज का सवाल। तो दीपा, कैसा लगा ये सवाल तुम्हें आज का?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा सिमरन। और तुम अपनी वो मेल भी तो बताओ।
2: हाँ, मेल तुम बताओ कि किस मेल पे हमें मेल पे हमारे श्रोता जो हमें जवाब देंगे,
1: जवाब दे सकते हैं, और आपके जवाब हम आज ही शामिल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर।
2: और साथ ही अब जब तक हमारे श्रोता हमें जवाब लिखकर भेजें, सोचें, तब तक हम अपने श्रोताओं को खूबसूरत सा क्यों ना गीत सुनवाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म थी जमी आसमां।
1: दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे विशेष दिन की। आज के आज दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। आज यानी 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, ये दिन वर्ष के सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी महासंघ IFRC ने की थी।
0: बिल्कुल। और इसका उद्देश्य आम लोगों में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को और आपात स्थिति में जीवन बचाने वाली तुरंत सहायता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, और साथ ही दुर्घटना और अत्यधिक रक्तस्राव या अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा सिमरन। और आज एक खास दिन और है। आज यानी 12 सितंबर को हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध महान रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की

0: पुण्यतिथि है। अपनी कालजयी कहानी उसने कहा था से हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा देने वाले गुलेरी जी स्वयं महान इतिहासकार और भाषाविद थे।
1: बिल्कुल, और दीपा देखो, उनकी अपार विद्वत्ता के कारण उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। और ख़ास तौर पर उनका अमर जो साहित्य जो भी था, आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। मतलब जो उनका अमर साहित्य था वो हमारा आज भी मार्गदर्शन
0: हम लोग का मार्गदर्शन कर रहा है। बिल्कुल सही कहा सिमरन तुमने। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन।
1: और साथ में दीपा, मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगी कि हमारा आज का जो सवाल है वो है, आपके दिनचर्या में सबसे ज्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है? यानी कौन सा ऐसा समय होता है सुबह दोपहर शाम, या जब आपका मतलब आप बहुत ही उत्सव, आप एनर्जी आपके अंदर हो, हाँ, और आप काम करने में बेहद खुशी महसूस करें, कोई भी काम करने में। कई बार होता है हम आलस में कोई काम कर नहीं पाते, तो हमें जो भी है आपके मैसेज वो भी हमें फटाफट से भेज दीजिए, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैसेज करने के लिए एक बार पता बता दो।
0: हाँ, हमारा पता है ईमेल के लिए fmgoalga@gmail.com।

0: दोस्तों, अभी आपने लता मंगेशकर जी का गाया हुआ शक्ति फिल्म से ये गीत सुना। और सिमरन, हमारे जो तुमने प्रश्न पूछा था उसकी कुछ मेल आने लगी हैं।
1: बताओ तो, कौन सी मेल आई है?
0: बहादुरगढ़ से मेल आई है महेश अग्रवाल जी और मीना अग्रवाल जी। वो लिखते हैं कि दीपा जी, सिमरन जी नमस्कार, और बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। और वो लिखते हैं कि कार्यस्थल पर तो हमारा शाम के समय बहुत ही हम एक्टिव होते हैं, और घर पर सुबह के वक्त हम बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ऐसा वो लिख रहे हैं।
1: और साथ में एक रजत की मेल आई है, ये है नोएडा से। इन्होंने लिखा है, नमस्कार बुआ, दोपहर के भोजन के बाद का समय मेरे लिए सबसे अधिक सक्रिय रहने का समय होता है, और ये आसान नहीं है, लेकिन शरीर और मन को आलस्य से दूर रखना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी नियमितता और इच्छा शक्ति से हम खुद को सक्रिय और ऊर्जावान रख सकते हैं। भाई देखो, बहुत ही अच्छा रजत जी ने लिखा है, और कितनी अच्छी बात कही है। हमारे मेल का जवाब बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने लिखकर हमें भेजा है। तो देखो, अगर हम बात कर ही रहे हैं कि एक्टिव कैसे रहते हैं, जीवन शैली हमारी कैसी रहती है, तो क्यों ना हम एक बात करें कि जरा एक पल रुक कर खुद से पूछिए कि कितनी एक्टिव है आपकी जीवन शैली। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारी दिनचर्या में कितना समय ऐसा होता है जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है, ये बताओ।
0: और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों, हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन शारीरिक गतिविधि अक्सर कम होती जा रही है। घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, लिफ्ट का इस्तेमाल करना, पास की दूरी के लिए भी वाहन लेना, और खाली समय में लगातार मोबाइल या टीवी देखना, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।
1: लेकिन एक्टिव रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको घंटों जिम में जाकर पसीना बहाना है। छोटी छोटी आदतें भी आपकी जीवन शैली को ज्यादा सक्रिय बना सकती हैं।
0: बिल्कुल। और मसलन अगर मंजिल पास है तो पैदल चलिए, मतलब अगर आप पास में ही आपकी जो लिफ्ट है से जाना ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो आप चढ़ के भी जा सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, लंबे समय तक बैठने के बीच थोड़ा उठकर चलिए ज़रूर।
1: बिल्कुल सही। और सुबह या शाम कुछ समय टहलना, पसंदीदा संगीत पर हल्का डांस करना, या घर के कामों में सक्रियता में हिस्सा लेना भी शरीर को गतिशील रख सकता है।
0: और दोस्तों याद रखिए, एक्टिव लाइफस्टाइल सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन को भी तरोताजा रखने का एक खूबसूरत तरीका है।
1: तो आज से खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए, हर दिन अपनी दिनचर्या में थोड़ी और गतिविधि जोड़ने का, क्योंकि स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से कदम से होती है, जैसे

0: जान पहचान पहले से थी, ये गीत अभी आपने सुना, गायक कलाकार थे आशा भोसले और किशोर कुमार, फिल्म थी भला मानुष।
1: और दीपा एक मेल आ गया है मेरे पास,
0: बिल्कुल
1: उन्होंने ये है चरण दास का मेल है, इन्होंने लिखा है कि FM गोल्ड 2 साल से सुन रहा हूँ, रोजाना जवाब भेजता हूँ, शामिल होते नहीं, आज भेजूंगा प्रस्तुतकर्ता का ना नाम, सुनते ही समझ गया कि आज तो मेरा शामिल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चरणदास जी, हमने आपका मेल शामिल किया है और हम पढ़ भी रहे हैं कि आपका मेल शामिल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, हमने आपका मेल भी शामिल किया और हम आपका नाम भी पढ़ रहे हैं। साथ में एक और मेल मेरे पास आया है, ये है अफरोज़ शेख का, इन्होंने लिखा है कि मैं तो पूरे दिन अपने काम में एक्टिव रहता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है,
0: अच्छी बात,
1: हाँ कि पूरे दिन अच्छा है, और कई बार क्या होता है कि हम किसी समय सुबह हो जाते हैं एक्टिव, कई बार हमें एनर्जी ज़्यादा होती है जब हम उठते हैं सुबह, लोग कहते हैं एनर्जी काफ़ी होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दोपहर आ जाती है तो थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाती है और शाम को थोड़ी सी और कम, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने लिखा पूरे दिन रहते हैं, तो बहुत अच्छी
0: बहुत
1: बात
0: अच्छी
1: है।
0: बात है।
1: हाँ अब अगला क्या बताने वाली हो तुम?
0: हाँ अब हम बात करने वाले हैं सिमरन, आज एक राष्ट्र एक समय की। देखो देश में घड़ियां तो पहले भी एक ही समय बताती थी, और अब जो हमारी सरकार है उसकी कोशिश है कि देश की महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की घड़ी भी

0: एक ही भरोसेमंद समय से चले।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और ख़ास तौर पर जब घड़ी की बात तुम एक कर ही रही हो तो इसका ये मतलब नहीं कि समय बदलता है, बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि समय जो नापने और रिकॉर्ड करने के लिए एक आधार जो है वो करता है ना?
0: हाँ, मतलब ये है कि समय को, समय बदलना है बल्कि समय को नापने और रिकॉर्ड करने का आधार एक करना है, कि मतलब हम समय को नहीं बदल रहे हैं। और इस उद्देश्य से सरकार ने एक राष्ट्र एक समय के तहत 27 अगस्त 2026 को नए नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरे देश में भारतीय मानक समय IST को एक समान और आधिकारिक समय के रूप में इस्तेमाल करना है। एक राष्ट्र एक समय इस पहल से देश की महत्वपूर्ण प्रणालियों को भारतीय मानक समय यानी IST को एक समान और विश्वसनीय स्रोत से जोड़ा जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और सरल शब्दों में कहें तो देश में समय जो है बताने और दर्ज करने का एक ही भरोसेमंद आधार होगा। आज हमारी ज़िंदगी का लगभग हर काम सही समय पर निर्भर करता है, जैसे कि बैंक में पैसे भेजना, प्राप्त करना, ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, रेलवे और हवाई सेवाएं, बिजली व्यवस्था, सरकारी रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड, है ना? इन सभी में ज़रूरी है कि समय और टाइम स्टैम्प बिल्कुल सही हो।
0: बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सही बात है। और अगर अलग अलग प्रणालियों में समय में थोड़ा भी अंतर हो तो लेन देन, रिकॉर्ड और सेवाओं में परेशानी हो सकती है।
1: और ये जो नियम है वो तुरंत नहीं लागू होंगे, है ना, क्योंकि इनके लागू होते ही पहले 180 दिनों का समय दिया गया है, और इस दौरान सरकारी विभाग, बैंक, कंपनियां, संस्थान और दूसरी संबंधित एजेंसियां अपनी नज़दीकी प्रणालियों के जांच करके ज़रूरी बदलाव कर सकेंगी। बिल्कुल है
0: एक
1: ना?
0: हाँ बिल्कुल सही बताया सिमरन तुमने। और दोस्तों, एक राष्ट्र एक समय का मतलब है देश के महत्वपूर्ण कामों और डिजिटल प्रणालियों के लिए समय का एक ही भरोसेमंद भारतीय मानक IST। इससे समन्वय बेहतर होगा, डिजिटल रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे और महत्वपूर्ण प्रणालियों से समय की गड़बड़ी भी कम होगी।

0: समय तू धीरे धीरे चल, ये गीत अभी आपने सुना। गायक थे किशोर कुमार, आशा भोसले और फिल्म थी कर्म। और सिमरन कुछ और मेल आई हैं, तो जो नवीन भाटिया जी हैं इन्होंने भी अपनी मेल पहले भेजी थी, जो है ये कहते हैं कि सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान के बाद ये काफी एक्टिव हो जाते हैं, ये बात उन्होंने लिखी
1: बहुत
0: है,
1: अच्छी बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेरे पास भी दीपा एक मेल और आ गया है, ये गौरी शंकर जी का मेल है और इन्होंने राम राम तो कही हम दोनों को, और साथ में इन्होंने कहा है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी है। राम वैसे काम के लिए सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, सारा दिन ध्यान काम में रहता है इंसान के, सुबह कुछ और विचार होते हैं, शाम को बदलाव आ जाता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कहा, अगर शरीर का इस्तेमाल भाग दौड़ में नहीं करेंगे तो शरीर बीमारी का घर बन जाएगा। शुक्रिया गौरीशंकर नांगलोई से, बहुत बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी, आपका मेल बहुत अच्छा था, हमें अच्छा लगा।
0: सभी जो श्रोता मेल लिख रहे हैं उनको हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज सिमरन अब हम बात करने वाले हैं सड़क नियमों के आगे शिष्टाचार, मतलब सड़क पे हमारे क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि देखो आज की जो ये हमारी बातचीत है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। हम में से बहुत सी महिलाएं हैं या और भी लोग हैं खुद कार या टू व्हीलर्स चलाते हैं, और अगर वाहन नहीं चलाते तो पैदल सड़क का इस्तेमाल तो करते ही हैं, कार्यालय जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने के लिए।
1: बिल्कुल, और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए यातायात जो है हमारी रोज़ की कहानी है, लेकिन यातायात में फंसते ही एक दिलचस्प बात होती है, हम अक्सर दूसरे को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं और बहुत जल्दी ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने कि अचानक ब्रेक क्यों लगा दी और इन्होंने दिशा रंग नहीं दिया, है ना, अपने आप ही बदल दी गाड़ी, और साथ में मेरी लेन में क्यों आ गए, ऐसे बोलने लग जाते हैं, और कई बार क्या होता है इतना हॉर्न जोर से क्यों बजा रहा है।
0: ये तो आम बातें हैं
1: जो रोज ही हर कोई बोलता है।
0: लेकिन आज एक छोटा सा सवाल खुद से भी पूछते हैं, क्या सड़क पर हमारा अपना व्यवहार ही भी उतना अच्छा है जितना हम दूसरों से चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सड़क केवल हमारी नहीं है, एक साझा स्थान है जहाँ कार चालक, दोपहिया वाहन चालक, पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग और साइकिल चालक सभी एक दूसरे के साथ जगह बांटनी होती है। सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश भी इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें सतर्क और दूसरों के प्रति संवेदनशील भी रहना चाहिए,
1: और यहीं से आता है सड़क का शिष्टाचार, यानी कि नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और लेकिन शिष्टाचार हमें

0: सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें।
1: यानी दोस्तों, दिशा सूचक देना सिर्फ एक यातायात नियम नहीं है। इससे सामने और पीछे चल रहे लोगों को पहले से पता चल जाता है कि हम आगे किस दिशा में मुड़ने वाले हैं या जाने वाले हैं। इसी तरह अगर कोई वाहन सुरक्षित तरीके से हमारी लेन में शामिल होना चाहता है, तो हर बार उसे रोकने के बजाय जहाँ संभव हो उसे थोड़ी जगह देना भी सड़क पर हमारे शिष्ट और जिम्मेदार व्यवहार की निशानी है।
0: लेकिन देखो अंतिपा, देखो कभी कभी हमारी जो परेशानियां सिर्फ यातायात की नहीं होती, बल्कि हमारा अपना गुस्सा और अधीरता जो भी होती है वो यातायात को और तनावपूर्ण बना देती है। लगातार हॉर्न बजाना, बहुत कम दूरी और साथ में बनाकर पीछे चलना, अचानक लेन अपनी चेंज कर देना
1: बिल्कुल
0: अपनी, है ना, और उसके बाद दूसरे चालक को रास्ता ना देना, ये सब सड़क शिष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है।
1: इसलिए सड़क पर हमारी छोटी छोटी आदतें दोस्तों मायने रखती हैं। सुरक्षित दूरी रखना, समय पर दिशा सूचक देना, बिना जरूरत हॉर्न ना बजाना, पैदल यात्री को रास्ता देना और सामने वाले की गलती पर तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया ना देना।
0: और दीपा देखो, ये समझना है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी और से नहीं होती, बल्कि हमसे खुद से होती है।
1: तो अगली बार जब हम सड़क पर निकले, याद रखें सड़क पर हमें एक दूसरे के मुकाबला नहीं करना है, एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहना है। सुरक्षित चलिए, संयम से चलिए और दूसरों को भी सुरक्षित चलने का मौका दीजिए।

0: और दीपा देखो, एक मेल और आ गया हमारे पास। ये आया है गाजियाबाद से, योगांशु कौशिक का। इन्होंने लिखा है
1: क्या लिखते
0: कि
1: हैं?
0: इन्होंने लिखा है कि खास तौर पर कि मैं FM गोल्ड बचपन से सुनता रहा हूँ, आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। वही, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: मेरा एक्टिव टाइम जो होता है शाम को होता है, जिसमें मैं 7-8 घंटे कम से किलोमीटर वॉक करता हूँ और फिट रहने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूँ, है
1: बहुत
0: ना।
1: अच्छी
0: बहुत
1: बात
0: अच्छी बात है,
1: है।
0: बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। और ये भी होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही एक्सरसाइज करें, आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ में मैं ये कहूँगी कि अब मैं एक बात करना चाहती हूँ कि दुनिया तो जीत ली क्या खुद को जीता हमने कभी,
1: ये तो
0: कहते
1: बड़ी बात
0: हैं
1: कही सिमरन तुमने।
0: बिल्कुल। और
1: कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीत लेता है।
0: हम सब जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अच्छा चाहिए, घर चाहिए, है ना, किसी को बड़ी नौकरी, किसी को नाम पहचान, और सबको पाने की कोशिश में हम अक्सर एक सवाल भूल जाते हैं, क्या हमने खुद को समझा है कभी?
1: दुनिया की नजरों में सफल होना आसान हो सकता है, लेकिन लेकिन अपने डर पर जीत पाना, अपने गुस्से को काबू करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा बनाए रखना, यही असली जीत है सिमरन।
0: और कभी-कभी हम दूसरों को जीत जाते हैं लेकिन अपने मन को हार जाते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में आपकी अपनी खुशी जो होती है वो भूल जाते हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी उम्मीदें क्या थी।
1: तो आज थोड़ा ठहरिए दोस्तों और खुद से पूछिए, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया लेकिन क्या मैंने खुद को जीता? क्या मैं अपनी गलतियों को माफ कर पाता हूँ? क्या मैं मुश्किल परिस्थितियों में शांत रह पाता हूँ? क्या मैं बिना किसी तुलना के अपनी जिंदगी से खुश हूँ?
0: तो याद रखिए, दुनिया की तालियां कुछ पल की खुशी देती हैं लेकिन खुद पर जीत जिंदगी भर का सुकून देती है, इसलिए दुनिया जीतने की दौड़ में खुद को मत हारिए।
1: क्योंकि आखिर में सबसे खूबसूरत जीत वही है जब इंसान आईने में खुद को देखे और कह सके, हाँ, मैंने दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को जीता।

0: दीपा मेल आ
1: हाँ
0: गया
1: ये
0: लगता है जैसे।
1: एक मेल आई है। इद्रीस सैफी जी लिखते हैं कि जो सुबह का समय होता है वो उनका बहुत एक्टिव रहता है, वो पार्क टहलने जाते हैं और वहाँ पे उनका अच्छा समय गुजरता है।
0: बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेरे पास भी एक मेल आया है, वो लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये शांति नगर सोनीपत से है। और इन्होंने लिखा है कि दीपा जी और आप मतलब बहुत बहुत आपको बधाई हो, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और
1: थैंक
0: लग रहा
1: यू।
0: है, और साथ में कार्यक्रम की प्रस्तुति शाह सदाबहार गीत बहुत सुंदर लग रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति है आपकी, अनमोल बातें और गीतों की तो उन्होंने तारीफ कर ही दी है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि दिल से बहुत बड़ी बड़ी बधाई, और साथ में आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहे और ऐसी तरह से
1: हाँ
0: एक्टिव रहे। बहुत
1: हमारी
0: बहुत
1: तरफ से
0: शुक्रिया आपका। और
1: भी।
0: साथ में एक और मेल आ गया है मेरे पास, ये है मेरठ से सुनैना गुप्ता का। इन्होंने भी लिखा है कि मेरा जो सबसे सही समय होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, और साथ में पार्क तो मैं जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, अगर ना जा पाऊँ तो घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज
1: बहुत
0: कर लेती हूँ,
1: बढ़िया।
0: तो इसलिए मेरा समय जो है सुबह का बहुत अच्छा होता है। तो चलो सुबह के समय के साथ एक और गाना भी सुनवा देते हैं।

0: और देखो दीपा, समय जो घड़ी हमारी इशारा कर रही है कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है, तो लेते हैं विदा। नमस्कार।
1: नमस्कार। आंगन
2: आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने

0: In hockey, India reached the final of the Women Junior Asia Cup 2026, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China today. For India, Supriya scored a hat-trick, while Madhu Sidhar and Sukhveer Kaur also found the net for India. Yuri Rong scored South Korea's only goal of the match. India will face the winner of the second semi-final between China and Japan in the final. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Sahib today. And that is the end of this news bulletin.
1: Ye Akashwani Delhi ka Indraprastha channel hai. Medium wave 366.3 meter arthat 819 kilohertz, DRM 810 kilohertz par. और अब समय है आपके रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आदाब, सत श्री अकाल, आपकी दोस्त और इस लाइव कार्यक्रम की होस्ट RJ रैना तंवर का स्वीकार कीजिए प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। और आज लेकर हाजिर हूं फिल्मी गलियारों से जुड़ा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जहां हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें आ अपने ही दौर में एक दर्शकों के लिए दिल पर एक छाप छोड़ दी थी। जी हां, आज की फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इसका नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दर्शाता है। जी हाँ, 1979 में रिलीज हुई ये फिल्म की कहानी रोमांस, इमोशंस, परिवार, जंगल और एक्शन के साथ इंसाफ की कहानी है, जिसमें धर्मेंद्र, रेखा और विनोद बेहरा ने अभिनय निभाया। अरे बाबा, मैंने तो शायद लगता है बातों बातों में सारे क्लू दे डाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, आज के इस फिल्मी सफर को शुरू करते हैं आप ही के साथ। तो फोन उठाएं, हमें आज के इस कार्यक्रम में किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं और किस गानों को लेकर हम आए हैं, किस फिल्म के गानों को लेकर आए हैं, हमें जल्दी से मैसेज करें हमारे इस ईमेल आईडी पर। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। जो भी सबसे पहले हमें सही जवाब देगा, जैसे कि आप जानते हैं रहना है तो ये खेल, तो हमें कुछ तो कहना है, जो भी सबसे पहले हमें सही जवाब देगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से आप फोन उठाएं और हमें मैसेज भेजें। इंतजार रहेगा इस गाने के साथ।

जी हाँ, हम जिस फिल्म की बात लेकर आज हम आए हैं, हमारे हमारे पास बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने हमें जवाब दिया है वो है हीरामणि वर्मा जी, धनतेरी धनरेगी भाटापारा से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम के हमारे फेवरेट श्रोता हैं। तो दोस्तों, आज के इस फिल्मी सफर में हम 1979 की फिल्म कर्तव्य की बात कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जिसमें धर्मेंद्र का दमदार अंदाज, रेखा की खूबसूरत अभिनय, विनोद मेहरा जी का महत्वपूर्ण दमदार किरदार है और निरूपा रॉय का इमोशनल टच और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और साथ ही लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, यानी कि एक ही फिल्म में उस दौर की कई महान आवाजों का संगम। दोस्तों, कर्तव्य की कहानी का केंद्र है विजय, जिसका किरदार निभाया था धर्मेंद्र जी ने, विजय नाम से, और एक वन अधिकारी हैं। और कहानी जंगल, वन्य जीवों और अपराधी की दुनिया से जुड़ती है। विजय के सामने सिर्फ अपनी नौकरी निभाने की चुनौती ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और अतीत से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की भी है। यही वजह है कि शायद जहां फिल्म का नाम कर्तव्य अपना असली अर्थ सामने लाता है, क्योंकि कर्तव्य सिर्फ नौकरी निभाना ही नहीं होता, कर्तव्य सही और गलत के बीच सही फैसला लेना भी होता है।

जी हाँ, क्या आप जानते हैं विनोद मेहरा वाले ग्रे शेड विलन यानी कि दुष्यंत के रोल के लिए ये मेकर्स की जो पहली पसंद थी वो जितेंद्र जी थे। जितेंद्र साहब इस रोल के लिए पहले मान भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्हें डर था कि एक नेगेटिव रोल करने से उनकी चॉकलेटी जो छवि है वो हीरो वाली इमेज खराब हो जाएगी। और दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने भी इस फिल्म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड के रूप में स्पेशल अपीयरेंस भी दी है, लेकिन उनका नाम फिल्म के टाइटल स्क्रीन में नहीं दिखाया गया। और इसी तरह से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए, और हमें अपने हौसला अफजाई मिल जाती है अगर आप हमें मैसेज करते हैं। और स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी ने हमें मैसेज किया है इस कार्यक्रम में। और उसी तरीके से हमें भूषण खेरा जी ने मैसेज किया है पंजाब से, और विशु शालिनी खेड़ा, और इन सभी ने हमें मैसेज किया है। बिट्टू गंगेजा ने भी, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा, इन्होंने हमें मैसेज, थोड़े सुदर्शन शाह जी ने हमें मैसेज किया है, और नितेश देवांगन जी ने, दुर्गा, पराग, पूना, कृष्णा देवांगन जी ने हमें मैसेज किए हैं, राजकुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और सुदर्शन मुखी जी ने, नीता, सिमरन, शांति नगर, सोनीपत जी हमें मैसेज कर रही हैं, और हीरामणि जी ने हमें किया ही था, डोल राणा जी ने मैसेज किया, प्रकाश वर्मा जी ने, प्रिंस निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा जी ने मैसेज किया है, आर कुमार जी ने मैसेज, पिंकी मिंटू पंजाब से, वनमीत खेड़ा,

जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आरजे रैना के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है 1979 की फिल्म कर्तव्य। इस फिल्म की जो से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म कन्नड़ सिनेमा की मशहूर फिल्म गंडागुड़ी की रीमेक है और 11 मई 1979 की रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा उस दौर में बच्चों और परिवारों के बीच ब्लॉकबस्टर गाना हिट हुआ।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म कर्तव्य की, और फिल्म बनने के दौरान बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हुई, जैसे कि विनोद मेहरा की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल रही। इस फिल्म के दौरान मीना से शादी की थी, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक स्टंट सीन करते समय उनका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। फिल्म में सितारों की जिंदगी कैमरे के सामने जिंदगी ग्लैमरस तो होती है, लेकिन कैमरे के पीछे उतनी ही मेहनत और मुश्किलें होती हैं। और हमारे पास बहुत सारे इस तरह से मैसेज आए हैं। धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया है हमारे राजस्थान से, कपिल ईशान पूजा जी का मैसेज आया है, और इशाक मोहम्मद जी का हमें आया है, आफरीन, खतीजा बेगम, नीलोफर वातिमा हमारे पास हमें मैसेज कर रहे हैं, देवशंकर तमुरिया जी का मैसेज आया है के फिल्म से। जी बिल्कुल सही जवाब आपका भी है, छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं डोडी लोहरा बहलोद, देवशंकर तमुरिया जय, तुषार डॉली बेबी पूजा और राधिका प्रभा देवी, मास्टर अल्प कबीर, और फागुनी राम यादव जी हमें मैसेज कर रहे हैं, और फागुराम ज्योति ओजस्वी, और इसी तरह से सुधाकर जाधव जी ने हमें मैसेज किया है, प्रशांत राधे और राजे जाधव देशमुख और सचिव संचित देशमुख, और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज आने का, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप हमें मैसेज करते रहिएगा, और सुनते हैं अगला ये नगमा।

गुरमीत जी का साउथ एक्सटेंशन से हमें मैसेज आया है, और इसी तरीके से स्वर्ण सिंह जी का, दलजीत राजे, गुरनूर गुरनाल अविराज जी, संजय ढींगरा जी, देवशंकर तमुरिया जी का, और धर्मेंद्र छिप्पा जी का, संदीप मकर जी का, राजकुमार जी का, संदीप मकर, अनिल मोहन जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से अजीत भास्कर का भी मैसेज आया है, और राधेश्याम देवांगन जी का, और लाल गिरी जी का, फारूक अली खान का, धर्मेंद्र छिप्पा जी का, दिग्दर्शन जी का, पीएस नावस्कर का, भूषण खेरा जी का, कमलकंत का, स्वर्ण सिंह का, धर्मेंद्र छिप्पा, अभी बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी श्रोताओं का नाम इस कार्यक्रम में शामिल करें।

सदानंद मधुकर जी का मैसेज आया है, सुशीला सदानंद कुमार गौरव जी का मैसेज हमें आया है, कमलकांत जी का आया है और मसूर हसन जी का हमारे पास मैसेज आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।

तो दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते बहुत बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हमें निभानी पड़ती हैं, क्योंकि अधिकार हमें खुशी दे सकते हैं लेकिन कर्तव्य हमें पहचान देता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आरज रैना तंवर का लेती है आप इस कार्यक्रम से विदा। फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म की कहानी, उसके गीत, अनसुने किस्सों के साथ। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके चेहरे को दे सुकून। एक अच्छा नागरिक बने। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो रहा है हमारे पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला बुलेटिन दिया खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च इथोपिया ते मलेशिया दे प्रधानमंत्रियों समेत कई ब्रिक्स नेतावां नाल दुवल्ली गलबात कीती। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने अज अपने 7 साल पूरे कर ले ने। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दे दूजे पड़ा तहत 18,77,000 मकानों नूं मंजूरी दित्ती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व अज धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। हाकी विच भारत दक्षिण कोरिया नूं 5-1 नाल हरा के महिला जूनियर एशिया कप हाकी टूर्नामेंट दे फाइनल च पहुंच गया है। होर खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च 18वें ब्रिक्स सम्मेलन तो वख इथोपिया दे प्रधानमंत्री डॉ अबी अहमद अली नाल दुवल्ली गलबात कीती। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोवां नेतावां दरमियान हुई चर्चा दा उद्देश दुवल्ली रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करना सी। दोवां नेतावां ने आर्थिक सहयोग, रक्षा अते सुरक्षा भाईवाली ते समर्था निर्माण समेत मुख खेत्रां च प्रगति दी समीक्षा कीती। दोवां नेतावां ने आपसी हित दे खेत्री ते आलमी मुद्दयां उत्ते वी विचार सांझे कीते। बहुपक्षी फोरम च नजदीकी सहयोग प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें ब्रिक्स सम्मेलन च इथोपिया की हिस्सेदारी की शलाघा की ते कहा कि इस दी मौजूदगी ने ग्लोबल साउथ की समूहक आवाज नूं होर मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम नाल भी दुवल्ली गलबात की। मीटिंग दौरान दोवां नेतावां ने व्यापार ते निवेश, रक्षा ते सुरक्षा अते लोकां तों लोकां दे संबंधां समेत वख-वख खेत्रां च दुवल्ले सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने फरवरी महीने च प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा दौरान हुई प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत संबंधों मजबूत करने च मलेशिया के निरंतर समर्थन की शलाघा की। दोनों नेतावां ने आपसी हित के मुख खेत्री आलमी मुद्दों उत्ते विचार विरांदरा किया। भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक भाईवाली होर अगे वधाने लई अपनी वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने आबू धाबी के वली अहद शहजादे शेख खालिद बिन मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग नाल भी दुवल्ली गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाल भी दुवल्ली गलबात करेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अज नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विच शुरू हो रहा है। दो दिनां दे इस विश्व पद्धरी सम्मेलन च विकासशील अते उभरदे अर्थचारियां वाले 11 देश शामिल होणगे। इन्हां च ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका अते संयुक्त अरब अमीरात शामिल ने। इस उच्च पद्धरी सम्मेलन दौरान ब्रिक्स मंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च इथोपिया अते मलेशिया दे प्रधानमंत्रियों समेत कई ब्रिक्स नेतावां नाल दुवल्ली गलबात कीती। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने अज अपने 7 साल मुकम्मल कर ले ने। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूजे पड़ा तहत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व अज पूरी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। ते हाकी विच भारत दक्षिणी कोरिया नूं 5-1 नाल हरा के महिला जूनियर एशियन कप हाकी टूर्नामेंट के फाइनल च पहुंच गया है। इहदे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशिक खबरां दा बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। दो रोजा सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की शिरकत के दरमियान आलमी तर्ज हुक्मरानी, कसीर जहदी तजारत, सिक्योरिटी और सप्लाई चैन से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के सदर शी जिनफिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी ने मलेशिया के हमनसब अनवर इब्राहिम के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने आसियान भारत ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मलेशिया की मुसलसल हिमायत को सराहा। वजीर आजम मोदी ने इथोपिया के अपने हमनसब डॉक्टर आबी अहमद अली, अबूजबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वियतनाम के वजीर आजम ले मिन हुंग के साथ दो तरफा मुदाकरा किए। यमन में हौथी बागियों ने बहेरा अहमर में वाक़ अहम तजारती गुजरगाह के कलीदी अहमियत के हामिल जजीरों पर कब्जा कर लिया।

0: किया है, जिससे बुहेरे अहमर की अहम बहरी तजारतगाह पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। सऊदी अरब ने हमले के बाद कलीदी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने जनूबी कोरिया को 1-5 से शिकस्त देकर जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला चीन के शहर मोची में खेला गया। और यूएस ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन आरियाना सबालिन्का आज रात न्यूयॉर्क के फाइनल में दूसरे दर्जे की खिलाड़ी एलेना रैबाकिना का सामना करेंगी। अब खबरें तफसील से। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया के अपने हम मनसब डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ दो तरफा बातचीत की। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा कलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इक्तसादी ताउन, दिफा और सलामती के शोबे में शराकतदारी और सलाहियत साजी समेत अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में इथोपिया की शिरकत को सराहा और कहा कि इथोपिया की मौजूदगी ने आलमी खित्ते जनूब की इज्तमाही आवाज को मजीद मजबूत बनाने में मदद दी है। वजीर आजम ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर जो भारत की सदारत में मुनाकिद हो रही है, मलेशिया के अपने हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तजारत और सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के राबते समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इस साल फरवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मलेशिया के दौरे के नतायज की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने आसियान भारत ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मलेशिया की मजबूत हिमायत की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने वियतनाम के अपने हम मनसब ले मिन हुंग के साथ मीटिंग में ब्रिक्स में शराकतदार मुल्क की हैसियत से वियतनाम की शिरकत का खैर मकदम किया। वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका फराहम हुआ। इस साल मई में वियतनाम के सदर तू लम के भारत के सरकारी दौरे के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद जामे स्ट्रेटजिक साझेदारी की सतह तक ले जाया गया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया और शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। भारत और वियतनाम के दरमियान तवील अरसे से दोस्ती कायम है, जो मुश्तरका तहजीबी विरसे, बाहमी एतमाद और इफहाम व तफहीम पर मबनी है। वियतनाम भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून और जनूबी मशरकी एशिया के साथ भारत के वसी तर रवाबित में एक अहम शराकतदार मुल्क है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबूजबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के साथ भी दो तरफा बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चीन के सदर शी जिनफिंग के साथ भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये छोटी कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स मुल्कों की शमूलियाती हुक्मरानी और कसीरुल जहती को मजबूत करने पर मबनी इजलास के साथ शुरू होगी। इसके बाद ब्रिक्स रुकन मुल्कों के आला रहनुमा भारत मंडपम में मुनक़िद भारत इनोवेट्स नुमाइश का भी दौरा करेंगे। इसके बाद वो इज्तिमाई शजरकारी करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए दिए जाने वाले खसूसी इशाइये में शिरकत करेंगे। वहीं कल ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दूसरे दिन मुनक़िद होने वाला इजलास जिद्दत तराजी, इश्तराक और इस्तेहकाम, शमूलियाती आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तश्कील पर मबनी होगा। इस इजलास में रुकन ममालिक के अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, योगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे मुआविन ममालिक भी शामिल होंगे। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की आबादी में लगभग 50%, आलमी GDP में 40% और तिजारत में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। ब्रिक्स टीम के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: बेलारूस के वजीर खारजा मैक्सिम रिजनकोव भी आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत और बेलारूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिनमें खसूसी तौर पर दो तरफा और कसीर जहती शोबों में वसी पैमाने पर बढ़ता हुआ ताउन है। वियतनाम के वजीर आजम ले मिन हुंग भी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर वजीर ममलकत बराए शहरी हवाबाजी मुरलीधर मोहोल ने उनका इस्तकबाल किया। भारत और वियतनाम के दरमियान मजबूत जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी कायम है, जो देरीना दोस्ती और ताउन पर मबनी है। इससे कबल आज सुबह आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल डॉ टेड्रोस एडनाम गेब्रेसेस भी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए دلی پہنچے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا دورہ مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے لیے صحت

0: नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत, सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इस मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में

0: रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति
1: जी, आनंद धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
3: India's innovation भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व तक।
4: From lab to market, from India to world.
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसी

0: के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरूषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से प्राप्त रूपक। शास्त्रीय संगीत के अमर गायक, स्वर साधक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर पर केंद्रित है हमारा आज का रूपक। लेखक डॉक्टर सुनील केशव देवधर, प्रस्तुति देवकी कुलकर्णी। आइए सुनते हैं रूपक राग के मंसूर पंडित मल्लिकार्जुन।

0: भारतीय शास्त्रीय संगीत समन्वय का अन्यतम उदाहरण है। भारत के कंपोजिट कल्चर सामासिक संस्कृति के अविरल धारा, धर्म जाति संप्रदाय से परे सिर्फ और सिर्फ स्वर की साधना।
1: याद आते हैं घराने जहां स्वर ही देवता है।
0: आगरा घराने के गायक गुरु पंडित श्री कृष्ण बुआरा तंजंकर गाते हैं बंदिश सुमिरसा हे बसुलतान, और रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद इनायत खां की पेशकश प्रथम धर ध्यान गणेश। इसे दोहराते हैं गुलाम।

ये संगीत ही है जिसकी साधना उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर के शारदा मंदिर में करते हैं और उस्ताद बिस्मिल्ला खां वाराणसी के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में।

0: और पंडित रामशरण मिश्र पुत्र प्राप्ति की मन्नत के बाद पुत्र का नाम ही दरगाही मिश्र रखते हैं।
1: और इतना ही नहीं, एक नाम ही ऐसा है जिसमें तहजीब की खुशबू और संस्कृति की सुगंध बसती है, वो नाम है
0: पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर।

0: मल्लिका का अर्थ है अगर की गंध या चमेली का फूल। मंसूर अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ है विजेता या अजित, अजिंक्य। अर्जुन उज्ज्वल, दिन सा उजाला, रुपहला और पवित्र।
1: हम कह सकते हैं अपने पवित्र स्वर की सुगंध या खुशबू लिए राग के रथ पर आरूढ़ जेत्ता या विजेता से उज्ज्वल और धवल हैं।
0: पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर।

0: धारवाड़ जिले के मंसूर गांव के एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ। तारीख थी 31 दिसंबर 1910। छोटे से गांव में शिक्षा की सुविधाएं कहां थी, इसलिए पिता श्री भीमरायप्पा मंसूर ने प्राथमिक शिक्षा के लिए धारवाड़ भेजा।
1: स्कूली शिक्षा आरंभ हुई, लेकिन इस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बालक मल्लिकार्जुन के मन में संगीत कला के लिए एक आंतरिक स्फूर्ति और लगाव था।
0: संगीत की आरंभिक शिक्षा अय्यप्पा स्वामी ने कर्नाटक शैली में दी और उसके बाद ग्वालियर घराने के नीलकंठ बुआ से प्रशिक्षण प्राप्त कर मल्लिकार्जुन मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर आदि नगरों में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे।

पंडित मंसूर का विशिष्ट योगदान है कि उन्होंने कन्नड़ साहित्य में वचन और रगड़े गद्य की अधिकता वाली एक शैली को संगीत की शैली में ढालकर उसे लोकप्रिय बनाया।

पंडित मंसूर के गायन पर उस्ताद अल्लादिया खां के बेटे उनके गुरु मज्जी खां और भुर्जी खां का अत्यधिक प्रभाव है। कहते हैं, पंडित मंसूर के गाये राग गौड़ मल्हार और अडाना की प्रस्तुति से प्रभावित होकर ही उस्ताद मज्जी खान ने उन्हें अपना गंडाशिष स्वीकार किया।

0: एक किस्सा कहा सुना जाता है। पंडित मंसूर एक महफिल में गायन प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने तान ली और श्रोताओं में उपस्थित गायन के जानकार ने कहा,
1: आपके उस्ताद तो ऐसी तान नहीं लेते थे।
0: पंडित मंसूर का उत्तर था,
1: मैं अपने उस्ताद का शागिर्द हूं, स्टेनोग्राफर नहीं।
0: और उसके बाद उन्होंने वो तान भी ली जिसे उनके गुरु उस्ताद मज्जी खान लिया करते थे।
2: मंजी खास और

0: सन 2010 पंडित मंसूर का शताब्दी वर्ष था। आयोजन हो रहे थे, कैटलॉग और फोल्डर्स प्रकाशित हो रहे थे। एक पर अपने शुभकामना संदेश में स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी ने लिखा था,
1: पंडित मंसूर वॉज माई सीनियर एंड वी शेयर्ड मैनी क्लोज मोमेंट्स। हिज टोटल डेडिकेशन टू म्यूजिक एंड पैशन फॉर सिंगिंग मेड हिम द आइडियल म्यूजिशियन एंड अ ट्रू तपस्वी।
2: पंडित मंसूर मेरे वरिष्ठ हैं और हमने कई आंतरिक पल साथ बिताए हैं। उनका संगीत के लिए संपूर्ण समर्पण और गायन के जुनून ने ही उन्हें आदर्श संगीतज्ञ और सच्चे अर्थों में तपस्वी बनाया।

0: वैसे तो रागों की अदायगी का अपना रंग और राग है, और जयपुर अत्रोली घराने के पंडित मंसूर को कुछ अप्रचलित रागों की अदायगी में निपुणता हासिल थी। इस संदर्भ में राजशेखर मंसूर बताते हैं,
1: जयपुर अत्रौली घराने ने शुरू से ही लीक से हटके ऐसे रागों को छांटा जो बाद में तो अप्रचलित हुए भी, लेकिन उस समय भी वो बड़े ही वक्रत्व लिए हुए थे। तो
2: हाँ जी,
1: ऐसा कौन सा उन्होंने चॉइस की जिसके कारण ये कुछ अंग जो हैं, विशेष तौर से कान्हड़ा अंग
2: हाँ जी,
1: और बिलावल अंग, इन्हें ही ज्यादा छाटा गया, इनके ही राग ज्यादा आए प्रचार में जयपुर वालों के लिए?
2: हाँ,
1: जी
2: इसका उत्तर मैं दे दूंगा। ये जो जयपुर अत्रौली घराने का सिस्टम है, इसका उद्देश्य ये है कि

0: विशेष अंग, अष्ट अंग बोलते हैं हम, इनको अलग अलग रख के नहीं बनाए। आलाप, उसके बाद बोल, उसके बाद बोलबाट, ऐसा नहीं किए, क्योंकि वैसे करने से क्या होता है, सिंपल बन जाता है, सिस्टम ही सिंपल बन जाता है।
1: शुद्ध नट, हेम नट, खट और शिव भैरव, इसके अलावा बहादुरी तोड़ी जैसे राग उनकी गायन शैली से नई पहचान पाई।

पंडित मंसूर लय और ताल दोनों में भाव तत्व की मौजूदगी के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। उनका स्वर ताल के साथ मिलकर अभिव्यक्ति और व्यंजना को और भी अधिक तरल और मुखर कर देता है और एक अकल्पनीय नाद की रचना हो जाती है।

0: पंडित मंसूर ने कन्नड़ में अपनी आत्मकथा लिखी मेरी संगीत यात्रा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माई जर्नी इन म्यूजिक उनके बेटे राजशेखर मंसूर ने किया। अपनी इस आत्मकथा को उन्होंने रसयात्रा कहा। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है,
1: मेरे लिए कोई भी महफिल उन कभी न समाप्त होने वाली महफिलों का विस्तार भर है जो मेरे मन में लगातार चलती रहती हैं। जिंदगी मेरे लिए एक सुरीली महफिल है और मैं उसे श्रोताओं के सामने उनकी टिप्पणी के लिए गाता हूं। बरसात का पानी नदी में गिरता है और नदी एक बार फिर समुद्र तक पहुंचती है, समुद्र से समुद्र तक। इसी तरह मैं अपना संगीत समर्पित करता हूं शिव के डमरू को, जहां से वो निकला है, शिव से शिव तक। सिर्फ भगवान शिव ही मेरे संगीत के गुण की परख कर सकते हैं।

पंडित मंसूर के लिए संगीत वो अवस्था है जहां आस्था और कला एक साथ समाहित होते हैं। उनका स्वर आत्मलय होने लगता है और ब्रह्मनाद बनकर राग की भीतरी तहों को भिगोता हुआ अंतर को रससिक्त कर चराचर का अभयगान बन जाता है। लगता है उनका स्वर ईश्वर की शोध में, सत्य की खोज में रत है।

0: पंडित मंसूर का मानना था कि गायन के पीछे कुछ वेदना, कुछ उत्सर्ग होना चाहिए। राग की अपनी प्रकृति होती है और गायक का अपना स्वभाव। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक शेर में कहा है,
1: इन रागों का राज कोई पूछे हमसे, अफलाक खनक रहे हैं ताल सम से, मिट्टी तेरी है हिंद नरमाई हुई, सीता और शकुंतला के अश्के हमसे।
0: संगीत उस सनातन और प्राकृतिक भाषा का नाम है जहां मनुष्य नहीं, मनुष्यता व्यक्त होती है। पंडित मंसूर अक्सर एक पंक्ति गुनगुनाते हैं, मन मत मार।

0: जाना तो हम सबको है, लेकिन किसी कमी या नुकसान का एहसास नहीं होना चाहिए।
1: सन 1928 से 1992 तक पंडित मंसूर स्टूडियो और मंचों पर विराजित रहे। 12 सितंबर 1992 का वो दिन जब धारवाड़ में ही देह की गति थम गई। पर स्वर तो आज भी है।

0: उनकी स्मृतियां गायन में तो है ही। कर्नाटक सरकार ने उनके निवास स्थान मृत्युंजय को म्यूजियम के रूप में सबके लिए खुला रखा है। ये म्यूजियम कर्नाटक सरकार के कन्नड़ भाषा एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत हर वर्ष 12 और 13 सितंबर को राष्ट्रीय संगीत सभा का आयोजन करता है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, संगीत का एक ऐसा उदात्त स्वर जिसके लिए कवि अशोक वाजपेयी ने लिखा,
1: वे गाते हैं तो बहुत कुछ प्राचीन हम में जागता है, गूंजता है ऐसे जैसे कि सब कुछ सुरों से ही उपजता है, सुरों से ही निपजता है और सुरों में ही निवसता और मरता है।

अभी आपने सुना रूपक राग के मंसूर पंडित मल्लिकार्जुन, वाचक स्वर गौरव शिम्पी, डॉक्टर सुनील केशव देवधर और गौरी लागू। रूपक के लेखक डॉक्टर सुनील केशव देवधर, प्रस्तुति सहायक सोनाली गोगले, प्रस्तुतकर्ता देवकी कुलकर्णी। इस रूपक की निर्मिति आकाशवाणी पुणे केंद्र की थी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो ये ब्रज धरा धन्य है, यहाँ पे एक उत्सव जावे तो दूसरो आए जावे। कृष्ण जन्माष्टमी हम सब ने बड़े ही हर्षोल्लास के संग मनाई है, नंदोत्सवन को दौर चल रहे हो और यही दौरान राधा जन्मोत्सव है, बाकी तैयारी ब्रज में शुरू हो गई है और परंपरागत तैयारी इनके तो नृत्य गोपाल जी कहने ही कहा।
1: चंपा जी कि धन गोपी धन गोप धन्य सुरभि वनचारी, धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे वनवारी।
0: जी
1: तो जहाँ हमारी कन्हैया ने जन्म लियो, जहाँ हमारी लाडली जी श्री राधा जी ने जन्म लियो, वह भूमि पे उत्सवन की तो कमी ही कहा है। देखो बरसाने में बड़ी तैयारी चल रही है राधा जन्मोत्सव की, और ये जो राधा जन्मोत्सव है जाकू के 19 सितंबर को मनाया जाएगा, और यह महामंगल की जो बेला में बरसाने को अपनो स्वरूप है ना, या में गहवर वन की पूरी परिक्रमा, बरसानो अष्ट सखिन के गांव, ये सब तो ऐसे सजे भये हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, देखो आप जो परंपरागत तैयारी इनकी बात कर रहे हो ना, तो वहां में महाभिषेक होएगो, दधि कांदो भी लुटेगो, तो उनकी जो नैनाविराम छवि है ना, भक्तन के मन को ऐसी मोहेगी, भक्त वहाँ स्वयं आके बरसाने में ना अपने आप को धन्य धन्य समझेंगे कि बरसाने में तो राधा जन्माष्टमी को, राधा जन्मोत्सव को जो पर्व है ना, हर्षोल्लास के संग मनेगो ही। ब्रज धरा अगर हम वृंदावन की बात करें ना, तो सेवा कुंज, बड़ो रास मंडल, हिताश्रम और प्रिया वल्लव जो मंदिर है, जो सायत को जो सूरदास आश्रम है, वहाँ पे भी है ना जो परंपरागत तैयारी है राधा जन्मोत्सव की वे चल रही हैं।
1: पूरे वृंदावन में चाव बधाई उत्सवन की शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। आज बधायो वृषभान के कीरत जाई किशोरी है।
0: देखो नृत्य गोपाल जी, संतन की वाणी और रसकन की वाणी के तो कहने ही कहा, बड़ी सुंदर रचना है। विष्णु चरावत गाय फिरे चतुरानन ज्ञान भयो निर्ज्ञानी, शंभु सखी बन नाच उठ्यो अरु इंद्र कुबेर भरे जहाँ पानी, भानु थके ब्रज भान की पो रही नंदन चंद्र कहो किमी मानी, राज करें ब्रज मंडल को ब्रज भान सुता बन के ठकुरानी।

0: प्यारी भैया बहनाओ, अभी आप राधा रानी को समर्पित या लोकगीत को सुन रहे हते नृत्य गोपाल जी।
1: जी चंपा जी,
0: राधा जन्मोत्सव की जो महामंगल की बेला है वो ब्रज धरा में आई वे बारी है, और जहाँ सेवायत गोस्वामी जन है, ब्रजवासी है, और उनके संग जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि जितने भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त या वक्त बरसाने की पावन धरा में पधारवे वारे हैं, तो उनकी जो व्यवस्था होगी वहां में कोई कसर ना रह जाए, तो या की जो अनेकानेक स्तरन पे तैयारी है वे चल रही है, अगर आपके हैं तो कछु ऐसे ही भाव की ओर अपने श्रोता भैया बहनान को ले चले।
1: हाँ चंपा, नेकी और पूछ तो यह बात में ज्यादा सोच भी की कहा आवश्यकता है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, आप बात तो सही कह रहे हैं।
1: तो आओ प्यारे भैया बहनाओ, आपको सुनवा में एक भेंट वार्ता जाको विषय है राधा अष्टमी महामहोत्सव बरसाना व सांस्कृतिक पर्व बूढ़ी लीला। और या में भेंट वार्ता के ताई हमारे बीच में है आज सुशील गोस्वामी जी, जिनसे बातचीत कर रही हैं आपकी चंपा बहन।
0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में सुशील गोस्वामी जी आपको स्वागत है, अभिनंदन है।
2: चंपा जी आपको भी बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, और सुनने वाले सब भैया बहनों को भी राधे राधे।
0: गोस्वामी जी देखो, जो राधा जन्मोत्सव को परम पावन पर्व ब्रज धरा में आए वे बारो है, तो या की जो परंपरागत रूप से तैयारी है वे कहा रूप में या वक्त बरसाने में हो रही है।
2: देखो चंपा जी, जब राधा जी को नाम आवे तो मन मयूर बरसाने के ब्रह्माचल पर्वत पे पहुंच के नृत्य कर भी लग जाए। और वहां में भी जब आपने राधा जन्मोत्सव की बात करी है तो हम ब्रजवासी के मन में तो जन्माष्टमी निकली और राधाष्टमी की हिलोर मार भी लग जाए।
0: हाँ।
2: बरसाना पूर्व मंदिर ऐसो जगमगावे दुल्हन की तरह, हमारे गोस्वामी जनन द्वारा बधाई समाज गायन, और राधा रानी को जन्म तो भोर में भयो ना, श्री ब्रजवान के आंगन मंगल भीर। ये बधाई को पद है मंगल को, और ये बता मैं कि मंगला आरती के समय पद हो जो या पद गावे वाको मंगल ही मंगल करे राधा रानी।
0: तो गोस्वामी जी एक पद ये भी तो सुनबे में आवे है ना, जो संत जनन की रचना है, ब्रंद ब्रंद जुबती चली योखे देत आशीष, मोहन जुअर उलाडली जीवो माई कोट बरीस।
2: कोट बरीस
0: तो ये कौन से पद की श्रेणी में आवे?
2: ये जब हमारे पदगन को गायन हो ना बधाई इनको, तो उनमें ये जो आप बात कर रही हो ये आशीष है। सकल सृष्टि को आशीर्वाद प्रदान करें नंदलाल और लाडली जी, यहाँ उनके जन्म पे ब्रजवासी जन आशीष दे उनने।
0: तो आशीष को भी जो दौर है, आशीषन की जो न्योछावर है वो भी बालक को मिलेगी।
2: अरे क्यों ना, बाबा के पास जाएं, मैया कीर्ति के पास जाएं, बधाई मांगें और चिरजीव ब्रजवान दुलारी आशीर्वाद दे के हमें।
0: तो ये तो अष्टमी को महामहोत्सव है, पर या के कोई ऐसे कार्यक्रमन की भी रूपरेखा है कि राधा अष्टमी आज है और उनको जो शुभारंभ है वो का दो दिन पहले थे हो गए हो?
2: हाँ देखो, राधा अष्टमी से पहले राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी ऊंचे गांव में रहे।
0: हाँ,
2: तो
0: हाँ?
2: ललिता छठी मनाई जाए, वही दिन थे उत्सव की श्रृंखला प्रारंभ में जाए, और सप्तमी के दिन सबरे बरसाने के वासी आसपास के गांवन के लोग चा बधाई में बड़े बड़े डलान में बढ़ के पकवान है पूरी पुआ कोमरी वस्त्र आभूषण लेके और श्री जी के मंदिर में जामे चार बधाई को लेके। और यहाँ में तो वर्णन आवे के चार बधाई नंद बाबा यशोदा मैया लेके गए। पदन में उल्लेख आवे चाब जसो मत ले चली राधा जन्म उमा, और गोपी गोप बने ठने भूषण भसन सिंगार, मतलब खुद भी सिंगार करके गए
0: जी।
2: लाली को जन्म है तो ऐसे थोड़ी जाएंगे कोई साधारण भाव में। आज बधायो मायरी नंद दरबार, ब्रज बनता सब मिल मंगल गावो, और सज चलो कंचन थार, थारन ने सजा सजा के ब्रज की जो बनता है, ब्रज की युवती है, ब्रज की

0: गोपी हैं वे सज धज के जा रही हैं। उनने देख के राजाओं चकित है गए कि ऐसे राजा महाराजा कहाँ जा रहे हैं। जब उन्हें पता चली ब्रिसवान गोप के यहाँ कन्या भई है तो ये सब बधाई देवे जा रहे हैं। सप्तमी के दिन तो ऐसी परंपरा चाप बधाई के लेके संध्या के समय पूरे बरसाने में उल्लास उमड़े और राधा रानी को जन्म फिर अष्टमी को भोर में भयो है।
1: तो गोस्वामी जी कोई ऐसा भी बधाई को पद है कृष्ण जन्म भी हो रहा है और राधा जन्म भी हो रहा है और संयुक्त समाज में उगायो जा रहा है।
0: हाँ ये जो मंगल को पद है
1: जी
0: ये नंदगांव और बरसाने दोनों जगह है। बस नंदगांव में जब गवे तो कुंवर
1: जी
0: लाला
1: जी
0: और
1: जी
0: बरसाने में गवे तो कुंवर ही
1: कुंवरी
0: लाली।
1: लाली
0: जैसे है ना बरसाने में जब गवे तो श्री वृषभान के हो आंगन मंगल भीर और
1: जी
0: जब नंदलाल की बधाई हो श्री नंद राय के हो आनंद मंगल भीर। जुगन जुगन माई द्वय बड़े एक बरसानो एक नंदगांव। जुगन जुगई माई द्वय बड़े एक नंद एक वृषभान।
1: जी
0: और
1: जी
0: फिर वहां में उनको समधि समधाने में दो मले अंक भर भर मिले। फिर हमारे यहाँ की परंपरा आज भी हुई नवा में।
1: गोस्वामी जी देखो जो ये राधा जन्मोत्सव की कितनी परंपराएं हैं और आज भी द्वापर काल ते ना इनको जो परंपरान को पालन है अनुशीलन है वो निर्वाध गति से ऐसे ही हो रो है। बूढ़ी लीलान को महोत्सव है या को भी शुभारंभ राधाष्टमी ते ही हो जाए।
0: चंपा जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न करो है क्यों बिना बूढ़ी लीला के तो राधा जन्मोत्सव पूर्ण ही ना हुए। और ये 10 दिवसीय बूढ़ी लीला महोत्सव राधा छठ से लेकर पूर्णिमा पर्यंत तक चले। अष्ट सखी के बरसाने के और पास सबरे गांव में तो
1: जी
0: उनके उत्सव मनाए जाए और सब राधा रानी थे कोई 4 दिना छोटी कोई 6 दिना बड़ी वो ये उत्सव उनके शुरू हो जाए और अलग अलग स्थान पे अलग अलग लीला हुए। राधाष्टमी के बाद अब जैसे नवमी तिथि आ गई हमारी
1: जी
0: भाद्र शुक्ल
1: नवमी
0: नवमी
1: हाँ 20 तारीख
0: तो
1: को
0: 20 तारीख को आपके
1: हाँ
0: तो नवमी तिथि को राधा रानी मंदिर के भवन में तो ढाणी ढाणे लीला होगी। ब्रह्मा जी बधाई मांग रहे हैं ढाणी बन के।
1: तो बाप सर पे कोई विशेष पद को गायन होता हो तो कछु बताओ।
0: अरे वाह को तो नाम ही सुन के ही मन नाच लग जाए ढाणी ढाणे लीला।
1: जी
0: ढाणी बधाई के बाद में आनंद में ऐसो भक्के पहुंच जाए ढाणे ने भूल जाए अपनी है।
1: हाँ
0: अब ढाणे निया मचल जाए तो
1: हाँ
0: पदे ढाणे निया मचल रही मोई ब्रिस्वान घर ले चलो। फिर ढाणी अनवे विनय करे अरे चल मैं तो जल्दी भूलूंगो ब्रिस्वान जी पे तो खूब बधाई मांगेंगे।
1: तो देखो गोस्वामी जी तो जो आप अष्ट सखी के मेले की बात कर रहे हो जिन्हें हम जग में ब्रज में बूढ़ी लीला मेले के नाम से जो विख्यात हैं ये हो रही हैं उनकी अष्ट सखीन के गामन में या कोई तिथि वार आयोजन है के
0: हाँ
1: अष्टमी नवमी दशमी ऐसा कछु बात भी है
0: बिल्कुल है। देखो
1: बताओ।
0: जम्पा ये तो अंग्रेजी कैलेंडर तो चलो और
1: जी
0: द्वापर काल में तो तिथि चल रही तो ये
1: हाँ
0: सब भादो मास के शुक्ल पक्ष की तिथि है। अष्टमी को राधा रानी को जन्म भयो नवमी को ढाणे ढाणे लीला होए और संध्या को मोर कुटी पे मोर लीला होए। ठाकुर
1: अच्छा
0: जी मोर बन के नाचे राधा रानी उनको मोती चुगा में और लड़ुआ खवा में। तो आज भी मोर कुटी पे हो बरसाने के
1: तो ये
0: बरबन में
1: छोटे छोटे जो स्वरूप पात्र हैं ये सब बरसाना
0: सब
1: ब्रज भूमि के ही हैं।
0: हाँ
1: अच्छा
0: सब वही वहीं के ब्रजवासी बालक वही वाली लीला संपन्न करें। प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। अब दशमी को बिलासगढ़ है ब्रह्माचल
1: जी
0: के 4 पर्वत है दानगढ़ मानगढ़ भानगढ़ बिलासगढ़।
1: हाँ
0: बिलासगढ़ पे जोगन लीला हुए तो
1: जी
0: ये और संध्या को फिर मान मंदिर पे मान लीला हुए।
1: तो जोगन लीला को का स्वरूप है
0: जोगन लीला को ठाकुर जी जोगन बन के राधा रानी के दर्शन कर उन्हें रिझावे हमें।
1: तो राधा रानी उनके या रूप को पहचान ली कि
0: पहले तो विस्मय में जहाँ आश्चर्य में देखें
1: ये कौन
0: कौन
1: है।
0: है लीला को आनंद लें और अंत में फिर ठाकुर जी की चोरी पकड़ी जाए और
1: हाँ
0: फिर प्रिया प्रीतम को मिलन हो। तो बहुत सुंदर लीला बिलासगढ़ पे हुए।
1: या को कोई समय कहा है कि दिन में
0: हाँ
1: होगी या दोपहर को होगी।
0: ये यहाँ दो दो लीला हो एक सुबह हो जितनी भी लीला सुबह 9 बजे तक प्रारंभ हो जाए
1: जी
0: और संध्या काल की लीला जो है वो रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक हो। दशमी को मान मंदिर पे मान लीला राधा रानी रूठ के बैठ गई
1: हाँ
0: ठाकुर जी ने फिर भी मनाई है मान लीला।
1: तो मान लीला में भी वो जो भक्त हैं और श्रद्धालु हैं उनको सैलाब उमड़ता हुए को देख रहे
0: अरे
1: के काजे।
0: मान मंदिर पे जाके राधा रानी रूठ के बैठ जाए ठाकुर जी मना में कबो राधा रानी इतको मटक जाए कभी इतको बड़ो सुंदर भाव है और फिर अंत में प्रिया प्रीतम दोनों को मिलन हो गए तो आंसू बह भी लग जाएंगे।
1: हाँ जो भाव की बात है वो वहां पे उपस्थित हो जावे बाकी अगले दिन।
0: अरे अगले दिन तो एकादशी के दान एकादशी कहें
1: जी
0: साकरी गुर पे ऐसी लीला होए बत नटखट नंदलाल की। सखी बड़ी चतुर है कन्हैया
1: जी
0: तो चतुर बनेंगे सखी ललता विशाखा चतुर है। नंदलाल आमे मां दान मांगवे को और उन्हें पकड़ के ब्रक्कन की शाखा उनकी चोटी ने बांधे ग्वाल वालन की वहां
1: जद
0: चोटी बंधन
1: चोटी
0: ले
1: बंधन
0: चोटी
1: लीला के
0: बंधन
1: में
0: लीला
1: सागरी खोर में।
0: साकरी खोर पे हुए वही लीला।
1: जी जी
0: और ये भी एकादश सुबह हुए संध्या काल में फिर प्रेम सरोवर पे ढोंगा लीला हुए
1: नौका
0: नौका विहार
1: विहार की जो
0: लीला।
1: लीला है वहां में
0: बाकी
1: ठाकुर जी
0: ठाकुर
1: अपने
0: जी
1: जग मोहन से बाहर निकल
0: बाहर
1: के
0: निकल
1: बैंड बाजे इनके
0: के
1: संग है
0: संध्या
1: ना।
0: में
1: हाँ
0: अपने डोंगा में डोला में बैठ के आमे फिर वहां में प्रेम सरोवर में ये नौका विहार लीला हुई।
1: जो या को मंचन होवे तो

0: आप बता ही रहे हो। यही बीच हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई ब्रज को मनोहारी लोकगीत आप सुनना चाहोगे, कोई आपकी विशेष पसंद हो तो हमें बताओ।
1: अब धान लीला की बात आ रही है, मटकी फोड़ लीला की बात आ रही है, तो फिर याद ऐसे में तो हमारे मन को जो सबसे ज्यादा प्रिय है
0: जी
1: वो ये जो ठाकुर जी है, कहा है मटकी ने फोड़ दे गोपिन की ने,
0: जी
1: तो
0: जो
1: जब मटकी की बात तो धान लीला की आवे तो मेरी भरी मटकी आए ले गए और ये सुनवा दू,

0: तो गोस्वामी जी, श्रोता भैया वेनान के संग आप भी अपने मन भावन अपने मन पसंद लोकगीत को सुन रहे हैं। तो यही क्रम में देखो गोस्वामी जी, बूढ़ी लीलान के जो क्रम की बात चल रही है, तो द्वादशी के दिन कहा विशेष मंचन हुए
1: द्वादश दिन राधा रानी की जो सबसे प्रिय सखी है ललिता जी,
0: जी।
1: उनको विवाह हुए। ललिता जी को विवाह ठाकुर जी के संग हुए और स्वयं राधा रानी का राम है।
0: जी कोई जगह विशेष है कि भ्यावलो कौन सी जगह पे होएगो, या जो सगाई तिलक पत्रिका है वो कहाँ होएगी?
1: ये सखीगिरी पर्वत है ऊंचे गांव में,
0: जी
1: और वहां बिल्कुल प्राचीन परंपरा के अनुसार पुरोहित आएंगे और पूरे वेदी
0: लगन
1: पढ़े,
0: पत्रिका
1: लगन
0: पढ़ी
1: पत्रिका पढ़ी
0: जाएंगी,
1: जाएगी,
0: भावर भी
1: भावर पढ़े,
0: पढ़ेंगी
1: कन्यादान
0: हैं
1: हो, हमारी ब्रज की परंपरा है।
0: हैं।
1: तो
0: तो देखो ना गोस्वामी जी, कितनी बढ़िया बढ़िया लीला लोक कल्याण के काज है ना, स्वयं हमारी ब्रजेश्वरी राधा रानी ने अपनी सखीन के संग और ब्रजराज कन्हैया ने अपने सखान के संग करी। कृष्ण नटराज हैं और उनने ना खेल खेल में ही लोक कल्याण के काज है इतने उपदेश दे दिए, इतने जन कल्याण के हितकारी काम किए कि आज भी उन लीलान को ना अनुसरण हो रहे हो। यही लिए तो कृष्ण को कहो जाए ना, मेरी अखियन के भूषण गिरधारी।
1: गिरधारी ब्यावलो लीला जब है जाए तो फिर प्रिया कुंड में डोंगा लीला, नौ का ब्याह लीला हुए प्रिया प्रीता मामे ठाकुर जी, और ये प्रिया कुंड में वो पीरी पोखर में,
0: पीरी पोखर
1: पीरी
0: पे
1: पोखर पे, पीरी
0: हाँ
1: पोखर के बाद फिर त्रयोदशी के दिन ये
0: हाँ
1: बूढ़ी लीला को मुख्य सत्र जो आयोजन है वो सांकरी खोर पे मटकी फोड़ लीला हुए।
0: जी जी
1: नंदगाम के सभी जो ब्रजवासी सज धज के धोती बगल बंदी तिलक छापे लगाए के, और
0: जी
1: सांकरी खोर जो दानगढ़ और बिलासगढ़ के बीच में सकरी गली है,
0: जी
1: सकरी गली जा में द्वे ना समाए, ऐसी
0: जी
1: गली जा में ते जो गोपी जाई और चलती भाई जाए तो मुड़ के पीछे ना लौट सके, और
0: हाँ
1: आगे नंदलाल लकुट लेके अपने सकान के संग करे आ जाओ सखियो अब दे
0: हाँ
1: जाओ मेरा दान, तो वहां पे दान है लीला हुए।
0: जी
1: फिर माँ चिकसोली के जो ब्रजवासी वो मटकी लेके
0: जी
1: आवे
0: जी
1: और सखी आवे, ठाकुर जी नंदलाल खड़े के मटकी पूरे टूट पड़े हैं, भक्त लोग वहां मटकी के दही के प्रसाद पावे
0: वो
1: को।
0: तो अनुपम प्रसाद ही है। और चतुर्दशी को बूढ़ी लीलान में कहा स्वरूप रहे
1: हाँ अभी 10 दिवस से बूढ़ी लीला अपने समापन की ओर जाए, तो
0: जी
1: एक राधा रानी की जो सखी है सुदेवी सखी, उनको गांव में सुनहरा,
0: सुनहरा
1: सुनहरा की कदम कड्डी बड़ी विख्यात है,
0: जी
1: ब्रज के ऐसे संत नागाजी महाराज की वही तो जटा जी,
0: जी
1: जटा
0: जी उनको समाधि
1: समाधि,
0: स्थल भी
1: हाँ
0: है
1: चीर हरण लीला हुए
0: जी
1: ठाकुर जी की, वहां छोटो सो सरोवर है, कदम को रखे अपने स्वरूप पहुंचे लीला के, और ठाकुर जी कदम पे जाए सखी हमर के चीर ने चढ़ा के चढ़ जाए, आज भी लीला करे वहां।
0: और जब समापन को दौर आवे का है तो देखे हम श्रद्धालु उनको जो भक्तन को सैलाब है ब्रज में उमड़ पड़े, तो जो पूर्णमासी के दिन इन बूढ़ी लीलान को समापन होवे, बाकी तो वानगी ब्रज में गोस्वामी जी है ही अलग
1: एक और लीला है जो सुनहरा की कदम खंडी की, ये तो सुबह लीला जाए, और
0: जी।
1: वही दिन मड़ोई में रास हुई और संध्या काल में मड़ोई में, बड़ी अद्भुत लीला है।
0: तो ये जो घमंड देवाचार्य जी की तो जो समाधि स्थल है वो कमई करेला गांव में ही तो
1: करेला
0: है।
1: के पास, हाँ
0: हाँ
1: मड़ोई, और
0: करेला के
1: करेला में
0: पास
1: मड़ोई
0: मडोई
1: मड़ोई
0: में
1: में मड़ोई में बतामे भाषा में दतिया के महाराज ने 5 किलो सोने के मुकुट बनवाए,
0: ये है कि
1: अजबे
0: वो प्रशासन की देखरेख
1: देख
0: में
1: रेख में
0: है
1: है,
0: और प्रतिवर्ष या
1: अरे
0: मुकुट के दर्शन के रूप में या लीला को
1: लीला
0: मान्यता
1: करें
0: प्राप्त
1: तो ये
0: है।
1: चतुर्दशी के दिन संध्या काल में हुए।
0: इन बूढ़ी लीलान को जो महामहोत्सव है बाको जो समापन है वो पूर्णिमा के दिन होवे, तो बाके बारे में हमारे श्रोता भैया बहनान को जरूर बताऊं।
1: हाँ ये बूढ़ी लीला को समापन पूर्णिमा के दिन हुए, और करेला में जो रास मंडल है वहां रास हुए,
0: जी
1: और ये सुबह हुई लीला, और
0: जी
1: या के बाद फिर जो राधा बाग है, आहा बरसाने को राधा रानी
0: बरसाने
1: को
0: में
1: राधे
0: राधा
1: बाग,
0: बाग
1: माँ
0: हाँ
1: राधा रानी के संध्या काल में ठाकुर जी को रास है कि, और हमारा समापन है जाए।
0: हाँ यही लिए जो ये श्यामा श्याम की जो छवि है या के काजे बाणी कारण ने कहे हो है ना कि बलबल जाऊं छवीली छब पे अति आनंद
1: बहुत
0: सुखकारी। तो
1: सुंदर,
0: जो ये सुख को आनंद है, जो ये प्रिया प्रियतम की बाल लीला है बाल क्रीड़ा है, इनको जो मंचन बरसाना की ब्रज धारा में अष्ट सखीन के गामन में
1: जी
0: बूढ़ी लीला के रूप में होवे ना, तो या को जो आनंद है वो इतना अलौकिक है कि वहा को जो वर्णन है ना वो शब्दन की परिधि ते बाहर है। तो गोस्वामी जी आप चर्चा तो बहुत अच्छी कर रहे हो, बड़ी मनोहारी बातचीत ब्रज धरा की बता रहे हो, पर आप उजानो बहन भैया उजाने और हम उजाने कि देखो समय को अपनो अनुशासन है, तो हमारो तो आप

0: यही अनुरोध है कि ऐसे ऐसे समय विशेष पे, ऐसे ऐसे जो ब्रज के मनोरथ हैं, उत्सव हैं, उन पे रोचक चर्चा के काज है हमारे स्टूडियो। ऐसे ही आप आते रहे करो, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हो, या के काजे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चंपा जी, आपको भी, हमारे सब श्रोता बहन भैयान को भी बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जन्मोत्सव और बूढ़ी लीला महोत्सव की बहुत बहुत बधाई।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ये भेंट वार्ता राधा अष्टमी महामहोत्सव बरसाना व सांस्कृतिक पर्व बूढ़ी लीला। या मैं आज विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित है सुशील गोस्वामी जी, जिनते बात कर रही आपकी चंपा जी। सुशील गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा जी, आपको हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह महत्वपूर्ण विषय पे अनेकानेक जानकारी सुशील जी से पूछी है और श्रोतान तक पहुँचाई है।
0: नृत्य गोपाल जी, देखो ऐसी बात है कि हमारे श्रोता भैया बहना जानवे के उत्सुक हैं, तो हमारा भी फर्ज बने हैं कि हम उन तक ये चर्चा, ये जानकारी पहुंचा में। अब देखो कि आगामी 19 तारीख को जो ये महामहोत्सव की बेला आ रही है, तो जितने भी हमारे श्रोता भैया बहना हैं, एक तो अब सबके बच्चान की छुट्टी को अवसर है, अवकाश को देना जब रहेगा तो सबको सुविधा रहेगी। और जब भी यह बात को जानेंगे कि जो आसपास अष्ट सखियन के गांव है, उनमें भी कैसी कैसी लीलान के आयोजन हो रहे हैं, कैसे कैसे मनोरथ हो रहे हैं, तो अपने आप ही ना

0: हाँ चंपा जी,
1: हाँ तो हम अपने प्यारे भैया बहनान को बतावे कि भैया बहनाओं गणेश चौथ को तो ब्रजधरा में ना चट्टा चौथऊ कहो जावे है। तो देखो जो ये गणेश चतुर्थी यानी कि ब्रजधरा में चट्टा चौथ आए रही है ना, तो याद ना तो ब्रजमंडल की जो वानगी है वो ऐसी होवे कि बताशे गुड़ गुड़ धानी बच्चान को बटे हैं, बच्चान के हाथन में ना कलम और कॉपी थमाई जामे हैं, पाठशालान में उनको प्रवेश दिवायो जाए और ब्रजवासी जो बालक है ना ब्रंद के ब्रंदन में यानी कि समून में ना चट्टा गीत गाते भाई फिरे।
0: कौन सो गीत आपको याद है?
1: हाँ हाँ, चट्टा चौथ बरस में आई चट्टन को गुड़धानी लाई, चट्टा देंगे बहुत असीस चट्टा आमे 930।
0: अब देखो चंपा जी, हम एक कछु पंक्ति याद आ रही है आप यो मत कह दीजो।
1: हाँ हाँ सुनाओ।
0: जब घूमे ना समूह में तो बड़ो बढ़िया सो एक हम आपस में लोकगीत गाय करे, घंटा घर में चार घड़ी बीच में जंजीर पड़ी, जब वो घंटा बजता था एक मुसाफिर हंसता था भाई बेधड़क, आगे देखो लाल सड़क पे पड़ी भिंडी, आगे देखो घिया मंडी में पड़ी एक खाट, आगे देखो स्वामी घाट पे खड़ो एक बंदर, आगे देखो द्वारकाधीश को मंदिर।
1: तो प्यारे भैया बहनाओं अब आपने चट्टा गीत सुन लियो है, करवे के काजे तो आपके संग बहुत सारी बात है, बहुत सारे विषय हैं, पर प्यारे भैया बहनाओं आप जानो हो कि समय की भी अपनी सीमा है, तो चलते चलते तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि आगामी जो ब्रजधरा के उत्सव हैं आप उन उत्सवन में अपने इष्ट मित्रन के संग और परिजनन के संग पधारो, ब्रजधरा आपको बुलाए रही है। तो प्यारे भैया बहनाओं इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न हो गए है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
0: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जाइवी की अनुमति प्रदान करें।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रजमाधुरी कार्यक्रम, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं नाटक।
1: आइए सुनते हैं नाटक रामानुजम। लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: तो कोरम पूरा है?
1: यस सर।
0: सिंडिकेट की अर्जेंट मीटिंग एक असाधारण मसले पर विचार करने के लिए बुलाई गई है।
2: सर, एजेंडे से कुछ अनुमान तो हुआ, लेकिन जरा विस्तार से बताइए।
0: श्रीनिवास रामानुजन के नाम और काम के बारे में हम थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं। मैथमेटिक्स रिसर्च बोर्ड के सामने भी ये काम पेश हुआ था। बोर्ड ने सिफारिश की है कि रामानुजन को रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, वे कैम्ब्रिज में जाकर अपना शोध पूरा कर सकें। बात यह है कि उम्मीदवार की शिक्षा नियमों के अनुसार नहीं है।
3: तब तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती।
4: अरे मामला इतना सरल होता तो इस बैठक की जरूरत ही नहीं थी। श्रीनिवास के पर्चे मैंने पढ़े हैं और उनका काम भी देखा है। अब मेरे विचार में ये छात्रवृत्ति देकर हम अपने पर ही उपकार करेंगे।
3: ऐसा? तो फिर नियमों का मतलब?
4: अरे नियमों में उलझना ठीक नहीं है। प्रोफेसर अय्यर, प्रोफेसर ग्रिफिथ और प्रोफेसर हार्डी तक ने उनके काम की तारीफ की है।
2: मिस्टर चेयरमैन, हम नियमों से हटकर तो कुछ नहीं कर सकते ना।
3: क्यों नहीं कर सकते?
0: क्यों नहीं?
2: इसलिए कि हम पर सीधा पक्षपात का आरोप लगेगा।
4: कुलपति महोदय, हम गणित बोर्ड की सिफारिश पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें पक्षपात कैसा?
0: मेरी राय में भी नियमों के चक्कर में रामानुजन के टैलेंट को बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए।
2: सर, प्रतिभा को कौन रोक सकता है, कौन बांध सकता है? वो तो यहाँ भी डेवलप हो सकती है ना।
3: नहीं नहीं, फिर ठीक है, कल फिर किसी और की सिफारिश होगी, परसों किसी और की, तब हम क्या करेंगे?
0: विचार तो तब भी करना पड़ेगा।
3: मेरी राय में आने वाले खतरे को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है।
4: गणित के क्षेत्र में रामानुजन की योग्यता
3: मैं उनकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा हूँ।
2: सर, योग्यता का प्रश्न तो है ही नहीं, प्रश्न ये है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का एमए पास होना जरूरी है और वो नहीं है।
0: ठीक है, नियम तो यही कहता है, पर

0: बस जब नियम यही कहता है तो विषय समाप्त।
1: अरे सिंडिकेट के सदस्यों का ध्यान मैं कुछ और बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, अगर आप लोग परमिशन दें तो।
2: कहिए।
1: यही कि रामानुजन की सिफारिश मौसम विभाग के डायरेक्टर ने भी की है और रॉयल सोसाइटी के फेलो दा गिलबर्ड ने भी की है।
0: सर सिफारिश की बात तो हो चुकी ना।
1: मैं अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूँ।
0: और सर मैं भी।
1: आप थोड़ी देर चुप रहेंगे?
0: हमारा समय खराब ना करें।
1: इतनी गंभीर बात है और आपका समय खराब हो रहा है, कैसी बेटों की बात है?
0: सर अध्यक्ष महोदय ये मेरा अपमान कर रहे हैं।
2: नहीं, यहाँ किसी का कोई अपमान नहीं हो रहा है।
1: हाँ तो मैं कह रहा था प्रोफेसर हार्डी ने भी रामानुजन के काम को रोचक और महत्वपूर्ण कहा है, और यह बताने की जरूरत नहीं कि गणित की दुनिया में आज प्रोफेसर हार्डी की क्या जगह है।
0: तो फिर नियम आखिर है किस लिए?
2: अब देखिए, लेकिन किसी की प्रतिभा अगर MA की डिग्री से कहीं ज्यादा हुई तो?
0: नियमों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। अब बैठक खत्म कीजिए और हमें जाने दीजिए।
2: जस्टिस सुंदरम आप क्या कहते हैं?
3: कुलपति जी, नियम तो है और वो अपनी जगह, पर इस झमेले में हम गणित का, रामानुजन का और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, ये बात आप सब ध्यान रखिए।
0: पर सर नियम तो नियम है।
1: तो क्यों ना नियम को बदला जाए?
3: जो नियम यूनिवर्सिटी के एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चन डालते हैं उन्हें अनुचित समझा जाना चाहिए।
0: सर तो क्यों ना नियमों को बदला जाए?
3: आप ठीक कह रहे हैं, वो भी एक रास्ता है पर लंबा, और हमें फैसला आज ही लेना है।
2: जस्टिस सुंदरम की राय कानूनी तौर पर सही लगती है और मानवीय भी। आप अपना हट छोड़ दें और इसे स्वीकार कर लें।
0: ठीक है।
2: तो सिंडिकेट ये तय करती है कि रामानुजन को कैम्ब्रिज जाकर अपना अनुसंधान जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। वे हर 3 महीने बाद अपने काम की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजते रहें।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। अम्मा
4: नहीं नहीं,
1: अम्मा सुनो तो।
4: नहीं नहीं नहीं
1: अम्मा,
4: नहीं
1: अम्मा आप मान भी जाओ ना, अपना कृष्ण स्वामी भी श्रीनिवास के साथ जाने को तैयार है।
4: बहुत कठिनाई है। नहीं नहीं
3: अम्मा, अम्मा कितनी मुश्किल से मिलती है स्कॉलरशिप। श्रीनिवास तू बोलता क्यों नहीं है?
5: क्या बोलूं, बड़ी अम्मा ने तो नामगिरी की रट लगा रखी है, नाराज हो जाएंगी वो।
3: ऐसा क्या?
4: ऐसे जो करना है वही करे, अपने देश में भी तो बहुत कुछ है करने के लिए।
1: अरे नामगिरी को हम मना लेंगे।
4: वो कैसे?
1: अरे उसकी आराधना करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे।
3: देखो अम्मा, अब तो प्रोफेसर हार्डी ने भी खत लिखा है, कैम्ब्रिज से भी एक स्कॉलरशिप मिल रही है। अम्मा हार्डी बहुत अच्छे आदमी है।
4: तू कब मिला उससे?
3: नहीं मिला तो क्या, जानता हूँ अच्छे इंसान है, तेरी कसम।
4: मैं मान भी लूं पर बड़ी अम्मा नहीं मानेंगी, ये नहीं हो सकता।
3: अब बड़ी अम्मा, अरे कहाँ है, कहाँ बड़ी अम्मा?
4: नामगिरी मंदिर।
3: अब क्या करें?
1: अरे कहती क्या है बड़ी अम्मा?
4: यही 7 समुंदर पार जाना, ये पाप है। वहाँ खाने को मिलेगा भी क्या? माँ संडे बाला नामगिरी रक्षा करे, तो सुन रहा है ना?
1: आता हूँ।
3: अरे अरे कहाँ चला?
1: अरे कहा ना, आता हूँ, आ रहा हूँ।
3: रामानुजन तू बोल क्या करना है?
5: कृष्णा पहले तो डर था, लेकिन प्रोफेसर हार्डी के खत से डर नहीं रहा, पर बड़ी अम्मा को कौन समझाए।
3: बस हम लोगों की दिक्कत यही है, छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, पीछे देखते हैं और पीछे ही रहते हैं।
4: बड़ी बड़ी बातें छोड़, क्या खाएगा ये बोल।
3: अम्मा कुछ नहीं खाना मुझे, 250 पौंड की स्कॉलरशिप, काश काश अम्मा मुझे मिली होती। अम्मा अम्मा तू ही समझाना बड़ी अम्मा को।
4: पर श्रीनिवास का क्या भरोसा?
5: अम्मा ये क्या कह रही हो तुम?
6: हाँ माँ जी बिल्कुल, और मांस मछली तो बिल्कुल नहीं, और पूजा पाठ भी करना है।
3: सही कह रही है उर्मिला।
5: हाँ माँ बिल्कुल नहीं खाऊंगा।
4: तो खाएगा क्या?
5: अपनी रसोई खुद बनाऊंगा मैं।
4: और जो वहाँ इतनी सर्दी होती है?
5: अब कुछ तो प्रबंध हो ही जाएगा। देखो अम्मा कुछ दिनों बाद कृष्णा स्वामी और चेंगल भी पढ़ने के लिए वहीं आने वाले हैं।
4: वो तो सब ठीक है, पर तेरी बड़ी अम्मा को कैसे मनाऊं?
5: अरे मान गई बड़ी अम्मा, मान गई।
3: क्या क्या कह रहे चेंगल तू?
5: कैसे मान गई बड़ी अम्मा?
1: अरे मैंने जाकर पांव पकड़ लिए, बड़ी अम्मा ने पता है क्या कहा?
5: हाँ, क्या कहा?
1: उन्होंने कहा रात नामगिरी देवी उनके सपने में आई थी और उसने आज्ञा दे दी। अच्छा? इसलिए

0: बड़ी अम्मा आज सुबह जल्दी ही मंदिर चली गई, और फिर जब मैंने ये बताया कि जल्दी ही मैं और स्वामी भी आने वाले हैं, तो बस हाँ कर दी।
1: अरे वाह चेंगल वाह।
2: अम्मा हैं कहाँ?
0: अरे आ रही हैं, जानकी भाभी भी साथ में हैं। मैं तो भागा भागा आया। अम्मा अब तू भी दे आशीर्वाद।
1: अम्मा दे दे आशीर्वाद।
2: मेरा आशीर्वाद तुम सबके लिए श्रीनिवास, अपनी रसोई खुद बनाना।
0: हाँ हाँ यही होगा, बड़ी अम्मा ने भी सब समझा दिया है।
2: जानकी साथ जाएगी ना?
0: अभी नहीं श्रीनिवास, चल हो जा तैयार। चल चल चल आ जा चल चल चल।

0: जानकी, जब से यहां आए हैं चुप बैठी हो।
1: तुम सात समंदर पार जा रहे हो, ये सोचकर मुझे डर लग रहा है।
0: यहां से देखो, एक समुंदर, वो दूसरा समुंदर, तीसरा, चौथा और वो पार। अरे वहीं जाकर तो कुछ कर सकूंगा ना मैं।
1: यहां भी तो तुम वही कर रहे हो, हर वक्त नंबर्स नंबर्स। मुझसे भी ज्यादा तुम्हें नंबर्स पसंद है ना?
0: नंबर पसंद है और तुम भी पसंद हो।
1: भी देखा देखा, तुमने भी बोला।
0: जानकी, तुम बाल की खाल निकालना बहुत अच्छी तरह जानती हो। खुद सोचो, कहां बोट की एक छोटी सी क्लर्की, न धन न मान न संतोष, इधर क्लर्की भी मुश्किल से मिली है और उधर प्रोफेसर हार्डी जब कह रहे हैं तो उसका कुछ मतलब है ना।
1: पर फिर भी
0: जानकी, इधर वो सुविधा नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं, जो समझना चाहते हैं उनकी कोई सुनता नहीं। हम लोग कुछ अजब हैं, खुद को नहीं पहचानते। जब लंदन की मोहर लग जाती है ना, तब सब मानने लगते हैं। समझ रही हो जानकी? अब मेरा वक्त सामने खड़ा है कुछ साबित करने का। जानकी,
1: तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे अकेले में डर लगता है।
0: डर लगता है किससे?
1: यही कि तुम वहां जाकर कहीं कहीं बदल तो ना जाओगे।
0: हाँ भाई, इस धोती की जगह सूट टाई, यही ना।
1: ये सब नहीं, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही।
0: तो
1: वहां और भी तो बहुत कुछ।
0: जानकी, भरोसा नहीं है मुझ पर?
1: भरोसा है तुम पर।
0: वहां जाकर अवसर मिलते ही तुझे बुला लूंगा, सच।
1: अच्छा, मुझे चिट्ठी लिखोगे ना?
0: हाँ भाई, रोज लिखूंगा, ठीक। अब चलें,
1: नामगिरी रक्षा करें, चलिए।
0: चलो।

0: अरे कृष्णा चेंगल तुम दोनों पूरा एक साल लगा दिया भाई तुम दोनों ने।
1: साल से कुछ कम हमने तय किया था, जाएंगे तो एक साथ।
2: हाँ
1: तेरा क्या हाल है?
0: बस काम ही काम। अच्छा ये बताओ अम्मा कैसी हैं?
1: अरे अरे बैठने तो दे।
2: आओ बैठो।
1: अम्मा अच्छी है।
0: और जानकी?
2: जानकी जानकी उदास रहती है।
0: मजाक छोड़ चंगल।
2: अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये देख भाभी ने तेरे लिए खास चीज भेजी है।
0: क्या है?
1: और अम्मा ने भी।
0: अरे वाह बड़े दिनों बाद घर की बनी खाने की चीज मिली। दो जल्दी दो मुझे।
3: अच्छा अरे अरे आराम से। अच्छा ये बता यहाँ क्या खाता है?
2: बता भाई।
0: हाँ बताऊँ खाने की बड़ी परेशानी है।
1: हाँ तो भाभी जी को बुला लेना।
0: तब तो हो चुका काम।
1: है
0: यहाँ तो बस काम काम और सिर्फ काम।
2: अच्छा ये बता प्रोफेसर हार्डी मिलते हैं?
0: हाँ रोज मिलते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है। प्रोफेसर बेरी प्रोफेसर लिटिलवुड सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ बड़ी अम्मा कैसी हैं?
2: अरे अम्मा ठीक हैं। ये खत भिजवाया तेरे लिए। ये ले
0: तो मुझे।
2: चल अब तुझे खुशी की बात बताता हूँ।
0: क्या?
2: मद्रास यूनिवर्सिटी ने 250 पाउंड और दिए हैं।
0: हाँ चेंगल जानता हूँ, इसीलिए सोचता हूँ प्योर मैथमेटिक्स में अभी काम करने का वक्त आया।

0: वो तो तुम जोरदार कर रहे हो।
1: तेरी सारी खबर मिल जाती है हमें।
2: अच्छा ये बात है, तब बताता हूं तुम्हें। मेरे दिमाग में आजकल बस अंक नाचते रहते हैं, संख्याएं बनती हैं, कटती हैं, फिर खड़ी हो जाती हैं,
1: ओ
2: कई कई रूप। बस एक काम पूरा हो जाए तब सोचूंगा क्या करना है। अब कॉफी बनाओ तुम लोगों के लिए।
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: बना
0: बनाओ
1: दे,
0: बनाओ बनाओ।
2: एक मिनट, कोई आया है बाहर। अरे सर आप, गुड इवनिंग सर, आइए आइए सर,
3: गुड इवनिंग स्वामी।
2: इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त कृष्णा स्वामी।
0: गुड इवनिंग सर।
3: गुड इवनिंग गुड इवनिंग।
2: सर ये हैं चेंगल बरायन।
0: गुड इवनिंग सर।
3: गुड इवनिंग।
2: और आप हैं प्रोफेसर हार्डी। गुड
0: गुड इवनिंग
2: इवनिंग
0: सर।
2: सर।
3: गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्लीज सिट डाउन।
0: थैंक यू सर। थैंक यू।
1: सर वी हैव ऑल्सो ज्वाइन कैम्ब्रिज सर।
3: दैट्स वेरी गुड एक्सलेंट।
1: हमारा सौभाग्य सर कि आपसे मुलाकात हो गई। श्रीनिवास हमारे बचपन का दोस्त है।
3: ओह वेरी इंटेलिजेंट जीनियस। जीनियस है आपका दोस्त।
0: हम सब भी हैरान होते थे।
3: वेल आपका इंटरेस्ट किस में है?
0: विषय तो हमारा भी गणित ही है सर। कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनिवास सा हम भी कुछ कर सकें।
3: व्हाई नॉट। गुड गुड। आज जानते हैं क्या हुआ? प्रोफेसर
0: क्या सर?
3: बेरी इलिप्टिक इंटीग्रल पढ़ा रहे थे। उसी का कोई सवाल जिसे बने बनाए फॉर्मूले से हल करने में लगे हुए थे।
1: फिर सर?
3: ये मुझे प्रोफेसर बेरी ने ही बताया कि इसी बीच आपका यह दोस्त श्रीनिवास खड़ा हो गया।
1: ओ
3: बोला सर मैंने सवाल हल कर लिया है।
1: सच में?
3: प्रोफेसर बेरी ने देखा हैरान। जवाब बिल्कुल सही था। मैं वही पूछने चला आया क्यों रामानुजम तुमने ये सवाल हल कैसे किया?
2: अब वो तो नहीं मालूम सर,
3: मतलब व्हाट यू मीन?
2: बस सर एक फ्लैश सी हुई और हल सामने था। तरीका
3: फ्लैश? पर कोई तरीका तो होगा ना?
2: तो पता नहीं, कोशिश कर रहा हूं सर ढूंढने की।
3: ढूंढने की?
2: जी
3: व्हाट व्हाट यू मीन बाय दैट?
2: तरीका सर, तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर अभी मैं कुछ व्याख्या नहीं कर सकता।
3: इसीलिए मैं इसे एक एनिग्मा कहता हूं।
0: हम तो बचपन से इसे ऐसे ही देख रहे हैं।
1: जी
0: ये ऐसे ही काम करता है, बात करते करते खो जाएगा। और हमें याद है एक दिन ये पूरी रात समुद्र किनारे घूमता रहा अपने नंबरों के साथ, और एक बार तो चारपाई के नीचे घुसकर काम करता रहा।
3: ओह वेल श्रीनिवास
2: सर
3: नो कॉफी टुडे।
2: सॉरी सर, अभी बनाता हूँ सर।
3: आपका दोस्त कमाल का आदमी है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: यू आर मोस्ट वेलकम। अभी तो प्रोफेसर लिटलवुड के साथ काम कर रहा है। सुना हालात खराब होने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वॉर?
1: सर आर कंट्री बुद्धा कंट्री, नो वॉर ओनली पीस, शांति।
3: एंड यू फ्रेंड चेंगल?
0: सुब्रमण्यम भारती सर, ग्रेट पोएट, एंड वी हैव ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, पीस ओनली।
1: सर वी वर टॉकिंग अबाउट श्रीनिवास।
3: ओह यस आई अंडरस्टूड। वो प्रोफेसर लिटलवुड अब तो वह वार फ्रंट पे है, पर हमने बताया है कि रामानुजम को किसी और छात्र की तरह से पढ़ाना ठीक नहीं। यू नो व्हाई?
1: बताइए ना सर।
3: यू नो कुछ बातें जो मैथमेटिक्स में साबित हो चुकी हैं, बट योर दिस फ्रेंड रामानुजन ही इज प्रूविंग देम इन अ डिफरेंट वे। इसके पास कोई थर्ड आई है जो उसे कुदरत ने दी है। आई थिंक
0: वेरी राइट सर।
3: ही इज रियली अ सीयर ऑफ मैथमेटिक्स।
0: यू मीन साधु?
1: नो नो नो, ही मींस दृष्टा।
3: व्हाट्स दैट व्हाट्स दैट? क्या कहा?
1: दृष्टा दृष्टा सर
3: क्या मतलब?
1: अ पर्सन हु कुड सी बियॉन्ड परसेप्शन।
3: ओह दैट्स वेरी वेरी राइट।
0: और रामानुजन आ गया।
2: कॉफी सर
0: लीजिए।
2: लीजिए सर कॉफी लीजिए।
3: ओह थैंक यू वेरी मच फॉर द
0: कॉफी। आप भी लीजिए कॉफी।
3: थैंक यू वेरी मच फॉर द
2: कॉफी।
3: वेरी फाइन कॉफी श्रीनिवास।
2: थैंक यू सर।
1: अरे अरे बैठ ना, बैठ जा, तेरी ही चर्चा चल रही है।
2: मेरी चर्चा?
0: हाँ, हाँ, तेरी।
1: सर कुछ और बताइए ना इसके बारे में।
2: नो नो नो सर, नो नो नो।
3: रामानुजम प्लेज विद नंबर्स। इसका मानना है कि हर नंबर यानी हर अंक या हर संख्या की अपनी प्रॉपर्टी है।

0: ताकत है, सम पावर में।
1: यू मीन न्यूमरोलॉजी सर? ये बात तो बचपन से ही कहता है।
0: नो, नॉट अ न्यूमरोलॉजी। रामानुजन के कहने के मुताबिक हर अंक के कुछ गुण होते हैं, जैसे जो संख्या 9 से कटती है उस संख्या का जोड़ भी 9 के अंक से कट जाता है, 27 या 36 या 45। ये संख्याएं 9 से कटती हैं

0: मेट्रोनियमोलॉजी, रामानुजन के कहने के मुताबिक हर अंक के कुछ गुण होते हैं। जैसे जो संख्या 9 से कटती है उस संख्या का जोड़ भी 9 के अंक से कट जाता है, 27 या 36 या 45। ये संख्याएं 9 से कटती हैं तो इनका जोड़ भी कटता है।
1: अरे वाह!
2: पर सर, जीवन में इसका कोई फायदा है?
0: बहुत लोग यही सोचते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स का हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं, बट आई फील आने वाले कल में यही हमारे जीवन और विज्ञान में बिल्कुल नए रास्ते खोलेगा। माय कॉफी इज फिनिश्ड, अब चलना चाहिए, पूरा ब्लैकआउट होने का समय भी होने वाला है। ओके गाइस, गुड नाइट टू यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।
3: गुड नाइट सर,
4: गुड नाइट, गुड नाइट,
0: गॉड ब्लेस।
5: थैंक यू सर।
1: अरे वाह, प्रोफेसर हार्डी तो बड़े ही दिलचस्प आदमी है।
2: सही कह रहा है कृष्ण स्वामी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। रामानुजन, अब तू भी कुछ बोल।
6: अच्छा, वो कुंभकोणम के क्या हाल है?
2: वैसे तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलती तो उदास हो जाते हैं, और जब पता चलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो सब परेशान हो जाते हैं।
6: अच्छा।
2: अम्मा कहती है वापिस बुला लो।
6: अच्छा, वो कुमार मंगलम, सीतारमन और वो वेंकटेश्वरन, वो सब कैसे हैं?
2: अरे सब मजे में हैं, समंदर किनारे जाते हैं, तेरी बड़ी याद आती है, अरे कितनी गप्पे लगाते थे।
1: और वो जो एक ट्राम पर चढ़ते हुए तेरी टोपी उड़ गई थी।
6: हाँ यार, अम्मा ने कितना डांटा था, वो टोपी फिर नहीं बन सकी। कैसा वक्त था वो भी, कागज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।
1: तब भी तूने कितना काम कर लिया, देखा?
6: काम तो अभी करना है दोस्त, जंग की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ये बारूदी धुआं, ये मुझे मुझे बहुत परेशान करता है।
2: रामानुजन, कुछ मैजिक स्क्वायर भी बनाए क्या?
6: हाँ चेंगल, इधर मैंने संख्याओं के विभाजन पर कुछ काम किया है।
1: हाँ, इस बारे में तुम्हारा एक पर्चा भी देखा था अब किसी मैगजीन में। क्या था भला उसमें?
6: यही कि हम एक संख्या को कई तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 4। चार को हम 5 तरह से लिख सकते हैं। हाँ, जैसे 4+0, 3+1, 2+2, 2+1+1 एंड 1+1+1+1+1
2: हैं।
6: इसी तरह से एक्सेसिव एंड डिफेक्टिव नंबर है, 6 और 28 जैसे परफेक्ट नंबर्स हैं। इसके अलावा मैंने कुछ प्राइम नंबर्स यानी मूल अंकों का पता लगाया है, वो हैं 3, 5, 7, 11।
2: यानी
6: ये वो नंबर हैं जो इंडिविजिबल, यानी जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। इसके अलावा टेंजेंट फंक्शन, गामा फंक्शन और थीटा फंक्शन पर भी कुछ काम किया है मैंने।
1: रामानुजन भाई, कुछ हमारे लिए भी छोड़ोगे?
2: थोड़ा बहुत नाम हम भी कमा लें।
1: अब आ ही गए हैं तो।
6: यार ऐसे तो बहुत से एरिया हैं। अच्छा, एरिया से मुझे याद आया कि बेतरतीब जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल जानने के लिए मैंने डाइवर्जेंट सीरीज पर काम किया है,
2: चाहे वो टुकड़ा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो।
6: हाँ।
1: अरे ये सायरन कैसा है?
6: टोटल ब्लैकआउट का टाइम हो गया।
1: ओह, बात तो कर सकते हैं ना? बड़ा खतरनाक वक्त है। अरे बम यहीं ना गिर जाए।
6: अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है।
1: रामानुजन, तुम अपनी बात कहते रहो, ये तो बचपन से ही डरपोक है।
2: अच्छा अच्छा, जहाज पर चढ़ने से तुम डर रहे थे या मैं?
1: वो अलग बात है।
2: समुद्री लहरों से तुम घबरा रहे थे या मैं?
1: अच्छा बस बस बस बस बस।
2: अरे ये बू कैसी आ रही है?
1: हाँ,
6: बारूद की बू है ये, पूरी हवा में है। ये बारूदी धुआं मेरी जान लेने का।
1: क्या हुआ? पहले भी ऐसा होता है क्या?
2: बिस्तर पर लेटाओ।
1: डॉक्टर बुलाएं?
2: अरे अस्पताल ले चलें।
1: हाँ,
6: कुछ नहीं, पानी पानी दे तुम। हाँ, सिर्फ हाँ,
2: ये लो पानी। ये दवा तुम्हारी है?
6: वो वहां रखिए दवा।
1: हाँ, मैं लेके आया।
6: मैं सो रहा हूँ।
1: चेंगल, चेंगल क्या हुआ?
2: कृष्ण स्वामी, बुरी खबर
1: है।
0: चेंगल।

0: What did doctor say?
1: Tapedic, tuberculosis, sir.
0: Oh no. At this age?
1: Chingal, ab doctor ne kaha hai ki ise Bharat wapis le jana theek rahega. Ek to jang, sare vatavaran mein barood hi barood ki boo. Aur Krishna Swami, tum to jante ho, Srinivas ko kai cheezon se parhez bhi hai.
2: Haan, wo to hai.
0: No. Let me talk to the doctor.
1: Use kuch to batana hoga, sir. Aur wapas jana bahut zaruri hai.
2: Ji sir, ji.
1: लगता है चलने का वक्त आ गया।
3: नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। ये रोड नहीं छोड़ना था, वहाँ अपना घर है।
1: मद्रास में भी राव बहादुर का अपना ही घर था, फिर वहाँ की आबो हवा भी रास नहीं आ रही थी। मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेले हो जाओगे।
3: बार बार ऐसा कहकर मुझे परेशान करना चाहते हो ना।
1: परेशान? जानकी, मैंने तुम्हें कब परेशान नहीं किया?
3: एक बात पूछूं?
1: बोलो।
3: लंदन से मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देते थे?
1: मैं जवाब नहीं देता था? तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया मैंने, और जब तुमने ही चिट्ठी लिखना बंद कर दिया तो क्या करता?
3: कितनी चिट्ठियां लिखी थी मैंने तुम्हें, पर जब तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखना बंद कर दिया।
1: जानकी, मैंने तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया, तुम्हारी याद के सिवा मेरे पास और था ही क्या वहाँ?
3: झूठ, तुम तो हमेशा अपने नंबरों में ही उलझे रहते हो।
1: हाँ, रहता था, लेकिन हाथ में रात को सोता भी है जानकी, उस वक्त तुम्हारी याद जरूर आती थी।
3: झूठ।
1: फिर नंबर आते जाते जाते आते पता ही नहीं चलता था कि कब तुम्हारी याद को नंबर ठक लेते थे और कब नंबरों के साथ ही तुम्हारी याद तैरने लगती थी। सब गड़बड़ हो जाता था, तो नींद घेर लेती थी।
3: चिट्ठियों का जवाब देते थे तो फिर जाती कहाँ थी तुम्हारी चिट्ठियाँ? मैंने तो एक एक चिट्ठी लंदन भी भेजी थी, तुम्हारे वो तुम्हारे दोस्त स्वामी के हाथ।
1: स्वामी के हाथ?
3: हाँ,
1: लेकिन उसने बताया नहीं मुझे, और ना ही चिट्ठी दी। तुमने खुद दी थी?
3: हाँ, मैंने खुद दी थी उसे। नहीं, मुझे याद आया, मैंने वो चिट्ठी लिखकर अम्मा को दी थी। आप समझ गई सारी बात।
1: अम्मा? ऐसा क्यों किया अम्मा ने? लेकिन अम्मा ऐसा क्यों करेगी, समझ में नहीं आ रहा।
3: समझ में तो आता है, लेकिन चलो छोड़ो ये सब। सबसे जरूरी बात है कि तुम्हारी सेहत में सुधार हो जाए और तुम जल्दी से ठीक होकर फिर से अपने काम में तेजी से जुट जाओ। अपना काम प्योर मैथमेटिक्स, नंबर से जुड़े रहोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा सुनो, प्रोफेसर हार्डी से तुम्हारी बात होती है?
1: हाँ, उन्हें मैंने अपने मार्क थीटा फलन के आविष्कार के बारे में खत लिखा था, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला।
3: मार्क थीटा?
1: हाँ, प्रोफेसर रोसस ने फॉल्स थीटा फलनों का कुछ अध्ययन अपने निबंध में किया है, लेकिन मेरी खोज में ये गणित में बड़ी खूबसूरती से लागू किया जाता है।
3: मेरे पास नहीं है इतनी समझ, प्रोफेसर हार्डी को भेजो ना।
1: भेजा है ना, साथ में कुछ उदाहरण भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक उनकी राय नहीं मिली, बहुत बिजी हैं वो।
3: आराम से, चलो सूरज भी छिपने जा रहा है, हवाओं में नमी बढ़ जाएगी, चलो अंदर चलो।
1: एक मिनट, सहारा दो मुझे।
3: आराम से चलो
1: चलो।
4: श्रीनिवास का भारत लौटना भी आखिरकार निरर्थक रहा।
5: भारत में उसका इलाज शुरू हुआ, मद्रास में।
4: मद्रास से कुंभकोणम,
5: समुद्री हवाएं,
4: पहाड़ी मौसम,
5: बेहतर दवाएं,
4: दोस्तों की दुआएं और जान की भाभी की अथक सेवा,
5: अम्मा की पूजा,
4: नामगिरी का मंत्र जाप,
5: फिर भी हालत नहीं सुधरी।
4: श्रीनिवास ठीक नहीं हो सका, और वो कुंभकोणम में पैदा हुआ भारत का विलक्षण अंक दृष्टा 26
5: अप्रैल 1920 को छोटी सी 32 वर्ष की आयु में अपनी अक्षय कीर्ति छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वो जिसने बचपन में सवाल किए थे, पहला सवाल, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर संख्या आएगी,

0: और फिर जीवन भर सवाल ही करता रहा, ढूंढता रहा उनके जवाब। संख्याओं का वो जादूगर चला गया,
1: वो अंकों का खिलाड़ी नहीं रहा।
0: अब हमारे पास समुद्री हवाएं, पहाड़ों का मौसम है, अंकों का संसार, और हम खाली हाथ उठाए खड़े हैं
1: आसमान की ओर, जहां सिर्फ शून्य है, शून्य का विस्तार। फिर भी हम ढूंढ रहे हैं रामानुजन के गणित का इस्तेमाल, प्योर मैथमेटिक्स,
0: शुद्ध गणित,
1: परमाणु शक्ति,
0: शून्य, शून्य का विस्तार, और हम आज भी खोज रहे हैं रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ।
2: अभी आप सुन रहे थे नाटक रामानुजम, लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल, भाग लेने वाले कलाकार थे साबिर हुसैन, राजेश बख्शी, राजीव शर्मा, किशोर सहजानी, ब्रजमोहन यादव, जयदीप सिंह, उर्मिला चंदोलिया, सविता शर्मा और नौरीन शर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
3: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।

0: 都代理广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना

0: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनजीत कौर और प्रतीक आनंद का नमस्कार। और आज के अंक में अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले अगर हम अपनी जो शुरुआत करते हैं महिला T20 एशिया कप की रिपोर्ट के साथ, और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत बनाम अफगानिस्तान पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के ऊपर चर्चा रहेगी, और वहीं एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज एपिसोड नंबर 4 पर भी हम चर्चा करेंगे। तीरंदाजी की बात करें तो मैक्सिको में आज सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जा रहे हैं, US ओपन पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी, और साथ ही साथ जूनियर एशिया कप हॉकी के अंदर महिला एवं पुरुष पर हम खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रत्येक महिला T20 एशिया कप पर।
1: जी हाँ, महिला एशिया कप 2026 में फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की महिला टीमें 11 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने थी। मुकाबला था सेमीफाइनल का और दाव पर था खिताबी मुकाबले में जगह बनाने का मौका। पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उस पर दबाव बनाए रखा। पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना ने मोर्चा संभाला और नाबाद 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी पारी के सहारे पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 130 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से चमारी अटापट्टू और चामुंडी प्रबोधा ने 2-2 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के सामने 131 रन का लक्ष्य था, लेकिन उसकी शुरुआत भी आसान नहीं रही। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के चारों बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने दबाव में धैर्य नहीं खोया। हर्षिता समर विक्रमा और कविशा दिलहारी ने पारी को संभाला और 5वें विकेट के लिए 67 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। हर्षिता ने 36 रन बनाए, जबकि कविशा ने 33 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद नीलाक्षी डे सिल्वा और कौशिनी नुथियांगना ने तेजी से रन

0: जुटाते हुए श्रीलंका को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। आखिरकार श्रीलंका ने 18 ओवर में 4 गेंद में 6 विकेट खोकर 134 रन बना लिए और पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर महिला एशिया कप के 2026 के फाइनल में जगह बना ली। इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए फातिमा सना ने ऑलराउंडर प्रदर्शन खास रहा। उन्होंने पहले बल्ले से नाबाद 47 रन बनाए और फिर गेंदबाजी से 4 विकेट लेकर श्रीलंका को लगातार दबाव में रखा, लेकिन उनकी यह शानदार कोशिश पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं रही। दूसरी ओर श्रीलंका ने मुश्किल स्थिति में वापसी करते हुए दबाव में जीत हासिल की। इस जीत से श्रीलंका लगातार तीसरी बार महिला एशिया कप के फाइनल में पहुंचा और अब उसका सामना खिताब बचाने की चुनौती होगी, जो कि फाइनल में भारत के खिलाफ खेलेगा। भारत ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर पहले ही फाइनल में जगह बना ली थी। अब 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। भारत लगातार 10वीं बार महिला एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है और उसकी नज़र रिकॉर्ड्स 8वें एशिया कप खिताब पर होगी। वहीं श्रीलंका लगातार तीसरे फाइनल में पहुंच चुका है और मौजूदा चैंपियन होने के नाते अपना खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगा। खास बात यह भी है कि पिछले फाइनल में श्रीलंका ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में भारत के पास उस हार का जवाब देने और ट्रॉफी वापस हासिल करने का मौका होगा, जबकि श्रीलंका लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लक्ष्य के साथ उतरेगी।
1: बिल्कुल, और क्रिकेट को ही जारी रखते हैं और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कल अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जापान के आईचीन नागोया में होने वाले एशियन गेम 2026 के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और सीरीज का दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। भारत इस छोटे फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ मजबूत रिकॉर्ड के साथ पहले मैच में उतरेगा। वहीं दोनों टीमें अब तक अगर देखें तो 9 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें भारत ने 8 मैच जीते हैं जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ है और बेहद ही शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है और भारतीय टीम सीरीज की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगी। और टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम की निगाहें सीरीज का आगाज जीत के साथ करने पर होगी। और इसी के साथ अब हम क्रिकेट से आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज एपिसोड नंबर 4 की, और जिसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे बैडमिंटन, स्क्वैश और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की।
0: कल्पना कीजिए, एक तरफ रैकेट की वह तेज आवाज जो पलक झपकते ही शटल को कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देती है, दूसरी तरफ स्क्वॉश का बंद कोर्ट जहां दीवारें भी खेल का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर एक ऐसी दीवार जिस पर चढ़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शरीर, दिमाग और सेकंड के 100वें हिस्से तक की गणना चाहिए। 19 सितंबर से जापान में शुरू हो रहे आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 में भारत अपने अब तक के सबसे बड़े और विविध खेल अभियानों में से एक के साथ उतर रहा है। हांगजू एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाला भारत इस बार उससे भी आगे निकलने की कोशिश करेगा। आज बात होगी बैडमिंटन की रफ्तार की, स्क्वॉश की रणनीति की और स्पोर्ट क्लाइंबिंग के रोमांच की। 3 खेल, 3 अलग अंदाज, लेकिन लक्ष्य एक, तिरंगे को पोडियम तक पहुंचाना। तो आइए एशियन गेम्स की सुविशेष पेशकश चीयर फॉर इंडिया में आज बात करते हैं इन 3 खेलों की। शुरू करते हैं उस खेल से जहां भारत की पदक की उम्मीदें सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बैडमिंटन की। भारत और बैडमिंटन का रिश्ता अब सिर्फ एक लोकप्रिय खेल तक सीमित नहीं है। एशियन गेम्स में बैडमिंटन पहली बार 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में शामिल हुआ था। शुरुआती दौर में पदकों के लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन पिछले 1.5-2 दशकों में भारतीय बैडमिंटन ने जिस तेजी से विकास किया है उसने इस खेल को भारत के प्रमुख मेडल स्पोर्ट्स में शामिल कर दिया है। साइना नेहवाल का 2014 में महिला एकल का स्वर्ण, पीवी सिंधु का 2018 में रजत और 2023 में सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का ऐतिहासिक स्वर्ण। यह सफर बताता है कि भारतीय बैडमिंटन अब केवल एक खिलाड़ी तक निर्भर नहीं रहा। एशियाई खेलों में भारत ने इस खेल में अब तक 13 पदक जीते हैं और हांगजू में भारतीय बैडमिंटन ने अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, जहां भारत ने 3 पदक जीते थे। पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, HS प्रणॉय ने पुरुष एकल में कांस्य हासिल किया और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जब सात्विक सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पुरुष युगल का स्वर्ण जीतकर एशियन गेम्स में

0: भारत के लिए बैडमिंटन का पहला पुरुष युगल स्वर्ण पदक हासिल किया। यानी आईजी नगोया में भारतीय बैडमिंटन टीम सिर्फ पदक जीतने नहीं जा रही, वह एक स्वर्ण पदक की विरासत को बचाने भी जा रही है। इस बार भारत का बैडमिंटन दल 20 खिलाड़ियों का है। पुरुष में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत, थरुण मानेपली, सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन आमसाकरुणन, एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला शामिल हैं। वहीं महिला टीम में पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ, त्रिशा जौली, गायत्री गोपीचंद, कविप्रिय सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनिषा क्रस्टो शामिल हैं। लेकिन एशियन गेम्स की तैयारी केवल नामों से नहीं होती, फॉर्म भी मायने रखता है। और अगर आईजी नगोया से पहले किसी भारतीय जोड़ी ने सबसे बड़ा संदेश दिया है तो वह सात्विक चिराग की जोड़ी है। 6 सितंबर को शेंजेन में दोनों ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 का खिताब जीता। यह चाइना मास्टर्स में उनका पहला खिताब और इस सीजन का दूसरा सुपर 750 खिताब है। अब यही जोड़ी हांगजू के स्वर्ण पदक के बाद आईजी नगोया उस खिताब का बचाव करने उतरेगी। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन पर नजरें होंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलिमोन को हराकर शुरुआत की, लेकिन दूसरे दौर में हार गए। फिर भी बड़े मुकाबलों का उनका अनुभव भारत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उनके साथ एक नया नाम खास तौर पर ध्यान खींच रहा है, आयुष शेट्टी। 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दिल्ली के घरेलू कोर्ट पर आयुष ने विश्व नंबर 1 और गत विजेता शी यूकी को पहले ही दौर में हराकर बड़ा उलटफेर किया। यानी पुरुष एकल में भारत के पास सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि एक ऐसी युवा ताकत भी है जो बड़े से बड़े नाम को चुनौती दे सकती है। महिलाओं में पीवी सिंधु का अनुभव किसी परिचय का मोहताज नहीं। वहीं उन्नति हुड्डा और युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी भारतीय महिला बैडमिंटन में अगली पीढ़ी की तस्वीर दिखाती है। लेकिन एक नाम जिस पर सबकी खास नजर रहेगी, तन्वी शर्मा। अगस्त में ताइपे ओपन सुपर 300 में तन्वी ने खिताब अपने नाम किया। तन्वी 17 वर्ष 223 दिन की उम्र में ताइपे ओपन की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। यह उपलब्धि उन्हें एशियन गेम्स की टीम में एक उभरते हुए महत्वपूर्ण नाम के रूप में सामने लाती है। इसलिए आईजी नगोया में बैडमिंटन से उम्मीद सिर्फ एक पदक की नहीं होगी। भारत के पास एकल, युगल और टीम इवेंट्स में कई संभावित मेडल रूट्स हैं और यही भारतीय बैडमिंटन को इस एशियन गेम्स में सबसे महत्वपूर्ण मेडल स्पोर्ट्स में से एक बनाता है। अगर बैडमिंटन में शटल हवा को चीरती है तो अगले खेल में गेंद चार दीवारी के बीच अपना रास्ता तलाशती है। अब रुख करते हैं स्क्वॉश की तरफ। अगर बैडमिंटन रफ्तार और दूरी का खेल है तो स्क्वॉश प्रतिक्रिया और रणनीति का खेल। एक छोटी सी गेंद, चार दीवारें, बेहद कम समय और सामने ऐसा प्रतिद्वंदी जो आपके अगले शॉट का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ ताकत के साथ साथ दिमाग से भी खेला जाता है और भारत के लिए यह खेल अब कोई नई कहानी नहीं रहा। हांगजू में भारत ने स्क्वॉश में 5 पदक जीते थे जिनमें 2 स्वर्ण शामिल थे। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधु की जोड़ी ने मिश्रित युगल में स्वर्ण जीता, जबकि भारतीय पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। सौरभ घोषल ने पुरुष एकल में रजत पदक जीता और महिला टीम तथा मिश्रित युगल में भारत ने कांस्य पदक भी हासिल किया। आईजी नगोया में भारत 8 खिलाड़ियों के दल के साथ उतर रहा है। पुरुषों में अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलवन सेंथिल कुमार और सूरज कुमार चांद शामिल हैं। वहीं महिलाओं में अनाहत सिंह, जोशना चिन्नप्पा, तन्वी खन्ना और शमीना रियाज मौजूद हैं। इन खिलाड़ियों की भूमिकाएं एकल, युगल और टीम इवेंट्स में अलग अलग हैं, इसलिए भारतीय दल की सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन में नहीं बल्कि टीम इवेंट्स में भी दिखाई देगी और यही भारतीय टीम की सबसे दिलचस्प विशेषता है, अनुभव और युवा जोश का मेल। जोशना चिन्नप्पा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो 2006 से लगातार एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं और आईजी नगोया में वह अपनी 7वीं एशियन गेम्स प्रतियोगिता में शिरकत करेंगी। उनके नाम एशियन गेम्स में 5 पदक भी हैं जिसमें 2 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ है अनाहत सिंह। युवा उम्र में अनाहत ने भारतीय स्क्वॉश को नई पहचान दी है। जुलाई में कनाडा में हुए वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप्स में अनाहत ने फाइनल में इजिप्ट की रुकैया सलेम को हराकर गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। वह इस प्रतियोगिता में विश्व जूनियर चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बनी। सीनियर सर्किट में भी उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। अगस्त में लंदन स्क्वॉश क्लासिक में उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, जहां उन्हें विश्व नंबर 5 शिव संगरी सुब्रमण्यम से हार मिली। यानी जूनियर लेवल पर शीर्ष पर पहुंचने के बाद अब अनाहत सीनियर लेवल की बड़ी चुनौतियों के सामने खुद को लगातार परख रही हैं। आईजी नगोया में अनाहत सिर्फ एक युवा खिलाड़ी के रूप में नहीं जाएंगी, वह विश्व जूनियर चैंपियन के आत्मविश्वास के साथ जाएंगी। महिला वर्ग में शमीना रियाज पर भी नजर रहेंगी। जून में उन्होंने पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका की शीर्ष वरीयता प्राप्त हेली वार्ड को 4 गेम में हराया। जुलाई में तमिलनाडु में स्टेट चैंपियनशिप्स का खिताब जीता और अगस्त में फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स में भारतीय टीम के साथ रजत पदक हासिल किया। यानी एशियन गेम्स से पहले शमीना के पास भी अच्छे मुकाबलों और महत्वपूर्ण जीतों का अनुभव है। एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: प्लेयर फ्रॉम स्क्वैश।

0: Hi, I'm Shamina. I'm from the squash team participating in the Asian Games 2026. It's really a privilege to play, represent India at the Asian Games, and with my team, Anna, Joshna, Tanvi, I think we have a really solid team and hoping for a medal for our country.
1: Anna is a world junior champion and you have a chance to get Olympic LA ticket.
0: Yeah, I mean, Anand is like, you know, one of the top players in the world squash. She's top 20 in the world. I think it's really nice to have her as a team partner, and we look forward in aiming for a medal with her.
1: How was the preparation regarding this Asian game?
0: Yeah, I mean, the preparation is really good. We just, as a team, working together. So hopefully we win a medal.
2: अब बात करते हैं पुरुष वर्ग की। पुरुष वर्ग में भी एशियन गेम्स से ठीक पहले भारत को शानदार प्रोत्साहन मिला है। वेलवन सेंथिल कुमार ने 29 अगस्त को बुदापेस्ट ओपन का खिताब जीता। उन्होंने सेमीफाइनल में अपने ही साथी वीर चोटरानी को 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया और फाइनल में हंगरी के बलाज फरकास को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। चोटरानी और सेंथिल कुमार के बीच खेला गया सेमीफाइनल ये दिखाता है कि आईची नगोया से कुछ ही सप्ताह पहले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। यह भारतीय स्कॉश की डेप्थ को भी दिखाता है। वीर और सेंथिल कुमार के साथ साथ सूरज कुमार चांद भी शानदार लय में है। अगस्त में मुंबई में हुए फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्कॉश चैंपियनशिप में सूरज ने पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने हंगरी के बेनेडिक्ट तकास को 3-2 से हराया। यह भारत के लिए इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का पहला स्वर्ण पदक था। आगे आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा?
3: ये बहुत ही अच्छा चांस है, अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं इंडिविजुअल्स में एशियन गेम्स में तो आपको एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है LA 28 में। तो आई थिंक सारे प्लेयर्स, ना कि इंडिया के ही बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स, इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारे लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
2: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिशु चैंपियनशिप में सूरज सिर्फ व्यक्तिगत चैंपियन नहीं बने बल्कि भारत की टीम के साथ रजत पदक भी जीता जिसमें सूरज और शमीना दोनों शामिल थे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि 2028 में लॉस एंजलिस में होने जा रहे ओलंपिक्स खेलों के लिए स्क्वॉश को पहली बार खेल के रूप में चुना गया है और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। एशियन गेम्स से ठीक पहले भारत के पास गत विजेता होने का आत्मविश्वास, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह के हालिया अंतर्राष्ट्रीय खिताब, सूरज का फिशु गोल्ड, शमीना के महत्वपूर्ण
4: हिनी ईदैक स्वहिलिया आकाशवाणी हम जम्बो वस्कली वेटू आफ्रिका मशवी के नमाहाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाई नसीकी का टूना टंगाजीनी क्वेनेक्लो हार्ट्स एल्फू कुमीना टीसा मिया टीसा नामसीनी यानी मीटा बैनी कुमीना सीटा व पेंडवा वस्कली जाजी सासा टूना वाले टेनी की पिंडी मालूम। Naendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Akashwani.
5: World Service, hamjambo wasikilizaji wetu wapendwa wa Asia Mashariki, Asia Magharibi na bara la Afrika na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazieni kwenye masafa ya 1530 mpango wetu wa Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya
4: Akashwani.
5: Unaweza kusikiliza kutoka saa 17 dakika 45 hadi saa 18 dakika 45 kila siku.
4: Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum.
6: Wanafunzi kutoka bara la Afrika nchini India. Takriban wanafunzi wa kigeni wapatao 10,000 kutoka kila pande la dunia huza nchini India kuziendeleza. Pia sehemu fulani inatoka mataifa yaliyopiga hatua kubwa kimaendeleo. Jambo la kuvutia ni kwamba idadi kubwa ya wanafunzi kutoka nchi zinazoendelea huza hapa nchini kuchukua masomo katika fani mbili kama vile historia, falsafa, siasa, uchumi, uhandisi na teknolojia, madawa, sayansi ya kompyuta, teknolojia ya habari na mambo ya husuyo ukusanyaji na usambazi wa habari. Lakini wanafunzi kutoka nchi zilizopiga hatua kubwa kiwanda huza nchini India kuzifunza muziki na dansi za kienyeji, pia lugha ya Kihindi. kati ya wanafunzi wanatoka nchi zilizoendelea asilimia

तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हम

0: हेलो ग्राम संसार,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से। जय
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे? हाँ,
1: किशन को दो मित्र हैं मेरे,
0: नाम बोल दीजिए।
1: पालदा नाका इंदौर से, हसीना भी मंसूरी और अमीना भी मंसूरी और उनका परिवार।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं जगदीश सिंधारिया बोलूँ जी, डाना निरसान जिला भिवानी जी, हरियाणा से।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: जय किशन को सुना देना जी,
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के भी नाम है जी, राजवीर सिंधारिया, सतीश सिंधारिया, ऋतिक सिंधारिया, केला देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार और आकाशवाणी परिवार को भी।
0: आपको भी नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: राजेंद्र जाटव और आबिदपुर मान की पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज के कलाकार हैं जय किशन,
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी, असालत नगर मुरादनगर से है नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, प्रशांत जाटव, निशांत जाटव दरोगा साहब और शिवानी जाटव और आबिदपुर मानकी से है महेंद्र, शारदा, रामकिशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम और ये पूरे आबिदपुर भाव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ये जय किशन जी को सुनवाइए जी,
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बागरपुर और मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, मास्टर फंदन सिंह, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर जय किशन से ये रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7 बजने को है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रॉइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ब्रिक्स

शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोची में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार, ओ माफ कीजिएगा, प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी में हम आपके लिए लेकर के आते हैं नई नई जानकारियां जो कृषि जीवन और पशुपालक भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी ही जानकारी जो दूध उत्पादन से संबंधित है। मित्रों, भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन प्रथम स्थान को लगातार बनाए रखने के लिए हमें जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, जो प्रयास करने पड़ते हैं, यदि वो वैज्ञानिक सोच के साथ हों तो निश्चित ही यह आसान हो जाता है।
4: बिल्कुल, और आज हम जिस योजना की बात करने वाले हैं वो है पशुपालकों और किसानों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी देने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना,
3: यानी कि हम बात कर रहे हैं कामधेनु डेयरी योजना के विषय में। मित्रों, जब दुग्ध उत्पादन की बात आती है तो उसमें सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है हमारे पशुपालक भाइयों का। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चलाई जाने वाली एक प्रमुख सरकारी पशुपालन योजना। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वित्तीय सहायता की बड़ी आवश्यकता होती है नीरा, तो इसके लिए बैंक से हम लोन ले सकते हैं।
4: वहीं अगर हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेजों की, तो आधार कार्ड होना चाहिए, जन

0: आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसे हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में मोबाइल नंबर।
1: और मित्रों ये भी ध्यान रखिए, जो SC और ST के लाभार्थी हैं, यदि वो स्वरोजगार खोलना चाहते हैं तो उन्हें 33% तक का अनुदान है, और जो अन्य वर्ग हैं उन्हें 25% तक का अनुदान कामधेनु डेयरी योजना पर मिल जाएगा। आवेदक के पास पशुपालन एवं डेयरी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
0: और अमित, ये तो बात रही कामधेनु डेयरी योजना के बारे में, लेकिन आज के इस कार्यक्रम किसानवाणी में हम अपने सुनने वालों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, दूध उत्पादन की नींव, हरे चारे की अधिकतम उत्पादन की तकनीकियाँ।
1: इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
2: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि दूध उत्पादन और हरे चारे के बीच क्या सीधा संबंध है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बेहतर हरा चारा अधिक और गुणवत्तापूर्ण दूध की बुनियाद रखता है?
3: जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं। जैसे मानव पोषण में संतुलित भोजन का और संतुलित पोषण का महत्व है, वैसे ही हमारे पशुधन के लिए भी अच्छा दूध उत्पादन मिले या मांस के लिए पालन कर रहे हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता रहे, उसके लिए आवश्यक है हमारे पशुधन का सही और संतुलित पोषण हो, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा और जो सांद्र पदार्थ यानी कि जो पशु आहार हम देते हैं उसका समावेश आवश्यक है। और अगर तात्कालिक योजना आयोग अनुमान देखें, जो नीति आयोग हो गया, तो उसके अनुसार देश में लगभग 60% के आसपास सांद्र पदार्थ और हरे चारे की कमी है। क्योंकि हमारा फोकस खाद्यान्न उत्पादन की तरफ रहा है तो जो चारा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सेकेंडरी फसल की तरह किसान इसको लेता है, और जो हरा चारा है उसकी जितनी आवश्यकता है उससे आधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही सूखा चारा है उसकी भी करीब करीब 20% के आसपास कमी है। तो ये जो कम पोषण हमारे पशुओं को मिलता है वो एक बड़ा कारण है जिससे कि हमारे पशुधन का दूध उत्पादन कम रहता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो वो यूरोप में करीब 4,000 लीटर है, अमेरिका में 7,000 लीटर के आसपास है, इसराइल में और भी अधिक है, और हमारे जो पशुधन है उसमें 1,000 लीटर के आसपास ही प्रति पशु है। और यदि हम कारणों का पड़ताल करें
2: जी,
3: तो उसमें पाते हैं कि हमारी जो मुख्य धान्य फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उसके बाद किसान को चारे के लिए बहुत कम जगह रखता है। तो इसलिए हमें एक रणनीति पूर्वक ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए, ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिससे हमें हर मौसम में हरा चारा मिलता रहे, बिना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ाए और बिना ज्यादा प्रयासों के और बिना इन्वेस्टमेंट करे, ताकि किसानों की लागत भी नहीं बढ़े और चारे का उत्पादन भी अच्छा
2: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी हमारे किसान भाई बहनों को और वैश्विक परिदृश्य भी आपने दिखाया कि किस तरह से पूरी दुनिया में प्रति पशु हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, तो उसके पास जितनी जमीन होती है तो कोशिश उसकी ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी पैदावार करें जिससे मुनाफा ज्यादा पाएं, लेकिन एक तरफ पशु जो है वो निग्लेक्टेड हो जाता है, तो वो कैसे इस सामंजस्य को बैठा सकता है और किस तरह से अपनी योजना बनाकर कृषि को कर सकता है?
3: इसके लिए एक तो जैसे कि सरकार भी प्रयासरत है और वैज्ञानिक भी आह्वान करते हैं मेड़ पर पेड़, और एक बहुवर्षीय घासें हैं उनका भी समावेश करना होगा आपकी फसल प्रणालियों में और फसल पद्धतियों में। साथ ही साथ हमें फसल चक्र अपनाना होगा, हर बार हर खेत में धान्य फसलें, एक ही तरह की फसलें, या कभी कभी हम दलहन फसलें ले लेते हैं
2: जी।
3: हमें चारे वाली फसलें लेनी होगी। जब हम खेती में टिकाऊपन या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जो चारे वाली फसलें, विशेषकर रबी में जो चारे वाली फसलें अभी आने वाले मौसम में लगाएंगे, उनका बड़ा रोल है। जो गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र है जिसमें करीब करीब 100,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हर वर्ष धान के बाद गेहूं लेते हैं, एक ही तरह की दोनों किस्में हैं और उनमें खरपतवार, कीट, रोग, व्याधियां, ये सब हर वर्ष और एक ही गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करता रहता है। तो जो हमारी जमीनें हैं वो बंजर बनने की तरफ अग्रसर हो रही है, तो इसमें हमें हरे चारे वाली जो फसलें हैं उनका फसल चक्रों में समावेश करना जरूरी है। रबी के मौसम में रिजका है, बरसीम है, जई है, ऐसी फसलों का अगर समावेश करते हैं तो मृदा की भौतिक दशा में तो सुधार होता ही है, हमारे जो किसान हैं उनको हरा चारा भी मिलता है।
2: बिल्कुल। तो जैसे बारिश का मौसम है तो क्या आप समझते हैं कि ये उपयुक्त समय है, और इस समय कौन कौन सी हरे चारे को लेकर वो किस तरह से इसमें किसान भाई हमारे आगे बढ़ सकते हैं?
3: अभी इस समय तो जो हरे चारे वाली फसलें हैं उसमें

0: ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मकचरी है, लोबिया है, ग्वार है, इत्यादि फसलें लेते हैं।
1: जी
0: जैसे ही सितंबर के अंत में जाएंगे या अक्टूबर शुरू होगा, उसके बाद बिजाई का समय हो जाता है रबी की चारा वाली
1: जी
0: फसलों का। और बिजाई के लिए जरूरी है सही बीज का चुनाव, ऐसी किस्मों का चुनाव जो आपके क्षेत्र के लिए संस्तुत हो और अधिक उत्पादन दें, गुणवत्तापूर्ण चारा भी दें जिसमें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व हो।
1: जी
0: तो सही समय आ गया है अभी चारे वाली फसलों का बीज, अच्छी किस्मों का बीज आप खरीद लें। और बीज खरीदने में ये जरूर ध्यान रखें, किस्म तो अच्छी हुई और वो विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। ICAR का संस्थान है, केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान हमारा
1: जी
0: झांसी में, वहां से, या ICAR के संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम या राज्यों के बीज निगमों से आप बीज खरीद
1: जी
0: सकते हैं। बाजार से भी अगर आप उन्नत किस्मों का बीज खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें और उसका टैग देख कर फिर ही खरीदें, ताकि आप कई बार खराब बीज और जैसी कुछ अनहोनी घटनाएं हो
1: जी
0: जाती है
1: जी
0: उनसे बचा जा सके। और इस तरह के खराब बीज की और इस तरह की शिकायतें हैं वो चारे वाली किस्मों में कई बार देखने को मिली है, तो इनसे ध्यान रखें, विश्वसनीय स्रोत से ही चारा
1: बिल्कुल। तो
0: खरीदें।
1: डॉक्टर बाना, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान बहन भाइयों को दिया। तो आपने बिजाई की बात की और यहाँ पर सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन की भी बात कर लेते हैं कि वो कितनी मात्रा में या किस तरीके से किसान को लेना चाहिए।
0: जी, चारे वाली फसलों में सिंचाई तो आवश्यक है रबी के
1: जी
0: मौसम में, तो खरीफ में बिना सिंचाई के भी बारानी क्षेत्रों में भी, और जो सूखा सहन करने वाली फसलें हैं वो भी मिल जाती है। पर आपकी अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, यदि आपके सही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो बरसीम की आप फसल ले सकते हैं। जो कम सिंचाई के सीमित साधन हैं उन क्षेत्रों में आप रिज का ले सकते हैं, लूसर्न जिसको बोलते हैं, तो रिज के की बहुवर्षीय किस्मों का चयन करें तो आपको लगातार 3 साल तक हरा चारा आपको मिलता रहेगा। और सिंचाई प्रबंधन की जहां तक बात है, पहले तो बिजाई करते ही एक बहुत हल्की सिंचाई देनी है,
1: जी
0: उसके बाद, क्योंकि शुरू में थोड़े दिन तापमान अधिक रहता है, तो निरंतर सिंचाई करनी है जो हल्की मिट्टियां हैं वहां पे 3-4 दिन से, और जहां भारी मिट्टियां हैं अच्छा पानी ठहर सकता है
1: जी
0: वहां पे 5-6 दिन के अंतराल में शुरू में 2-3 सिंचाई करनी है, ताकि आपकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए। और उसके बाद जैसे ही ठंड का समय आ जाता है तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, तो आप जो सिंचाई का अंतराल है वो लगभग 1 सप्ताह जो हल्की मिट्टियां हैं और जो भारी
1: जी
0: मिट्टियां हैं वहां पर 10 से 12 दिन या कभी कभी 2 सप्ताह का अंतराल से आप सिंचाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि
1: जी
0: कई बार ये हमने देखा है चारे वाली फसलों में, उनको लगता है कि जितनी बार सिंचाई देंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़वार
1: जी
0: होगी, परंतु ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, जड़ सड़न और तना गलन, ये रोग हो जाते हैं। तो सिंचाई में ये जरूर ध्यान रखना है कि जब खेत सूख जाए और अच्छे से पानी की आवश्यकता
1: जी
0: हो,
1: जी
0: यानी कि पौधे दोपहर के समय हल्की सी मुरझन आना शुरू हो, तभी सिंचाई दें, आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं देनी है।
1: और यहाँ पे डॉक्टर साहब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। किसान अक्सर चारे को बहुत देर से काटते हैं, और हरे चारे की कटाई की सही अवस्था क्या होती है ताकि उसको उसके लिए उत्पादन और पोषण दोनों बेहतर तरीके से मिल
0: जी,
1: सकें।
0: चारा फसलों में कटाई प्रबंधन तो बहुत ही आवश्यक है, और वैज्ञानिक तरीके से कटाई प्रबंधन का तात्पर्य ये है कि ऐसे समय कटाई करना ताकि उत्पादन भी अच्छा मिले और गुणवत्ता भी अच्छी रहे। यदि कई बार जल्दी कटाई कर देते हैं तो क्या होता है कि रेशा तो कम रहता है परंतु आपको उत्पादन बहुत कम मिलता है, और बहुत देरी से कटाई
1: जी
0: करने से जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होते जाते हैं, और वो फसल ज्यादा मेच्योर होने से उसमें रेशे की मात्रा बढ़
1: जी
0: जाती है, तो पशु उसको उतना चाव से भी नहीं खा पाते और पोषक तत्वों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये जैसे रिज का है, बरसीम है, या आपका ये खरीफ की भी चारे वाली फसलें हैं,
1: जी
0: ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब की पहली कटाई 50-55 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए, और अलग अलग फसल के अनुसार जो दूसरी और तीसरी कटाई, जो बहुवर्षीय खरीफ की हम बात करें तो जो बहुवर्षीय चारा फसलें हैं, तो लगभग 1 महीने के अंतराल पर इन पे जो दूसरी और तीसरी कटाई करें। और कटाई करते समय ये ध्यान रखें कि 7 से 8 सेंटीमीटर
1: जी
0: ऊंचाई से कटाई करें। और जो
1: जी
0: धान्य वर्गीय चारे वाली खरीफ की फसलों की पहले मैं बात करूंगा, इसमें 15 से 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया से दे लेते हैं, तो पुनः वृद्धि अच्छी होती है। तो ये थोड़ा सा कटाई की ऊंचाई का जरूर ध्यान रखें, और तुरंत पानी दे दें यदि मानसून में देरी आती है तो। रबी के मौसम में भी यही आपको ध्यान रखना है, हल्की सिंचाई करनी है शुरुआती अवस्था में, 2-3 सिंचाई बारंबार करनी है, उसके बाद आपको सिंचाई थोड़ा कम कर देनी है, ताकि ठंड के मौसम में वैसे भी पानी भाप
1: जी
0: बनकर
1: जी
0: ज्यादा नहीं उड़ता, तो ये इनका ध्यान रखना है। और कटाई करने के बाद रबी की फसलों में भी सिंचाई देनी है, और
1: जी
0: कटाई की ऊंचाई इसलिए मैं

0: नियंत्रण और कीट प्रबंधन के लिए किसान किन सुरक्षित और प्रभावी उपायों को अपना सकता है?
1: चारा फसलों में अमूमन एक तो सबसे पहले किसान सोचता है कि कोई भी खरपतवार उगते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हरा पदार्थ ही मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता खरपतवार का, और वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार
0: जी
1: और उसको नेग्लेक्ट करते हैं और उससे उत्पादन में नुकसान होता है, चारे की गुणवत्ता में नुकसान होता है। और चारा वाली फसलों में क्योंकि पशुओं को हम खिलाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी रोगों का प्रकोप
0: जी
1: हो, कीटों का प्रकोप हो, खरपतवारों का प्रकोप हो, दवाई डालते ही पशुओं को खिलाने के लिए नहीं देना है, नहीं तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है।
0: जी
1: तो जो रसायनों का सुरक्षित उपयोग करें, जहां तक खरपतवार प्रबंधन की बात है, जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी कि बिजाई के तुरंत बाद अंकुरण से पहले ही यदि आप खरपतवार नाशी जैसे पेंडीमिथालिन है उसका उपयोग करें तो खरपतवारों का जमाव ही नहीं होता और जो फसल है वो शुरू से ही खरपतवार मुक्त रहती है। तो जो अगले मौसम के बिजाई की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेंडीमिथालिन रिज़िका और बरसीम में डाल सकते हैं और उसकी आप जो खरपतवार मुक्त फसल को रख सकते हैं। तो इस तरह से बाद में आपको खरपतवार नाशी है उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से कीटों से फसल को बचाने के लिए भी आपको कीटनाशियों से यदि उपचारित करना है तो बीज को उपचारित करके ही बिजाई करें ताकि बहुत कम मात्रा में रसायन का उपयोग करते हुए आप अच्छी और कीटों से मुक्त फसल है वो रख सकते हैं। और दूसरा, सिंचाई की बारंबारता को कम रखने से भी कीटों का प्रकोप कम होता है। नाइट्रोजन की खुराक संतुलित मात्रा में ही दें, अधिक मात्रा में पानी हो या नाइट्रोजन हो या उर्वरक हो उनका
0: जी
1: उपयोग हानिकारक हो जाता है, वो कीटों को आकर्षित करता है।
0: जी हरे चारे के भंडारण के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार किसान को इसकी जरूरत होती है, तो उसमें उसका वो मैनेजमेंट या प्रबंधन किस तरीके से करे?
1: जैसे कि आप किसान की भाषा में सुना होगा कि चारे का अचार
0: जी
1: साइलेज बना के
0: जी
1: उसका उपयोग करते हैं और या हे बनाकर सुखा कर भी जो घास होती है उसको खिला के उच्च पोषक तत्वों से भरपूर आप चारा खिला सकते हैं। एक तो ये तरीका हे बनाकर कर सकते हैं, छायादार स्थान पर जो चारा है उसको आप सुखा लें और उसके बाद खिलाएं। बहुत धूप में तो पोषक तत्व का नुकसान हो जाता है, चारे को इकट्ठा करके काम में ले सकते हैं। पर उसमें यही जरूर ध्यान रखना है, यदि साइलेज बनाते हैं तो जो पुष्पावस्था होती है यानी कि जो फ्लावरिंग की स्टेज होती है फसल की,
0: जी
1: उसी
0: जी
1: समय उसकी फसल को कटाई करें। ज्यादा देरी से कटाई करने से खराब गुणवत्ता का साइलेज आपको
0: हो सकता
1: मिलता
0: है
1: है।
0: डॉक्टर बाना, हरे चारे का भंडारण भी हो गया, अब बात आती है कि उस हरे चारे को कैसे पशु को देना है। तो अगर हम एक संतुलित और पौष्टिक आहार की बात करें, तो हरे चारे के साथ हम और क्या-क्या चीजें पशु को दे सकते हैं कि वो संतुलित आहार बन जाए और पौष्टिकता तो बढ़े ही, साथ में जो दूध की गुणवत्ता है और दूध की जो उत्पादकता है वो भी किसान को ज्यादा मिले?
1: अच्छा, दूध उत्पादन के लिए हरा चारा, सूखा चारा, सांद्र पदार्थ इनका मिश्रण तो जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। ऐसा नहीं है कि हरा चारा अच्छा होता है तो हम सिर्फ हरा चारा ही खिलाते रहें और पशु का पाचन तंत्र हम खराब कर दें। तो
0: जी
1: एक सही अनुपात में लगभग 60 से 70% सूखा चारा और 15-20% से लेकर 30% तक हरा चारा। तो सूखा और हरा चारा का ऐसा अनुपात 2/3 के आसपास सूखा चारा और लगभग 1/3 के आसपास हरा चारा। और उसके बाद जो सांद्र पदार्थ है वो भी संतुलित मात्रा में, जिसमें मिनरल मिक्सचर है या जो भी दाना आप खिलाते हैं, पशु आहार आप खरीद के खिलाते हैं, वो इनका एक सामंजस्य आवश्यक है ताकि पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, पाचन तंत्र भी ठीक रहे और उत्पादन भी अच्छा मिले। और स्वस्थ पशु ही अच्छे दूध उत्पादन की आधारशिला है। हम आज दूध उत्पादन में 1 नंबर पर हैं, परंतु हमें और आगे जाना है और जो किसानों की खेती है उसको लाभप्रद बनाने में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और जो विकसित भारत का हमारा टारगेट है
0: जी
1: किसानों की आय को बढ़ाने का, किसानों की आय को दुगुना करने का, उसमें पशुपालन बड़ा योगदान दे सकता है। तो उसमें यदि आप सही तरीके से पशुओं का पोषण सही करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर से जो दूध उत्पादन है वो फायदे का सौदा साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल, इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। डॉक्टर बाना, आपने हरे चारे के उत्पादन से लेकर उसकी गुणवत्ता, कटाई, भंडारण और पशु के आहार में उसके सही उपयोग तक बहुत उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: तो अभी आप सुन रहे थे दूध उत्पादन की नींव, हरे चारे की अधिकतम उत्पादन की तकनीकियों पर ये जानकारी।
3: और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आर एस बाना, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान।

0: मित्रों ये आप सुन रहे थे रागिनी, और रागिनी के बाद आइए कृषि जीवन या पशुपालन जीवन में हम जानते हैं कि मौसम का कितना महत्व है, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान से कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई बहनों को अपनी फसल में कार्य करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हो जाता है। यदि हम बात करें आज के मौसम की, तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए कम दबाव के क्षेत्र के कारण दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। आसमान में आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है।
1: वहीं अगर हम बात करते हैं तापमान की, तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।
0: तो नीरा, मौसम के बाद हमारे किसान भाइयों के लिए आवश्यक हो जाती है वैज्ञानिकों की कृषि सलाह।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कृषि सलाह के अनुरूप किए गए कार्य से हमारे किसान भाई अधिकतम लाभ ले सकते हैं और अपने लागत मूल्य को कम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो वही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा जो हमारे किसान भाइयों को सलाह दी गई है, उसकी जानकारी दे देते हैं कि वर्तमान में यदि हल्की से मध्यम वर्षा या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान हो, तो खड़ी फसलों में चाहे वो दालें हों या मक्का हो, और सब्जियों की नर्सरी में किसी भी प्रकार का कीटनाशक या रासायनिक छिड़काव बिल्कुल ना करें, और ये भी ध्यान रखें कि खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध हो।
1: और वहीं कीटों की संख्या पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए किसान अपने खेतों में रात के समय लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं।
0: वही हमारे किसान भाइयों की धान की फसल इस समय खेतों में लहरा रही है, तो जो धान के किसान हैं उनके लिए विशेष सलाह हमारे वैज्ञानिकों की है कि इस समय धान की फसल में जो बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था है, ऐसे में तना छेदक है या फेरोमोन ट्रैप है, भूरा पादप खुदका जैसी बीमारियां लगने की संभावना होती है, तो वही फसल की नियमित निगरानी करें, और यदि तना छेदक कीट का प्रकोप आर्थिक देहरी पर दिखाई दे तो उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए आप वैज्ञानिक सलाह का ही प्रयोग करें।
1: बात करें सब्जियों और अन्य फसलों की, तो अगेती मटर की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करना शुरू कर दें, इसकी सलाह दी जाती है, और साथ ही साथ गाजर की बुआई मेड़ों पर या उठी हुई क्यारियों पर की जा सकती है।
0: नीरा, कृषि सलाह हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है। कार्यक्रम किसान वाणी जिस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल, और ये कार्यक्रम खास तौर पर आपके लिए हम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि जानकारी पूर्ण रूप से आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं feedback@gmail.com पर।
0: मित्रों आज के लिए केवल इतना ही, दीजिएगा अनुमति कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए।

0: कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। 7:35 हुए हैं और अब सुनते हैं गजल।

0: अभी आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ के 48वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नाविक वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी कठिन समय में उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाती है।
2: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रॉयका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष

0: और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकियों की सीमा पार आवाजाही, वित्त पोषण तथा सुरक्षित पनाह पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने राजधानी के सौंदर्यीकरण और सजावट के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। परिषद ने प्रमुख गोल चक्करों, होटलों और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया है। सजावटी रोशनी से NDMC क्षेत्र के प्रमुख स्थान जगमगा रहे हैं, जबकि सजे हुए उद्यान और हरियाली राजधानी की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इन प्रयासों से नई दिल्ली को स्वच्छ, हरा भरा और आकर्षक रूप दिया गया है, ताकि ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के सामने राजधानी की बेहतर छवि प्रस्तुत की जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और कल अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के कारण आज रात 9 बजे तक 22 स्थानों पर यातायात में बदलाव और 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित आवागमन रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड सहित आसपास के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए पहले अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से परिवर्तित मार्गों और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं बारिश, वाहनों के खराब होने और गुरु पर्व के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भी कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित है। मोतीबाग से एम्स के बीच दोनों कैरिजवे, सराय काले खान स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु, वंदे मातरम मार्ग और मुख्य रोहतक रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। भारत अफगानिस्तान मैच कल शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक होगा। दर्शकों की आवाजाही के कारण बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित किए जा सकते हैं। दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी गई है। माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रम रोड पर निशुल्क पार्किंग और पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि स्टेडियम के आसपास सामान्य पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यातायात पुलिस ने लोगों से प्रभावित मार्गों से बचने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने और निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की अपील की है। लोगों से यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और उनका सहयोग करने को कहा गया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में संभावित रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। इससे परीक्षा देने वाले छात्रों और आम लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी बताया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बेटी जहरा पेजेशकियन ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय और ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखा। इस संग्रहालय में भारत के प्रधानमंत्रियों और देश पर उनके प्रभाव

0: झलक मिलती है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। देश भर में 23 केंद्रों पर आयोजित इस समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने देश में किए जा रहे कानूनी सुधारों और शासन व्यवस्था में इनके महत्व का उल्लेख किया।
1: इसमें हमने 1725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं उनको हमने समाप्त किया, 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया। इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया, 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना ये हमारी अप्रोच का हिस्सा है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई आज वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इसका निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। लगभग 6,300 वर्ग मीटर भूखंड पर बनने वाली इस प्रयोगशाला का कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्ग मीटर होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस परियोजना के लिए 151,81,00,000 रुपए बजट को भी स्वीकृति दी गई है। नई प्रयोगशाला से दक्षिण पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को विशेष लाभ मिलेगा। यह रोहिणी स्थित मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भी अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला से मामलों से जुड़े साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम होगा, जिससे आपराधिक मामलों के समय पर निपटारे में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात के एक व्यक्ति से 1,50,000 रुपए ठगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,100 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक पिकअप तथा स्कूटी भी बरामद की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अन्य अवैध तस्करी मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ AOGD के 48वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। श्री संधू ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल, समय पर जांच, कैंसर की रोकथाम और जीवन के हर चरण में समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए चिकित्सा क्षेत्र से AI, डिजिटल स्वास्थ्य और अनुसंधान का उपयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज जनता दरबार में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं, जरूरतों और सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ विचार कर समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधि का दायित्व जनता की समस्याएं सुनना और उनके समाधान के लिए तत्परता से कदम उठाना है। इसके अलावा श्री सिंह ने आज बाजीतपुर ठाकरान स्थित दादा मालदेव मंदिर परिसर में ग्रामीणों से बातचीत की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के लिए रवाना हुए, जहां वो कल से शुरू हो रहे 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 18 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का मुख्य विषय बदलती विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों और सिख समुदाय को लोगों की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरबाणी हमें सेवा, सिमरन, समानता और सरबत दा भला का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की

शिक्षाएं पीढ़ियों से समाज को प्रेम, करुणा और भाईचारे से जोड़ती आई हैं। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है मुशायरा।
1: सभी सामईन को मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, किसी भी जबान की शायरी में एक सिर्फ तंजो मिजाह की भी होती है। उर्दू अदब में तंजो मिजाह को एक ख़ास अहमियत हासिल है। लफ्ज़ी एतबार से तंज के मानी इशारे किनारे में इस तरह बात कहने के हैं कि बात भी कह दी जाए और बुरी भी ना लगे। इसमें मिजाह की चाशनी से लताफत पैदा की जाती है। तंजो मिजाह की शायरी दरअसल समाजी इस्लाह, इंसानी रवैयों की अक्कासी और ज़हनी तफरीह का एक इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत ज़रिया है। तंज़ो मिज़ाह की शायरी बैक वक्त कई पहलू रखती है। इसमें एक तरफ तो ज़िंदगी की तलखियों को कहकहे में उड़ाने की सकत होती है और दूसरी तरफ माशरे की नाहमवारियों पर चोट करने का फ़न छुपा होता है। आइए सामईन, सुनते हैं ये मिज़ाहिया मुशायरा। निज़ामत फरमा रहे हैं जनाब अरशद नदीम।
2: आज के इस पुरबहार मुशायरे में हिंदुस्तान के नामवर, मोतबर और मुफ्तखर शुराय कराम तशरीफ़ रखते हैं। इनमें जनाब अहमद अलवी साहब, जनाब अदील अहमद आदिल साहब, डॉक्टर आसिम पीरजादा और ये हकीर फ़कीर सरापा तकसीर अरशद नदीम आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे। सबसे पहले मैं जनाब आसिम पीरजादा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने कलाम में बलागत निज़ाम से महसूस और मुस्तफ़ीद फरमाएँ।
3: हजरात ग्रामी, चंद कतात से अपनी बात शुरू करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए।
2: इरशाद
4: इरशाद अता करें।
3: अर्ज़ करता हूँ कि जो तलख जायके थे सभी कंद हो गए।
2: वाह।
3: जो तलख जायके थे सभी कंद हो गए, पैदा जो खैर से कई फर्जंद हो गए।
2: वाह, क्या बात।
3: पैदा जो खैर से कई फर्जंद हो गए, रस्ते भी सब फिरार के फिर बंद हो गए, कुछ ऐसे मसले भी खड़े चंद हो गए। कुछ ऐसे मसले भी खड़े चंद हो गए, घर पर कभी जो बैठ गए हम नमाज में, घर पर कभी जो बैठ गए हम नमाज में, बच्चे उछल पड़े तजबी ने नियाज में।
2: अरे क्या बात है, क्या बात है।
3: बच्चे उछल पड़े तजबी ने नियाज में, घर पर कभी जो बैठ गए हम नमाज में, बच्चे उछल पड़े थे जिबी ने नियाज में। और छह मिसरे और मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि दावतों ने रोज की, अलवी सर, दावतों ने रोज की ऐसा किया मैदा खराब। दावतों ने रोज की ऐसा किया मैदा खराब, हाल से बेहाल हूँ इस हाल के हाथों जनाब। हाल से बेहाल हूँ इस हाल के हाथों जनाब, उठ रहे हैं पेट में तूफान मेरे बेहिसाब। उठ रहे हैं पेट में तूफान मेरे बेहिसाब, सूरते रहमत जो थी नेमत बनी है एक अजाब।
2: क्या बात है।
3: सूरते रहमत जो थी नेमत

0: बनी है एक अजाब अपने मेदे में मियाँ राशन का मैं कोटा लिए।
1: वाह।
0: अपने मेदे में मियाँ राशन का मैं कोटा लिए, सुए सहरा जा रहा हूँ हाथ में लोटा लिए।
1: वाह वाह वाह।
0: सुए सहरा जा रहा,
1: क्या कहने क्या कहने,
0: हाथ में लोटा लिए। अपने मेदे में मियाँ राशन का मैं कोटा लिए,
2: पुख्ता शायरी
1: बेहतरीन।
0: सुए सहरा जा रहा हूँ हाथ में लोटा लिए। और छह मिसरे और मुलाहिजा फरमा लीजिए। था कौन जो बनकर वहाँ गुलफाम न आया, था कौन जो बनकर वहाँ गुलफाम न आया, कूचे में तेरे इश्क को आराम न आया।
1: क्या बात है,
0: कूचे में तेरे इश्क को आराम न आया। वो आज भी छत पर जो सरे शाम न आया, वो आज भी छत पर जो सरे शाम न आया, दीदार का अरमान कोई काम ना आया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दीदार का अरमान
1: कोई काम
0: कोई काम ना आया, आशिक न कहीं खेच ले सब टांग पकड़ कर।
1: वाह।
0: आशिक न कहीं खेच ले सब टांग पकड़ कर, इस वास्ते माशूक लबे बाम ना आया।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या कहने
0: वास्ते। आशिक न कहीं खेच ले सब टांग पकड़ कर, इस वास्ते माशूक लबे बाम ना आया।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या कहने
0: वास्ते,
1: क्या क्या तरकीबें आजमाई हैं। वाह वाह वाह,
0: लबे बाम ना आया।
1: वाह वाह वाह।
0: था कौन जो बनकर वहाँ गुलफाम ना आया, कूचे में तेरे इश्क को आराम ना आया।
1: क्या बात है,
0: कूचे में तेरे इश्क को आराम ना आया। वो आज भी छत पर जो सरे शाम ना आया, वो आज भी छत पर जो सरे शाम ना आया, दीदार का अरमान
1: कोई
0: काम ना आया। आशिक न कहीं खेच ले सब टांग पकड़ कर, आशिक न कहीं खेच ले सब टांग पकड़ कर, इस वास्ते माशूक लबे बाम ना आया।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या कहने
0: वास्ते। और चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाइए कि मैं यूं लुत्फ लेता हूँ गिरदाब में,
1: मैं यूं
0: लुत्फ लेता हूँ गिरदाब में, मुकद्दर में है मेरे गिरदाब बस।
1: वाह।
0: मुकद्दर में है
1: मेरे
0: गिरदाब बस, मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं, सलामत रहे मेरे अहबाब बस।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं, सलामत रहे मेरे अहबाब बस। मैं यूं लुत्फ लेता हूँ गिरदाब में, मुकद्दर में है मेरे गिरदाब बस।
1: वाह।
0: मुकद्दर में है
1: मेरे
0: गिरदाब बस, मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं, सलामत रहे मेरे अहबाब बस।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं, सलामत रहे मेरे अहबाब बस। और चार मिसरे मुलाहिजा फरमाइएगा कि शायरी की शामत आमाल है, शायरी की शामत आमाल है, फन में कच्चा फन का माहिर हो गया।
1: वाह वाह।
0: फन में कच्चा
1: फन का
0: माहिर हो गया, बढ़ गई सब्जा तराशी इस कदर।
1: वाह।
0: बढ़ गई सब्जा तराशी इस कदर, एक घसियारा भी शायर हो गया।
1: वाह वाह वाह।
0: बढ़ गई
1: क्या बात है,
0: सब्जा तराशी
1: जवाब नहीं। वाह वाह वाह,
0: इस कदर बढ़ गई,
2: एक
0: घसियारा भी शायर हो गया।
2: क्या कहने क्या कहने।
0: एक गजल के चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि देखिए कि अंदाजे करीमाना, अंदाजे करीमाना जरा और जरा और।
1: वाह।
0: अंदाजे करीमाना जरा और जरा और, ऐ साकिये मैं खाना जरा और जरा और। अंदाजे करीमाना जरा और जरा और, ऐ साकिये मैं खाना जरा और जरा और। शेर खुसूसी तौर पर अर्शद भाई अर्ज के अर्द है, आसानी से फंसती है कहाँ कोई भी चिड़िया, आसानी से फंसती है कहाँ कोई भी चिड़िया, तू डाल अभी दाना जरा और जरा और, तू डाल अभी दाना जरा और। आसानी से फंसती है कहाँ कोई भी चिड़िया, तू डाल अभी दाना जरा और। क्या खूब हो जालिम जो तू चेहरे पे सजा ले, क्या खूब हो जालिम जो तू चेहरे पे सजा ले, अंदाजे शरीफाना जरा और अंदाजे शरीफाना जरा और जरा और। आदा आदा, बहुत ममनून बहुत ममनून। क्या खूब

0: ओ जालिम जो तू चेहरे पे सजा ले अंदाजे शरीफाना, जरा और आखिरी शेर, आंखों के प्यालों से तू दो घूंट पिला कर, आंखों के प्यालों से तू दो घूंट पिला कर, कर दे मुझे मस्ताना, जरा और मक्ता, और खास तौर पे काफिये पे दा चाहूंगा अलवी सर, और अर्ज करता हूँ कि आसिम रुखे बीमार पे आ जाएगी रौनक, आसिम रुखे बीमार पे आ जाएगी रौनक, यक चश्मे तबीबाना, जरा और आसिम रुखे बीमार पे आ जाएगी रौनक, आसिम रुखे बीमार पे आ जाएगी रौनक, यक चश्मे तबीबाना, जरा और अंदाजे करीमाना, जरा और ऐसा किए मैं खाना, जरा और
1: ये थे डॉक्टर आसिम पीरजादा। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब अदील अहमद आदिल साहब से कि वो अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश करें। अदील अहमद आदिल साहब,
2: मतलब समाज फरमाए
0: जी, इरशाद है
2: कि चाहे कितना भी हो महान पति, चाहे कितना भी हो महान पति, खुद को कहता हो आसमान पति, मुझसा शायर या पहलवान पति, सारे होते हैं बेनिशान पति, मुझसा शायर या पहलवान पति, सारे होते हैं बेनिशान पति, फिर देखिए कि सर उठे और ना जबान खुले,
0: सर उठे
2: और ना जबान खुले, जब हो पत्नी के दरमियान पति, सर उठे और ना जबान खुले, जब हो पत्नी के दरमियान पति,
1: क्या बात,
2: फिर देखें रोज होता है फेल बेचारा,
0: रोज होता है फेल बेचारा,
2: रोज होता है फेल बेचारा, रोज देता है इम्तहान
0: पति,
2: रोज होता है फेल बेचारा,
0: रोज देता है इम्तहान,
2: देता है इम्तहान पति,
0: वाह।
2: और मख्ता पेश है कि लेने एक छुई मुई पत्नी को,
0: अच्छा लेने एक छुई मुई पत्नी को,
2: लेने एक छुई मुई पत्नी को लेके आया था खानदान
0: पति,
2: लेने एक छुई मुई पत्नी को लेके आया था खानदान पति, चाहे कितना भी हो महान पति, खुद को कहता हो आसमान पति,
0: क्या कहने,
2: एक गजल और समाप्त फरमाइए, ये तो पति पर थी, अभी पत्नी की भी सुन लीजिए,
0: इरशाद
2: के मतलब ये है कि सोने चांदी से संवारी पत्नी,
0: अच्छा सोने चांदी से,
2: सोने चांदी से संवारी पत्नी, खुश नहीं हमसे हमारी पत्नी,
1: वाह,
2: कुछ नहीं हमसे हमारी पत्नी, और कुछ नहीं सामने दोधारी तलवार, कुछ नहीं सामने
0: दोधारी
2: तलवार, जैसे होती है दोधारी पत्नी,
0: वाह,
2: जैसे होती है दोधारी पत्नी, और शेर देखिए कि हो अलग शक्ल व्यवहार में तो,
0: अच्छा हो अलग शक्ल,
2: हो अलग शक्ल व्यवहार में तो, एक सी होती है सारी पत्नी,
1: वाह वाह
0: वाह,
2: एक सी होती है सारी पत्नी, और मख्ता पेश है कि अब पड़ोसन की तरफ क्या देखें,
0: अब पड़ोसन की तरफ,
2: अब पड़ोसन की तरफ क्या देखें, हमसे संभले ना हमारी पत्नी,
1: वाह वाह,
2: हम पड़ोसन की तरफ क्या देखें, हमसे संभले ना हमारी पत्नी, सोने चांदी से संवारी पत्नी, खुश नहीं हमसे हमारी पत्नी,
0: वाह,
3: और एक गजल,
2: मतलब समाप्त
1: ये इरशाद
2: कि दिलों से बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो,
0: अच्छा
2: दिलों से बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो, अमल ये रात दिन यारों रिपीट करते,
0: क्या बात,
1: क्या बात, क्या बात,
0: क्या बात, क्या बात,
2: दिलों से बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो, अमल ये रात दिन यारों रिपीट करते रहो, और जहां से एक दिन मिट जाएगी ये नफरत भी,
0: अच्छा
1: जहां से एक दिन मिट जाएगी
2: ये नफरत भी, एक दिन मिट जाएगी ये नफरत भी, खुलूस दिल से सभी को ट्रीट करते रहो, जहां से एक दिन मिट जाएगी ये नफरत भी, खुलूस दिल से सभी को ट्रीट करते रहो, और खटास दिल में रखो आज के जमाने में,
0: अच्छा खटास
2: दिल में रखो
0: आज के जमाने में,
2: सभी से गुफ्तगू,

0: लेकिन स्वीट करते रहो।
1: क्या बात, वाह वाह, खटास स्वीट
0: दिल में रखो,
1: वाह वाह वाह, क्या दजाद पैदा किया भाई, वाह वाह वाह,
0: सभी से गुफ्तगू ले,
1: बहुत अच्छा है भाई, वाह
0: स्वीट करते रहो। और शेर देखें कि वजूद रखना है कायम अगर वकार के साथ,
1: अच्छा अच्छा, वजूद रखना है
0: वजूद रखना है कायम
1: अगर वकार के साथ,
0: वकार के साथ अदम की दोस्तों कन्फर्म सीट करते रहो।
2: क्या बात,
0: क्या बात, कन्फर्म सीट करते रहो। और मक्ता पेश है कि नए जहां में विनर चाहते हो बनना तुम,
1: अच्छा
0: नए जहां में विनर चाहते हो बनना तुम, खुद अपने आप को आदिल डिफीट करते रहो। नए जहां में विनर चाहते हो बनना तुम, खुद अपने आप को आदिल डिफीट करते रहो, दिलों में बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो, अमल ये रात दिन यारों रिपीट करते रहो।
2: हजरात, ये थे जनाब अदील अहमद आदिल। अब ये खादिम अरशद नदीम अपने कलाम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर है। मुलाहिदा फरमाए, अब सब अपने ज़माने को याद कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूँ। अर्ज करता हूँ कि हम भी बड़े हसीन बड़े खुश जमाल थे।
1: क्या बात है, बेशक बेशक,
2: अपना भी एक दौर था जब तक शबाब था। हम भी बड़े हसीन बड़े खुश जमाल थे, अपना भी एक दौर था जब तक शबाब था। अब उड़ गए खलील मियां फाख्ता के साथ, वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब
1: था, वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था, क्या कहने।
2: अब अदब के डॉक्टर भी तेज़ लिखते हैं गलत,
1: अच्छा अब अदब के,
2: अब अदब के डॉक्टर भी तेज़ लिखते हैं गलत, कैसे कैसे हादसे होने लगे उर्दू के साथ।
1: वाह वाह,
2: एक अल्लामा से जब पूछा यदे बैजा है क्या, आलिमाना शान से कहने लगे अंडे का हाथ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: आलिमाना शान से कहने लगे अंडे का हाथ।
1: वाह वाह वाह,
2: एक और इस सिलसिले का अर्ज करता हूँ कि एक नए धनवान के घर पर जो पहुंचा दोस्त, हो
1: अच्छा
2: मुस्कुराए और बोले वेलकम यू माई डियर।
1: अच्छा,
2: मैंने पूछा वेलकम यू का है क्या मतलब जनाब, तर्जुमा करते हुए कहने लगे तो डूमर। गजल के कुछ शेर हाजिर खिदमत करता हूँ कि एक दुश्मन ने कहा था उनका दीवाना मुझे, एक दुश्मन ने कहा था उनका दीवाना मुझे, ढूंढता फिरता है तब से शहर का थाना मुझे। एक दुश्मन ने कहा था उनका दीवाना मुझे, ढूंढता फिरता है तब से शहर का थाना मुझे, इस कदर जूते पड़े हैं एक हंसी को छेड़कर, इस कदर जूते पड़े हैं एक हंसी को छेड़कर, मेरी माँ ने भी बड़ी मुश्किल से पहचाना मुझे। जिगर के मिसरे में मिसरा लगाया है कि रोज करते हैं पिटाई शेख नासे मोहतसिब, रोज करते हैं पिटाई शेख नासे मोहतसिब, जान कर मिन जुमलाए खासाने में खाना मुझे। और ये शेर खास तौर से मुलाहिदा फरमाए कि एक काफी की दाद चाहूंगा, वो अर्ज करता हूँ कि एक जरा से बाल ही मैंने बढ़ाए थे फकत,
1: अच्छा एक जरा से,
2: एक जरा से बाल ही मैंने बढ़ाए थे फकत, जाने क्यों कहने लगे हैं लोग फरजाना मुझे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: शुक्रिया। चंद शेर दूसरी गजल से, कि एक बार उनको छेड़ के जोशे शबाब में,
1: अच्छा एक बार,
2: एक बार उनको छेड़ के जोशे शबाब में, मैं फंस गया हूँ जिंदगी भर के अजाब में,
1: फंस गया वाह,
2: एक दोस्त पिट रहा था हसीना को छेड़ कर,
1: अच्छा
2: मैं भी शरीक हो गया कार्य सवाब में।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: अब मिसरा लगाया कि बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया,
1: वाह
2: बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया, बेगम ये क्या मिला दिया तुमने खिजाब में।
1: वाह वाह वाह,
2: बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया,
1: वाह
2: बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया, बेगम ये क्या मिला दिया तुमने खिजाब में।
1: वाह वाह वाह,
2: एक नज्म दिल्ली की गर्मी, दिल्ली में कैसी गर्मी पड़ती है उसके क्या क्या असरात पड़ते हैं, वो मुलाहिदा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि राजधानी में पड़ी है ऐसी बला की गर्मी,
1: क्या बात,
2: जैसे दोजख की उतर आई हो सारी गर्मी। और उसमें सनतें भी देखिएगा, राजधानी में पड़ी ऐसी बला की गर्मी, जैसे दोजख की उतर आई हो सारी गर्मी, ऐसी गर्मी ने भी देखी नहीं होगी गर्मी, शहर वालों को वो गर्मी ने दिखाई गर्मी, जाने किस जून में इस साल का जून आया था, जून आया था कि सूरज को जुनून आया था। राजधानी

0: जज्ब इत्रियात और
1: वाह
0: शेर
1: वाह
0: देखें कि मल्टी निकाह पर
1: वाह,
0: मेरे तनकीद किस लिए।
2: मल्टी निकाह पर मेरे तनकीद, क्या इस्तेलाह वजा की है, मल्टी निकाह,
0: मल्टी निकाह पर मेरे तनकीद किस लिए, किस वास्ते कुरेदते हो मेरी जातियात। किस वास्ते कुरेदते हो मेरी जातियात। और आखिरी शेर है कि बेगम का शायरी पे मेरी तबसरा है ये।
2: अच्छा, बेगम का शायरी पे मेरी तबसरा है ये,
0: बेगम का शायरी पे मेरी
2: तबसरा
0: है ये, कितआत नज़्मे गज़लें तज़ामीन वाहियात। बेगम का शायरी पे मेरी तबसरा है ये, कितआत नज़्मे गज़लें तज़ामीन वाहियात। और देख लें एक गजल और।
1: जी
0: आज हम अपनी दवाई का असर देखेंगे।
2: अच्छा, आज हम अपनी दवाई का असर देखेंगे।
0: आज हम अपनी दवाई का असर देखेंगे, कितनी पतली हुई वो मोटी कमर देखेंगे। कितनी पतली हुई
2: वो मोटी कमर,
0: मोटी कमर देखेंगे। और शेर देखें कि 60 शायर हैं मगर बज़्म में दो हैं सामी।
2: जी क्या बात है, क्या
0: 60 शायर हैं मगर बज़्म में दो हैं सामी। आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे।
2: वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा दिया है।
0: आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे, और छोड़ देंगे सभी लड़के तेरा पीछा करना।
2: अच्छा, क्या अच्छा मिसरा।
3: छोड़ देंगे सभी लड़के,
0: छोड़ देंगे सभी लड़के तेरा पीछा करना, तुझको मेकअप बिना कॉलेज में अगर देखेंगे।
1: क्या बात है,
2: क्या अच्छा है।
0: तुझको मेकअप बिना कॉलेज में अगर देखेंगे। और आखिरी शेर है कि जानता हूँ वो बना लेंगे मुझे घर दामाद।
2: अच्छा,
0: जानता हूँ वो बना लेंगे मुझे घर दामाद, मुश्ता दामाद अगर मेरे खुसर देखेंगे। मुश्ता दामाद अगर मेरे खुसर देखेंगे।
3: क्या कहने,
2: और
0: शाहिर के मिसरे पर
1: कलाम आप पेश कर रहे हैं। वाह,
0: शाहिर के मिसरे पर ये शेर कहे हम, है ना
1: जी। शादाबाद में
0: मतलब देखें कि मेरे बच्चे जो हैं 6-7 किसे पेश करूं।
2: मेरे बच्चे जो हैं 6-7 किसे पेश करूं,
0: मेरे बच्चे जो हैं 6-7
2: किसे पेश करूं,
0: किसे पेश करूं ये बुढ़ापे की खुराफात, किसे पेश करूं ये बुढ़ापे की खुराफात,
2: किसे पेश करूं।
0: और तेरे अब्बा तो मेरी बात समझ लेते हैं।
2: तेरे अब्बा तो मेरी बात समझ लेते हैं,
0: तेरे अब्बा तो मेरी बात समझ लेते हैं, तेरी अम्मी के ख्यालात किसे पेश करूं। तेरी अम्मी के ख्यालात किसे पेश करूं। और शेर देखें, ये खरीदे हुए अशआर नशिस्तों में पढूं। ये खरीदे हुए अशआर नशिस्तों में पढूं, ये चुराए हुए नगमात किसे पेश करूं। ये चुराए हुए नगमात किसे पेश करूं। और शेर देखें कि एक कल सीधी नहीं ऊंट की सूरत जिसकी।
2: अच्छा, एक कल सीधी नहीं,
0: एक कल सीधी नहीं ऊंट की सूरत जिसकी, सास ने दी है जो सौगात किसे पेश करूं। सास ने दी है जो सौगात किसे पेश करूं। और देखिए कि घोड़ी को लेके कहीं भाग गया है दूल्हा, ये बिना दूल्हे की बारात
2: किसे पेश करूं।
0: ये बिना दूल्हे की बारात किसे पेश करूं। मेरे बच्चे जो हैं 6-7 किसे पेश करूं, ये बुढ़ापे की खुराफात किसे पेश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मौजूद सामईन, ये था आज का ज़ाफ़रानदार और पुरबहार मुशायरा जो आकाशवाणी ने आपकी खिदमत में पेश किया। इसमें हिस्सा लेने वाले शोराए कराम थे जनाब अहमद अलवी, जनाब अदील अहमद आदिल साहब, जनाब डॉक्टर आसिम पीरजादा और ये अरशद अदीम।
4: सामईन, अभी आप मिजाहिया मुशायरा सुन रहे थे, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब अरशद नदीम। हमें उम्मीद है कि आप इस मुशायरे से ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। और अब अपने मेज़

0: दीवान मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं फिल्म विश्वात्मा से ये गीत, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है मोहम्मद अजीज़, अमित कुमार और सपना मुखर्जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म विश्वात्मा से। और दोस्तों ये गीत जो है वो आपको अपने कहीं अतीत की यादों में ज़रूर ले गया होगा, क्योंकि आजकल वैसे भी चल रहा है ट्रेंड 80s का, रेट्रो है उसमें जाने का। लोग अपनी फ़ोटोज़ और रील्स बना बना के डाल रहे हैं कि उस समय का लुक जो है वो कैसा हुआ करता था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना 90s के जो है सॉन्ग्स वो आपको सुनवा दूँ। तो एक अगला प्यारा सा गीत आपको सुनवा देता हूँ लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है सनम बेवफा।

बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सनम बेवफा से। और अब सुनते हैं अगला गीत एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में, फिल्म का नाम है साजन।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूट

0: इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document,
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन

0: to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान, पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों

0: moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stressed for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फर्क को साझेदारी और इज्तिमाई इकदामात के जरिए दूर किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हर एक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनफिंग ने अपनी दो तरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफा बातचीत की। सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोल्डोवा से भारत ले आई है और यूएस ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रविकिना आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। इसमें तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया है। ब्रिक्स मुल्कों ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी महाजराई और लड़ाई निज़्बैन-उल-अख़वामी निज़ाम में बिखराव और इख्तलाफात की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पहले दिन मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिये में रहनुमाओं ने एक ऐसा कसीर रुखी रवैया अख्तियार किए जाने की हिमायत की जिसमें अहम आलमी उमूर पर मुख्तलिफ मुल्कों के अलग अलग नुक्ते नज़र और मौक़िफ़ का एहतराम किया जाए। इनमें पायदार तरक्की, भुखमरी और गुर्बत का खात्मा और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से आलमी सतह पर इकदामात के मामले शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के तबादले ख्याल से ये बात नुमाया हो गई है कि फरसूदा इदारे बदलती हुई दुनिया का निज़ाम नहीं चला सकते, और साथ ही उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नुमाइंदगी, इकदामात करने और ज़ाबते मुरत्तब करने में इस्लाहात लाजमी हैं। जनाब मोदी ने कहा कि रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियां तैयार करने और इनसे वाबस्ता ज़ाबते मुरत्तब करने में ग्लोबल साउथ की मसावियाना शमूलियत होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया है उसमें मेंबर मुल्कों के मुश्तरका अज़्म के लिए वाज़ह सिमत तय की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इन वादों और अहद को हकीकी नतीजों में बदलना अब मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर में पिछले साल 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अहद को दोहराया। इससे पहले आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2000

0: ना मोदी ने मल्लाहों के लिए इमरजेंसी इमदादी नेटवर्क कायम करने की तजवीज़ भी पेश की ताकि मुश्किल की घड़ी में इमदाद में सहूलत की खातिर बहरी हुक्काम और मुतअल्लिका मुल्कों के सिफारती मिशनों को बाहम मुंसलिक किया जा सके।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स मुल्कों के माबेन इत्तेहाद और इत्तेफाक राय को आलमी मंजरनामे पर ठोस नतीजों की शक्ल दी जाए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सदारत में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की भारत की अव्वलीन तरजीहात रही हैं। इन तरजीहात से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत ने ब्रिक्स इश्तराक को सीधे आम आदमी के साथ जोड़ने पर खास जोर दिया है। वज़ीरे आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर बहरान के मामले में तो ग्लोबल साउथ पेश पेश है, लेकिन फैसला साजी के एतबार से सबसे पीछे है। अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के मामले पर वज़ीरे आज़म ने जोर देकर कहा कि अब इसे और मुअख्खर नहीं किया जा सकता।
1: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह बात दोहराई है कि भारत और चीन को अपने ताल्लुकात के सिलसिले में एक कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र अपनाना चाहिए और इख्तलाफात को तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर अपनी दोतरफा बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल अगस्त में तियानजिन की अपनी गुज़श्ता मुलाकात के बाद से भारत चीन बाहमी ताल्लुकात में लगातार पेशरफ्त होने का खैर मकदम किया। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि दोनों फरीकों को तीन बाहमी अवामिल से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। इनमें बाहमी एहतराम, बाहमी मफाद और बाहमी एहसास शामिल हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम बाहमी ताल्लुकात के मुसलसल फरोग के लिए ज़रूरी बुनियाद है। इससे पहले दिन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया, मलेशिया और वियतनाम के वज़राए आज़म के साथ साथ अबू ज़हबी के वलीअहद शहजादे के साथ दो तरफा बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स रुकन ममालिक ने मगरबी एशिया में जारी बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने पर जोर दिया जिससे सूरत हाल में मजीद कशीदगी पैदा हो। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों के मुताबिक शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ममालिक ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए कोशिशों में इजाफे की हौसला अफजाई की ताकि खत्ते में देरपा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के सिलसिले में तवील मुद्दती आपसी समझबूझ पैदा हो सके। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुकम्मल तहफ्फुज़ात के तहत शहरी बुनियादी ढांचे और पुरम न्यूक्लियाई सहूलतों पर जानबूझकर किए गए हमलों पर भी गहरी तश्वीश जाहिर की। उन्होंने गुज़श्ता बरस 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की कि जो जम्मू कश्मीर में किया गया था। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत, दहशतगर्दी की माली एयानत और उसके लिए महफूज पनाहगाहों समेत हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का भी एयादा किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारत की ब्रिक्स की सदारत के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर एक साल तवील राबतों के सबब ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में नई दिल्ली ऐलानिये पर इत्तेफाक राय हो पाया है। आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मीडिया से बातचीत करते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली ऐलानियों को इख्तियार किया जाना भारत की सदारत के अहम नतायज में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की सदर नशीनी लोगों पर मरकूज रही है। जनाब दलेला ने भारत की सदारत के दौरान अपने तआवुन के लिए ब्रिक्स ममालिक का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मलेशिया के सरमायाकारी, तजारत और सनत के वजीर दातुक सेरी जोहारी अब्दुल गनी के साथ दो तरफा मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब गोयल ने

कहा कि मीटिंग के दौरान तरफैन ने भारत मलेशिया इकतसादी शराकत दारी का जायजा लिया और बाहमी तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने, बाजार तक रसाई को बेहतर बनाने और सप्लाई चेन राबितों को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत बाहमी तौर पर और भारत आसियान तरीक़ेकार के तहत तजारत और इकतसादी तल्लुकात के तमाम तर इम्कान की खातिर मलेशिया के साथ करीबी तौर पर इश्तराक के लिए मुसलसल पुरअज़्म है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज भारत आसियान बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, बैंक, AIIB शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना ने नई दिल्ली में AIIB की सदर जू जियाई से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत खजाना ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की तरजीहात में मदद फराहम करने, मकामी करेंसी में माली मदद में इजाफे, निजी शोबे की शराकतदारी को बढ़ाने और AIIB की आलमी मौजूदगी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस पर अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मलडोवा से भारत लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वजारत खारजा, वजारत दाखिला और पंजाब पुलिस के साथ तालमेल कायम करके CBI इस मतलूबा मफरूर मुलजिम को भारत लाई है। पंजाब पुलिस की 4 अहलकारों की एक टीम को मफरूर मुलजिम को वापस लाने के लिए मलडोवा भेजा गया था। तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि पंजाब में रजिस्टर्ड संगीन नौयत के कई फौजदारी केसों में उसकी तलाश थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहूदियों के नए साल रोश हशनाह के मौके पर इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के अवाम और दुनिया भर में यहूदी बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह नया साल हर एक के लिए अम, तंदुरुस्ती और तरक्की लेकर आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गैर मुल्की करेंसी से मुतल्लिक नॉन रेजिडेंट बैंक और दीगर स्कीमों के जरिए आने वाली रकूमात में काफी इजाफा हुआ है। एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में RBI के गवर्नर ने कहा कि बड़ी रकूमात की आमद से भारत के मैक्रो इकतसादी बुनियादी अवामिल में एतमाद की अक्कासी होती है और मुख्तसर मुद्दत के अंदर गैर मुल्की सरमाए को रागिब करने की सलाहियत का इजहार भी होता है। बैंकारी निजाम में इजाफी नकद रकम की दस्तियाबी के बारे में जनाब मल्होत्रा ने कहा कि नकद रकम के बंदोबस्त के लिए रिजर्व बैंक के पास मुनासिब तरीक़ेकार हैं और वह जरूरत के लिहाज से इनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में 10 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। इनमें कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपुरा, बारामूला और सुपोर शामिल हैं। तलाशी की यह कार्रवाई सरहद पार दहशतगर्दी की एक साजिश के सिलसिले में की गई है, जिसमें दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के पाकिस्तान से काम करने वाले आका और मकामी कारिंदों के मुबैना नेटवर्क के मुलविस होने की बात कही गई है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान इसके से व्यवस्था काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। US ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रवकीना का मुकाबला होगा। मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में कल एलेक्जेंडर ज़वरेव और बेन शिल्टन आमने सामने होंगे। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फर्क को साझेदारी और इज्तिमाई इकदाम के जरिए दूर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हरेक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी दोतरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए आज़म के साथ दोतरफा बातचीत की। CBI रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोलडोवा से भारत ले आई है और US ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रेवियंका आमने सामने होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

إذ أو

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करे।

0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता के प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों की विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन महिलाओं ने लखपति बनकर सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ये दीक्षांत समारोह देशभर में 23 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। आज adopt किया गया New Delhi Declaration हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of the member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum

0: is maintained despite a changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years.
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of the BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since the last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. External Affairs Ministry said in a statement that the two leaders took note of the progress in people-to-people ties and underscored the need to further promote cultural exchanges, business linkages, and greater mobility between the two countries. On economic and trade relations, they underlined the need to address each other's concerns, including structural trade imbalance and supply chain issues, and facilitation of meaningful and predictable market access. Prime Minister Museum and Library hosted the visiting dignitaries participating in the BRICS summit. They included the First Lady of Philippines, Luis Araneta Marcos, daughter of the President of Iran, Zahra Pezeshkian, and son-in-law of the President of Iran, Hassan Majidi Desaj. During the visit, the dignitaries toured blocks 1 and 2 of the museum and experienced the immersive exhibits at the Anubhuti section. Union Home Minister Amit Shah is on a 3-day visit to Mumbai. During his visit, he is scheduled to visit the Asiatic Society of Mumbai, attend the JGEPC Awards function at the Bharat Diamond Bourse in BKC, and visit Lal Bagh Chauraha. At the Asiatic Society of Mumbai, the Union Home Minister will inaugurate a specially curated exhibition of manuscripts titled Sri Ganesh Dhanya Arti. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRLive News 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। साथियों, इस समय होता है बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, अनमोल। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंतर्गत बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही शानदार, अनमोल, बेहतरीन रचनाओं का समावेश बनता है। जी हाँ दोस्तों, और आज गीत सुनहरे के साथ आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। या दोस्तों, आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत रचना के साथ, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत आ रहा है, और नदी किनारे सांझ सकारे, बड़ा ही सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना से हम शुरुआत कर रहे हैं। और उनकी डिटेल्स जो हम बता देते हैं, आखिरकार कौन सी फिल्म का है, कौन सी फिल्म का नहीं है, और सही मायने में देखा जाए, गीत सुनहरे यानी कि सुनहरे का मतलब गोल्ड, गोल्ड का मतलब ओल्ड इज गोल्ड, है ना। ओल्ड गोल्ड जो सॉन्ग्स होते हैं वाकई एक बिल्कुल सच्ची रचनाएं होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल सोने की तरह खरा होता है ऐसा खूबसूरत नगमा, है ना। जी हाँ, नदी किनारे सांझ सकारे एक फिल्म है, प्रभु का घर, जो 1945 फिल्म प्रदर्शित है, और गीत पीटी इंदिरा के हैं और संगीत से सजाया है खेमचंद प्रकाश ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम सुर के

जी हाँ, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, इसी प्रकार की ही जो बातें होती हैं, इसी प्रकार की भी जो आवाज़ें होती हैं, इसी प्रकार के ये गीत होते हैं। जी हाँ, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गीत होते हैं गीत सुनहरे में। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही कम गीत ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, तो तभी तो जो छोटे छोटे गीत होते हैं पता ही नहीं चलता कब आया और कब चला गया, है ना। तो साथियों, बड़ा ही खूबसूरत गीत था, और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये है वो चले झटक के, बड़ा ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, वो चले झटक के। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही चर्चित और बेहद खूबसूरत रचना है ये। तो आइए सुनवाते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत, और ये गीत है फिल्म हमराही से। जी हाँ, वो चले झटक के, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना। हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने इस शानदार गीत को। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है मोहम्मद रफी साहब की, बात ही अलग है। इतनी बेहतरीन खूबसूरत रचना, वो चले मस्ती भरा सुंदर, थोड़ी शिकायत और थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत भी थी, है ना। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, आ रहा है आपके पास ये सुंदर लाजवाब रचना है, दिले नादान जमाने में। जी हाँ, दिले नादान जमाने में एक अलग यूनिक खूबसूरत गीत है, और इस गीत के जो बोल हैं हम बता देते हैं। और ये गीत है दिले नादान जमाने ने, जमाने में। मस्त कलंदर एक फिल्म है, बड़ी ही प्यारी फिल्म है मस्त कलंदर। मस्त कलंदर फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है, आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ में, बहुत ही प्यारी रचना है, संगीत से सजाए हंसराज बहल ने। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सीरियस यानी कि बहुत ही गमगीन, दर्द भरा खूबसूरत गीत हैं आपस में, जो एक डिस्टेंस मेंटेन होता है ना। हाँ, इसीलिए कुछ उनकी शिकायत तो कुछ दूसरे ओर की शिकायत, लेकिन जब दूरियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा, कभी ज़िंदगी में कभी कोई इंसान छूट जाता है या दूर चला जाता है किसी कारणवश, तो उनको बुलाने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि जब अलग हो जाते हैं तो ज़िंदगी नीरस हो जाती है हर इंसान की। तो कोशिश करें वो प्यार, मोहब्बत, आत्मीयता हमेशा बनी रहे एक दूसरे के बीच। यदि कोई इंसान आपको उकसाने का प्रयास करता भी है, लेकिन उनको इग्नोर करें। बस प्यार ही तो है इस दुनिया में। यदि प्यार नहीं होता तो ज़िंदगी नीरस और सबसे ख़राब हो जाती है ना। हमेशा प्यार से रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमारी तरह। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर और बहुत ही खूबसूरत रचना है, बड़ा ही प्यारा गीत है, वो बसंती पवन पायल, जिस देश में गंगा बहती है। लता मंगेशकर की बहुत ही खूबसूरत आवाज में शानदार रचना है, गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है जय किशन ने, शंकर जय किशन ने। तो वही सुनते हैं 1960 प्रदर्शित फिल्म शानदार, जिस देश में गंगा बहती है। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर। ये गीत भी मार्मिक है, सुंदर है, लेकिन डिफरेंसेस जो पैदा हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं और वापस, गीत जो दर्द में डूबा हुआ है, वाकई बहुत ही सुंदर लेकिन मार्मिक है। एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, कम नहीं होना चाहिए बल्कि ज़्यादा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत आत्मीयता। न जाने गीत कैसे होते हैं, समझ नहीं आता है हमें, सच में एक से एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं होती हैं और समझ में नहीं आता आखिरकार कौन सा गीत हम प्ले करें कौन सा नहीं करें। सच में इतना खजाना भरा पड़ा है गीत संगीत के खजाने में, सच में क्या कहें हम, जैसे हम बोलते भी हैं गीत संगीत का खजाना भरा है, बस जरूरत है उन गीतों को ढूंढने की, है ना। तो आइए एक और सुंदर रचना सुनवा रहे हैं और ये सुंदर खूबसूरत गीत है। ये गीत एक तो सूरत प्यारी, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है और इसकी जो डिटेल्स हैं हम बता देते हैं। और ये गीत है वल्लाह क्या बात है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना है। 1982 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाए हैं रोशन ने। आइए सुनते हैं एक तो सूरत प्यारी।

जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। जी हाँ दोस्तों, एक और गीत सुनवा रहे हैं, बड़ा ही प्यारा गीत है, आज की रात। जी हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज की रात फिल्म का नाम है टावर हाउस। गीत आज की रात बड़ा ही प्यारा मस्त गीत है, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में। 1962 प्रदर्शित फिल्म है ये। गीत दीश प्रोडक्शन के हैं और संगीत से सजाया है रवि ने। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत,

जी हाँ, आज की रात बड़ा ही सुंदर, सूदिंग और बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। और ये गीत भी बहुत ही सुंदर है, तो सुनवाते हैं ये प्यारा सा एक और खूबसूरत नगमा। उसके बाद हम अपनी पसंद का एक बड़ा ही प्यारा गीत सुनवाएंगे। और जो हमारे श्रोता साथी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिएगा, लेकिन हाँ जाते जाते हम सुनवाएंगे। और अभी तो काफ़ी समय है, 15 मिनट बाकी हैं, अभी बहुत सारे गीत हमें प्ले करने हैं और ज़्यादा नहीं। और उसके बाद तो समाचार होंगे, समाचार के बाद कार्यक्रम होगा गीत बहार। जी हाँ, गीत बहार नॉन स्टॉप कार्यक्रम होता है, उसमें एक सिर्फ एक गीत की हम डिटेल्स बताते हैं और उसके बाद लगातार बैक टू बैक गीत प्रसारित किए जाते हैं। और बस यही है, तो फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, मैंने एक ख्वाब सा देखा है। सुनते हैं ये शानदार रचना और मिलते ही नज़र टाइटल सॉन्ग है ये। अच्छा, ये वाला नहीं है, दूसरा है, माफ़ कीजिएगा। और ये गीत, हाँ चलिए हम पहले यही चला देते हैं। और मिलते ही नज़र उस्तादों के उस्ताद फिल्म से शानदार रचना है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी, साथ में मन्ना डे की आवाज़ में शानदार रचना है। 1963 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत संगीत से सजाया है रवि ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही कव्वाली रूपी शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे, और मिलते ही नज़र उनसे हो गए हम दीवाने। उस्तादों के उस्ताद फिल्म से ये शानदार रचना थी, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में शानदार रचना। 1963 प्रदर्शित फिल्म रही, संगीत से सजाया था रवि ने। साथियों, एक बड़ा ही प्यारा गीत है जो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है, क्या कहें हम। साथियों, एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, फिल्म बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, और इस गीत को सच में कई बार मैं गा चुका हूं, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है हमेशा की तरह आज भी। जी हाँ, प्यार जो होता है, इंसान जो प्यार करता है, वाकई अच्छा लगता है। जब प्यार अगर नहीं है तो कुछ भी तो नहीं है इस जीवन में, है ना। जी हाँ, एक प्यारी सी रचना है और ये रचना बड़ी खूबसूरत है। तो आइए सुनते हैं आज के गीत सुनहरे की अंतिम बेहद खूबसूरत रचना। फिर मिलोगे कभी, इस बार का वादा कर लो। जी हाँ, दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी रह भी, चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत रचना, फिर मिलोगे कभी, ये रात फिर ना आएगी। ये फिल्म बड़ी प्यारी फिल्म है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुंदर रचना। 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत SH बिहारी के हैं, और गीत और संगीत संगीत से सजाया है OP नैयर साहब ने। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम रचना।

0: के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और टाला नहीं जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला चीनी मिट्टी का ये स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाची से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत की अवसंरचना और परिवहन संपर्क संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तान स्थित संचालकों और उनके कथित स्थानीय समर्थकों के नेटवर्क से जुड़े सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाए गए। तलाशी के दौरान मामले से संबंधित और भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for a commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between the decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
2: क्या हम seafarers' emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज

0: जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम अभी चल रहा था। जी हाँ, गीत बहार इंस्टेंट। जी हाँ साथियों, नॉनस्टॉप म्यूज़िक। साथियों वाकई आप सभी साथियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने शानदार गीतों को सजाया और बहुत ही प्यारा लगा है हमें भी, और वाकई बहुत ही अच्छा लगा है। और गीत वाकई एक से एक सुंदर, बेहतरीन थे। आपने सभी साथियों ने तारीफ भी की है और उसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और बस गीत बहार कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दोस्त अपने होस्ट ललित कुमार को। साथियों 3 बजने को हैं, कुछ ही बोलो में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। इनमें फिलीपींस की प्रथम महिला लुइस अरनेता मार्कोस, ईरान के राष्ट्रपति की पुत्री जहरा पेजिशियन और ईरान के राष्ट्रपति के दामाद हसन मजीदी डिजाज शामिल रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाले निवेश

0: बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेंगे। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल दर्शाती है। इस तकनीक में स्टील उत्पादन से निकलने वाली स्टील स्लैग को सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदला जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किए जाने वाले समारोह में कहा कि स्टील स्लैग रोड तकनीक से सड़क निर्माण की लागत करीब 40% तक कम हो जाती है और पारंपरिक सड़कों की तुलना में इनकी मजबूती 4 गुना अधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growing institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
2: क्या हम seafarers emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra

0: घर से हम निकले थे मस्जिद की तरफ जाने को।
1: गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया गंगोली।

0: और इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। सुभाष आनंद की इस गज़ल के साथ गज़ल गीत कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में मिनी एन का गायन राग कल्याणी में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर 2026। सुबह के

4:54 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं योग कार्यक्रम आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में योग अर्ध मत्स्येन्द्रिया आसन आप सुनेंगे समझेंगे। 5:20 पर देशभक्ति गीत और 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है।

हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। इसके उपरांत 6:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन, विधन चंद्र रॉय के जीवन से प्रेरक प्रसंग आप सुनेंगे। 6:45 का समय रामचरितमानस से पाठ का है, जिसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 47।

6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे, 7 बजे हिंदी समाचार और 7:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन पाएंगे। सात बजकर 10 मिनट का समय संगीत का कार्यक्रम का है। श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया गया। भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुतियां रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों की विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में गृहमंत्री श्री गणेश ज्ञानरति शीर्षक से पांडुलिपियों की विशेष रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे वहां पुस्तकालय का दौरा करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दर्शकों की आवाजाही के कारण स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि इस दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज और बिजली की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणता पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन

रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येंद्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के